यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:58:50 हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत की राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज के इस दिन की शुरुआत में आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की हम करते हैं मंगल कामना। श्रोताओं, अपने जीवन में निश दिन हमारा सबसे पहला कर्म यही होता है कि प्रातःकाल की बेला में जब हम बिस्तर छोड़ते हैं तो सबसे पहले अपने आराध्य का धन्यवाद करते हैं और ये कहते हैं कि उनकी कृपा से जीवन में सदकर्म करने के लिए एक दिन के रूप में और एक अवसर हमें और मिला है, हमें हमारे कार्यों में सफलता मिले इसकी विनती भी हम करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में ये भजन। श्रोताओं, यह हमारी आस्था और विश्वास ही तो है कि कण कण में ईश्वर का वास है। यही भावना हमें हमारे आराध्य के प्रभु श्री राम के चरण कमलों से जोड़े रखती है।

अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये भजन। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। जी हाँ, गुरुवाणी भी हमें हमारे आराध्य से जोड़ती है। गुरुवाणी बताती है कि परमात्मा के नाम और रंग रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही है।

अभी आप सुन रहे थे भाई सुरेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ में ये शपथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए आप सुन लेते हैं उषा टंडन की आवाज़ में नात।

श्रोताओं, आज मंगलवार है, यानी हनुमान जी के वंदन पूजन व्रत कथा और आरती का दिन। तो आइए वंदना कार्यक्रम के अंत में कर लेते हैं हनुमान जी की आरती।

नितिन मुकेश अनुपमा देशपांडे और साथियों की आवाज़ में हनुमान जी की आरती के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब

यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति, संगीत सतीश भाटिया का।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार थे अनूप जलोटा, संगीत सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: सदियों पूर्व महाभारत का कालखंड वर्तमान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। राजनेताओं की स्तुति में लगे हुए बुद्धिजीवी सत्ता राजकृपा के अभिलाषी हैं। लेखक, कवि, विद्वान आदि समाज में आए दिन होने वाली घटनाओं के दमन, बलात्कार, अपहरण, छल कपट, घोटालों आदि को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। सरल मन, साधु स्वभाव, ज्ञानी जन की मन स्थिति बहुत कुछ अवश्य है। भीष्म और द्रोण की तरह यही तो महाभारत के कालखंड और वर्तमान की समानता है। महाभारत का कालखंड बहुत कुछ वर्तमान जैसी घटनाओं और ऐसे ही चरित्रों से भरा पड़ा है। दुर्भाग्य ये है कि हमने ऐसे शाश्वत ग्रंथ को पूजा और चर्चा की वस्तु बनाकर छोड़ दिया है और कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं किया है। यदि ऐसा किया होता तो हम भारतवासी वर्तमान के नारकीय जीवन की रचना न होने देते, पर ऐसा नहीं हो सका। आज स्थिति यह है कि मूल्यों के अवमूल्यन और विश्रंखलन की स्थिति वही है जो उस कालखंड में थी। व्यासकृत महाभारत के सभी सत्य वर्तमान में हमें भोगने पड़ रहे हैं। अवश्य मानसिकता वाले भीष्म और द्रोण की ओर संकेत हम कर चुके हैं। हमारे बीच कर्ण भी है जो समाज में अपने वांछित अधिकार पाने के लिए छटपटा रहे हैं, और वो व्यवस्था भी है जो कर्ण जैसे योग्य और क्षमता संपन्न व्यक्तियों को कुंठाग्रस्त करके उसे नाश का मोहरा बना सकती है। महाभिमानी और शक्ति मदांध दुर्योधनों के दर्शन पग पग पर होते हैं। आदि अंतर केवल इतना है, तब कृष्ण मौजूद थे और अब कृष्ण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, और उन्हें यदा यदा ही धर्मस्य वाले उनके संकल्प की याद दिला रहे हैं। तब अर्जुन मौजूद थे जिनके गांडीव की टंकार अधर्म के नाश का संदेश सुनाती थी। वर्तमान के मनुष्य में वो मानव विद्यमान है जो हर कालखंड में लिप्सा, घृणा, स्वार्थ, संवेदना, ममता, क्रोध, षड्यंत्र, लोभ आदि में निमग्न रहा है, जो मनुष्य की मूल वृत्तियां हैं और जिनसे उनके विलग होने की संभावनाएं प्रायः नहीं के बराबर हैं। दुर्भाग्य ये है कि मूल्यों की अवहेलना उन्हीं के हाथों हो रही है जिनके पूर्वजों ने कुछ पीढ़ियों पूर्व उनकी व्यवस्था दी थी। अधिक दूर क्यों जाएं? आज से 60-70 वर्ष पूर्व ही हमारे देश में एक नहीं अनेक अर्जुन थे जो मूल्यों की रक्षा करने और उनकी पुनर्स्थापना के लिए तन मन धन से कटिबद्ध थे, और उनमें से अनेक ने इस प्रयत्न में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत न मालूम कौन सी हवा चली जिसने लोगों की मानसिकता एकदम बदल दी। जिस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हम युगों से संघर्ष कर रहे थे, वही गुलामी हमें पलक झपकते प्रिय लगने लगी। यद्यपि उसका परिधान राजनीति के स्थान पर आर्थिक हो गया, आर्थिक गुलामी की रक्षा के लिए हमने सांस्कृतिक गुलामी भी स्वीकार कर ली है, और इस गुलामी पर हम गर्व का अनुभव भी करने लगे हैं। इस गुलामी को दूर करने वाले की आवश्यकता तो बाद में पड़ेगी, पहले हमें ऐसे कृष्ण की आवश्यकता है

0: इस गुलामी के अभिशप्त पक्ष से अवगत कराए, समाज के टूटते हुए मूल्यों या मूल्यहीनता की विभत्सता से संबद्ध वे घटनाएं अनोखी सी लगती थी, वे ही आज हम अपने आसपास अत्यंत स्वाभाविक, वैज्ञानिक और सरल ढंग से घटित होती हुई देख सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम काव्यधारा में आइए सुनते हैं विनीत प्रकाश गर्ग से काव्य पाठ।
2: मैं वीणा पाणी माँ शारदे को नमन करता हूँ और चंद हास्य कविताएं आप लोगों के सामने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर और विभिन्न प्रकरणों पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रारंभ में दो दो लाइन के कुछ दोहे दे रहा हूँ। आज जो मनुष्य का जीवन है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कुछ व्यंग, कुछ सैटायर, कुछ हास्य, कुछ जीवन के मर्म को लेकर मैं शुरू कर रहा हूँ। जीते वो माँ बाप ही बनकर जिंदा लाश, जीते वो माँ बाप ही बनकर जिंदा लाश, जो अपनी औलाद से धर लेते हैं आस, जो अपनी औलाद से धर लेते हैं आस। उन बूढ़े माँ बाप ने गलती कर दी एक, उन बूढ़े माँ बाप ने गलती कर दी एक, बिना पढ़े ही कागज पर दिया अंगूठा टेक। आज जीवन कहीं से कहीं पहुंच गया है। जंगल में तप करने की हुआ प्रथा का अंत, जंगल में तप करने की हुआ प्रथा का अंत, अब टीवी पर दिख रहे सारे संत महंत, अब टीवी पर दिख रहे सारे संत महंत, सीधे सच्चे सेठ ने भुगते दुष्परिणाम। श्रोताओं से निवेदन कर रहा हूँ, इस कविता को देखिए। सीधे सच्चे सेठ ने भुगते दुष्परिणाम, चीनी का व्यापार था नौकर नमक हराम। सरपंच ने खूब किया पूरा ग्राम सुधार, सरपंच ने खूब किया पूरा ग्राम सुधार, जीप दिला दी बेटे को खुद ने ले ली कार, जीप दिला दी बेटे को खुद ने ले ली कार, सरपंच ने खूब किया पूरा ग्राम सुधार। आजकल के जमाने में सीख देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर, कहते हैं कि वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर मुस्कराओ, मौत की आंखों में आंखें डालकर। तो दो लाइनों की कविता दे रहा हूँ। नशा विरोधी मंच का खूब किया उद्धार, देसी पीकर गिर पड़े नाली में कई बार, गए पड़ोसी से सुलझ यूं तो सभी विवाद, गए पड़ोसी से सुलझ यूं तो सभी विवाद, लेकिन घर के झगड़ों ने कर डाला बर्बाद। हम दुनिया भर के आज फेसबुक पे 5,000 दोस्त बनाए रहते हैं, लेकिन घर में झगड़ा रहता है। गए पड़ोसी से सुलझ यूं तो सभी विवाद, लेकिन घर के झगड़ों ने कर डाला बर्बाद। सिर्फ सिलेंडर के नहीं आज बढ़े हैं भाव, सिर्फ सिलेंडर के नहीं आज बढ़े हैं भाव, शादी लायक बेटे का बाप खा रहा था, शादी लायक बेटे का बाप खा रहा था। दंगे ने कैसा किया हाय शहर बर्बाद, दंगों ने कैसा किया हाय शहर बर्बाद, हिंदू मुस्लिम एकता मित्रों जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता मित्रों जिंदाबाद। जितने बहरे लोग थे मचा रहे थे शोर, आजकल दुनिया में सारी बातें विरोधाभास की चल रही हैं, तो जो लोग किसी लायक नहीं होते हैं वही बहुत लायक दिखाई देते हैं। जितने बहरे लोग थे मचा रहे थे शोर, गूंगों की आवाज भी फैल रही घनघोर, गूंगों की आवाज भी फैल रही घनघोर। जीवन की गुत्थी कभी सुलझ ना पाई एक, जीवन की गुत्थी कभी सुलझ ना पाई एक, एक जरा सी गांठ ने मारे ऐसे ब्रेक, एक जरा सी गांठ ने मारे ऐसे ब्रेक। एक छोटी सी व्यंग कविता दे रहा हूँ आप लोग, हम लोग जीवन में जाते हैं देखते हैं क्या होता है। अध्यापक ने छात्रों को गरीबी मिटाने का सरलतम उपाय बतला दिया, अध्यापक ने छात्रों को गरीबी मिटाने का सरलतम उपाय बतला दिया, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा गरीबी, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा गरीबी और डस्टर से मिटा दिया। आज के जमाने में गरीबी इस तरह मिटती है, आजकल जो है जमाने में गरीबी की रेखा पर बात कम होती है और रेखा की गरीबी पर बात ज्यादा होती है। वे आमरण अनशन पर बैठे पहली बार, वे आमरण अनशन पर बैठे पहली बार पहले ही दिन हो गए बदहजमी का शिकार, पहले ही दिन हो गए बदहजमी का शिकार। जीवन का रूप क्या है आज के जमाने में, आदमी अपनी अनिवार्यताओं से क्या करता है। छोटी सी कविता दे रहा हूं, व्यंग दे रहा हूं, एक बहुत सीधा सच्चा व्यंग है। सुख दुख दो फल, जीवन एक वृक्ष है। सुख दुख दो फल, जीवन एक वृक्ष है। आज के दौर में वो उतना ही तोड़ता है जो जितना दक्ष है। आजकल के जमाने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है। घर में बेटी ज़्यादा हो जाती हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, लेकिन बेटी का क्या रूप होता है, बेटी का क्या रोल होता है, ये हम सब लोग जान नहीं सकते। ये दुनिया पाठशाला है, बड़े अनजान रस्ते हैं। ये दुनिया पाठशाला है, बड़े अनजान रस्ते हैं। यहाँ पर ऐब महंगे हैं मगर इंसान सस्ते हैं। नजरिया कुछ बड़ा करके अगर तुम गौर से देखो, नजरिया कुछ बड़ा करके अगर तुम गौर से देखो, जहाँ घर में हो एक बेटी वहाँ भगवान बसते हैं। मित्रों, एक मकान के अंदर एक महिला बीच के मंजिल पर रहती थी, एक बेटा रहता था, एक बेटा नीचे रहता था। वो महिला विधवा थी, 15 दिन खाना एक बेटे के यहाँ खाती थी और 15 दिन खाना दूसरे बेटे के यहाँ खाती थी। आप व्यंग देखिए मित्रों, दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं, वो बुढ़िया 15 दिन खाना एक बेटे के यहाँ खाती थी और 15 दिन खाना दूसरे बेटे के यहाँ खाती थी। लेकिन जो महीना 31 दिन का होता था, वो बूढ़ी महिला एक दिन उपवास रखती थी। तो जिंदगी का मर्म है। आजकल बेटों का क्या रोल हो गया है। बेटी पर एक कविता और दे रहा हूं। अगर हो फूल कागज के, कली दिल को लुभाती है। अगर हो फूल कागज के, कली दिल को लुभाती है। गुलों के शोक मौसम में बहारें सिर झुकाती हैं। गमों के बोझ से टूटा वो बूढ़ा बाप यूं बोला। गमों के बोझ से टूटा वो बूढ़ा बाप यूं बोला। अगर बेटे निकम्मे हों तो बेटी काम आती है। अगर बेटे निकम्मे हों तो बेटी काम आती है। दोस्तों, मैं ये कविताएं लिखता हूँ जिंदगी के यथार्थ पर, जीवन की सच्चाई पर लिखता हूँ। मैं ऐसी कविताएं लिखता हूँ जो परिवार में बैठ के पढ़ी जा सकें और संदेश समाज को प्रेरणा दें। तो मैं कविता और पढ़ रहा हूँ। जिंदगी हकीकत में जियो, सपनों पर नहीं। एक सर्व व्यंग कविता दे रहा हूँ कि जिंदगी हकीकत में जियो, सपनों पर नहीं। जोश दिल में भरो, टखनों पर नहीं। जिंदगी हकीकत में जियो, सपनों पर नहीं। जोश दिल में भरो, टखनों पर नहीं। अगर जीवन में कामयाब होना है, अगर जीवन में कामयाब होना है, भरोसा अपने पर करो, अपनों पर नहीं। भरोसा अपने पर करो, अपनों पर नहीं। ये छोटी सी कविताएं आप लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। जीवन के अंदर आजकल हर व्यक्ति टेंशन में है, हर व्यक्ति परेशान है। सवेरे से शाम तक आदमी इस कदर जीवन में उलझा हुआ है, लगता है जैसे मुस्कुराहट हमारी जिंदगी से बहुत दूर हो गई है। एक गुलाब का फूल होता है जो सवेरे को खुलता है, खिलता है और शाम को उसका जो है ढलान हो जाता है। लेकिन गुलाब का फूल सारे दिन स्वयं भी मुस्कराता है और सारे जग को भी मुस्कराने की प्रेरणा देता है। तो मेरा मानना यह है, हमारा जीवन एक गुलाब के फूल की तरह होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है हमने जिंदगी के कितने पल जिए, ये नहीं देखना है जिंदगी के कितने पल जिए, हमें ये देखना है हमने एक पल में कितनी जिंदगी जी। हम तभी सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में मैं कुछ थोड़ी सी हास्य व्यंग की कविताएं भी लेकर के आया हूँ, चटपटी सी, ताकि आपका मनोरंजन हो और आपका सारा दिन बहुत बढ़िया बीते। चढ़ रही थी घोड़ी पर दूल्हे की बारात, चढ़ रही थी घोड़ी पर दूल्हे की बारात। सभी बराती ठुमक रहे थे, नचा पांव और हाथ, नचा पांव और हाथ। मार्ग में जितने खंभे आए, दूल्हे राजा उतरे घोड़ी से, चढ़े खंभे पर नीचे को धाए। देख करते बाप दूल्हे का, बोला मटका कर नैन। देख करते बाप दूल्हे का, बोला मटका कर नैन। डियर बरातियों, मेरा बेटा है बिजली में लाइन मैन, मेरा बेटा है हाइडल में लाइन मैन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्यधारा में विनीत प्रकाश गर्ग से काव्य पाठ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इंडोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिक सहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जक सांस्कृतिक प्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीन सभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिक सम्बन्धानां च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वय समूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित् छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिक भक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य सन्दीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चम्पतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉ अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्ति पर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिव रूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथित दान अनियमिततायाः प्रकरणे एफआईआर इत्यस्य पंजीकरणम् अभवत्, यस्मिन् 8 निगडिताः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुख चर्चाः अपि साधितवान्। विदेश मंत्री कतर देशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचण्ड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड आन्तरिक कर्नाटक मध्यप्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिमबंग सिक्किम राज्येषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अण्डमान निकोबार द्वीपेषु आन्ध्रप्रदेशे गांगेय पश्चिमबंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असमराज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैण्डे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों

0: द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
1: शरीर में आयरन बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, यानी शरीर के बाहर का 25,000वां भाग। शरीर में जितने भी खनिज हैं, उनमें 1,000वां भाग आयरन है। ये हीमोग्लोबिन में 60-80% होता है। वयस्क के यकृत, पलीहा तथा अस्थि मज्जा में लगभग 1-2 ग्राम तक आयरन संग्रह करने की क्षमता होती है। यदि आयरन अधिक मात्रा में लिया जाए तो यकृत में जमा हो जाता है। इसकी कमी से हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता। हीमोग्लोबिन फेफड़े से तंतुओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर में कुछ समय तक आयरन की कमी एनीमिया का कारण है। भोजन में आयरन की कमी, शरीर में उसके पूर्णतः अवशोषित न होने अथवा अन्य स्थिति जिसमें शरीर को आयरन की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता हो, एनीमिया का कारण है, जिसमें रक्त कोशिका संकुचित हो जाती है, उनमें हीमोग्लोबिन निर्माण नहीं हो पाता। गर्भावस्था, स्तनपान, किशोरावस्था में आयरन विशेष रूप से आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि गर्भस्थ शिशु के शरीर में आयरन की मात्रा गर्भवती के भोजन पर आधारित होती है। नवजात शिशु में वृद्धि इतनी तीव्र होती है कि संग्रहित आयरन 6 महीने में ही समाप्त हो जाए, यदि उसे भोजन में आयरन की अतिरिक्त मात्रा प्रदान न हो। बच्चों को दूध से लोहे की आवश्यक मात्रा की पूर्ति नहीं हो सकती। इसी कारण दूध के अतिरिक्त अन्य भोजन जैसे नारंगी का रस आदि भी देना चाहिए। रजोनिवृत्ति से पूर्व प्रति माह स्त्री के शरीर में आयरन की अतिरिक्त मात्रा में क्षति होती है, इसलिए स्त्री को अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता होती है, अन्यथा हाइपोक्रोनिक एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गर्भकाल में 300-500 मिलीग्राम आयरन गर्भवती के शरीर से शिशु के शरीर में पहुंचता है, इसलिए गर्भावस्था में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। कलेजी आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। वैसे गुर्दे, तिल्ली आदि में भी आयरन काफी मात्रा में होते हैं। वानस्पतिक खाद्य पदार्थों में हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे चौलाई, सरसों का साग, अरबी के पत्ते, पुदीना और अनाज जैसे गेहूं का आटा, चिवड़ा, बाजरा, रागी, ज्वार तथा दालें, विशेषतः साबुत दालें लोह तत्व के अच्छे स्रोत हैं। सोयाबीन में भी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। अनाजों में अंकुर और ऊपरी परत में आयरन होता है। ऊपरी परत का आयरन पिसाई में नष्ट हो जाता है, इसलिए अंकुरित दालों व अनाजों का प्रयोग अधिक से अधिक करें।
0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने जाना आयरन के महत्व के बारे में। आयरन वास्तव में मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, और श्रोताओं, पोषक तत्व खेती बाड़ी में भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में जानते हैं खेतों की उर्वरता बनाए रखने के तरीकों के बारे में।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है खेतों की उर्वरता कैसे बनाए रखें। तो भैया देखिए, खेत हमारी धरोहर हैं और हमारा जो है आर्थिक हिसाब खेतों के ऊपर निर्भर है, और भाई हम जो है सब कुछ अपनी खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर हैं। तो भैया जिन खेतों से हम फसलें पैदा करते हैं तो उन खेतों की सेहत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वे खेत उर्वर होने चाहिए। और खेतों को उर्वर बनाने के लिए बहुत सी विधियां किसान भाई जानते हैं और करते भी हैं, तो भैया सबसे पहले जब हम बात करते हैं कार्बनिक खादों के प्रयोग की, तो भाई देखिए कार्बनिक जो खादें होती हैं जो परंपरागत रूप से हमारे किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है और केंचुए की खाद जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, इनका प्रयोग करके हमारे किसान भाई अपनी खेतों की उर्वरता बनाए रख सकते हैं। और साथ साथ में जो हरी खाद है तो भैया तीसरे चौथे साल प्रत्येक खेत में हमारे किसान भाई सनई ढेंचा या जो दूसरी हरी खाद है जैसे सर्दियों में बरसीम है, मटर है, इन फसलों की हरी खाद के रूप में हम पलटाई करके प्रयोग करके अपनी मिट्टी को उर्वर बना सकते हैं। और भैया दूसरी बात आती है कि हमारे किसान भाई यदि उचित फसल चक्र अपनाएं तो भी हमारे खेतों की उर्वरता बनी रहती है। यानी कि उचित फसल चक्र का मतलब ये हो गया कि भाई हम लगातार एक ही फसल न उगाएं, भाई गेहूं के बाद हमारे किसान भाई चारे की फसल उगाएं और चारे की फसल के बाद धान की फसल उगा सकते हैं, धान की फसल के बाद आप चना मटर या मसूर उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक निश्चित अंतराल पर किसान भाई यदि दलहनी फसलों का भी बीच बीच में अपने खेतों में प्रयोग करें तो उससे भी हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और हमारे खेतों की उर्वरता में इजाफा होता है। अब बात आती है भैया रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने की, तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग तो हमारे किसान भाई करते ही हैं, जैसे भैया डाई अमोनियम फास्फेट और यूरिया का प्रयोग करते हैं। इनके साथ साथ बहुत ही तेज विषैले रसायन होते हैं जैसे हमारे खरपतवार नाशी हैं, कवक नाशी हैं, पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनसे भी हमारी मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। तो रासायनिक पदार्थों का कम प्रयोग करके हमारे किसान भाई अपनी फसल पैदा करेंगे तो अच्छा उत्पादन होगा और हमारी मिट्टी की सेहत बनी रहेगी। क्योंकि भैया रासायनिक पदार्थ हमारी मिट्टी की संरचना बिगाड़ते हैं, उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रिया में बाधा डालते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके प्रयोग से कुछ सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और भैया अगली बात हम करें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में, तो ग्रीष्मकालीन जुताई का भी बहुत अच्छा महत्व होता है। तो किसान भाई ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करें, इसको गहरी जुताई के नाम से भी जाना जाता है, और किसान भाई इसको मई जून के महीने में करते हैं। और ग्रीष्मकालीन जुताई का भी ये फायदा होता है कि इसमें खरपतवारों के बीज, कीटों के अंडे और जो कवक के कवक जाल होते हैं वे तेज धूप में, तेज रोशनी में नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई अपनी खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। और भैया खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है कि किसान भाई जो हमारी खेतों में फसल उग रही हैं तो भैया उनके जो फसल अवशेष हैं उन फसल अवशेषों का सही ढंग से आप प्रबंधन कर दें तो भैया हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और हमें उत्पादन भी मिलता रहेगा। और फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए आप जानते ही हैं कि भैया ये दो विधि होती हैं, एक तो भैया फसल अवशेषों का प्रबंधन हम खेतों के अंदर ही इन सीटू विधि से करते हैं, यानी कि जो फसल अवशेष हमारे बच जाते हैं फसल को काटने के बाद उनको हम विभिन्न यंत्रों की सहायता से मिट्टी में मिला दें और उसकी एक कार्बनिक खाद के रूप में या कंपोस्ट खाद के रूप में सड़ा गला करके प्रयोग कर लें तो भैया ये बहुत अच्छा फसल अवशेष प्रबंधन है। और एक भैया दूसरी विधि ये होती है एक्स सीटू, इसको कहते हैं कि भैया फसल अवशेष हम खेत से बाहर ले जाकर उसको किसी गड्ढे में एक अच्छी खाद तैयार कर लें जो कंपोस्ट खाद जैसी होती है, तो भैया इस विधि को

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आइए आपको पहले बता देते हैं हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10 बजे। प्रस्तुति आकाशवाणी अयोध्या की होगी। जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा सुबह 9:15 पर। आज दी जाएगी जनपद अलीगढ़ और जनपद झांसी की जानकारी। नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में वृक्षारोपण पर विशेष कवि गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। प्रतिभागी होंगे अरविंद कुमार, राजकुमार वर्मा, कल्पक कपलश और इस कवि गोष्ठी का संचालन करेंगे चरण सिंह। सुगम संगीत के अंतर्गत अंजना माथुर की गजलें आप सुनेंगे शाम 7:32 पर। विविधा में नगीना सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी शाम 6:45 पर। वार्ता का विषय होगा साक्षरता मानव विकास की आधारशिला। कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में बासमती धान की नर्सरी में समेकित कीट प्रबंधन विषय पर भेंट वार्ता में डॉक्टर प्रमोद सिंह तोमर से बातचीत करेंगे सुबेंद्र सिंह। कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:15। मेरा सपना उन्नत भारत में युवाओं को रोजगार के लिए ELI योजना की जानकारी दी जाएगी शाम 5:00। लोकधारा में जमुना देवी से गढ़वाली लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनेंगे पूनम शर्मा का काव्य पाठ। धरती गाती है कार्यक्रम में कुलदीप सिंह आर्य से रागनी प्रसारित की जाएगी सुबह 9:25 पर। और ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 7:31 पर। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं,

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह जानकारी दी।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है।
0: ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
2: 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
0: श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है।
3: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है। और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
4: कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत उत्सवपूर्ण वातावरण में एक दिन में 35 करोड़ पौधों का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
5: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से टनकपुर से पीलीभीत और बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहेब आदि कैलाश और नानक मत्ता साहेब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी।
6: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। ये ट्रेन सिर्फ जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
7: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
8: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
9: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। खिलखिलाती नई सुबह में आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति की कामना करते हुए आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख अखबारों की कुछ खास सुर्खियों के साथ। सबसे पहले बात अमर उजाला अखबार से। दाखिले से पहले मान्यता जांचें, डीम्ड और निजी यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों की डिग्री मान्य नहीं। वाहन उद्योग के लिए ऐतिहासिक रहा जून, महंगे पेट्रोल डीजल ने कराई सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की रिकॉर्ड बिक्री। 250 साल में पहली बार रजा लाइब्रेरी में प्रवेश पर लगेगा शुल्क, सलाहकार समिति की बैठक में टिकट व्यवस्था, नटराज प्रतिमा स्थापना और पर्यटन केंद्र विकसित करने के प्रस्ताव मंजूर। 19 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को मिलेंगे रोजगार के अधिक अवसर, स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 11 खाली पदों पर होगी भर्ती, रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 37 नए पद सृजित। स्मार्ट मीटर का नया नियम लागू कर दिया सभी उपभोक्ताओं पर, 47 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को बिना बताए भार बढ़ाने का मामला। किराया महंगा होने से खाड़ी देशों में नहीं जा सका बिजनौर का आम, दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड आदि राज्यों में हो रही आम की आपूर्ति। सूखे से फसल बचानी है तो घटा दें यूरिया, फास्फोरस पोटाश बनेंगे संजीवनी, कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दी कम बारिश में फसल बचाने की सलाह, यूरिया की सामान्य खुराक में 20 से 25 फीसदी तक की कटौती। अब बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार से खास सुर्खियों की। यूपी की नई स्टार्टअप नीति में 100 करोड़ तक निवेश प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को मिली मंजूरी। ईपीएफओ की सेवाएं अभी शुरू नहीं, उमंग ऐप पर ईपीएफओ की सेवाएं काम नहीं कर रही, लॉग

में भी परेशानी आ रही, सदस्य नहीं देख पा रहे नए दावे या फिर अपनी पासबुक। नेमार अधूरे सपने और आसमों के साथ विदा। ब्राजील विश्व कप से बाहर, नेमार ने पेनल्टी से अपना आखिरी गोल दागा। मैच के बाद बोले, अब सब खत्म। कनाडा से जुड़ी एक खबर में अखबार लिखता है कि पेड़ पर टंगे होटल बने छोटे जीवों का ठिकाना, मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियों को बचाने का प्रयास। इसी तरह सिंगापुर की एक खबर, कांच बनाने वाली खिड़कियों से घर खुद बनाएंगे बिजली। बाल से 10,000 गुना पतली है पारदर्शी सोलर, बादलों वाले मौसम से भी बिजली बना सकता है। अब बात दैनिक जागरण अखबार की कुछ खास सुर्खियों की। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण के लिए दोबारा देना होगा टेस्ट, दुर्घटना पीड़ितों को अंतिम मुआवजा का भी प्रस्ताव, संसद के मानसून सत्र में आ सकता है मोटर वाहन कानून में कई बदलावों का विधेयक। अब बिजनौर के मेडिकल कॉलेज में ही कराई जा सकेगी कैंसर की जांच, जांच मशीन का हुआ उद्घाटन, कैंसर की जांच में नहीं होगी देरी। 15% तक महंगे हो सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, दूरसंचार कंपनियां अगले 3 से 4 महीनों के भीतर मोबाइल रिचार्ज में 12 से 15% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। गैर मुस्लिम से निकाह के लिए लेनी होगी वक्फ बोर्ड की पूर्व अनुमति, छत्तीसगढ़ में निकाह प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की तैयारी, अगस्त से लागू होगा नियम, सभी मौलानाओं का बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य, जांच के बाद मिलेगी निकाह की मंजूरी। और बच्चों का अपने जैविक पिता को जानने का अधिकार सर्वोपरि, एक व्यक्ति व 3 बच्चों का डीएनए टेस्ट करने का परिवार अदालत का आदेश बरकरार। तो दोस्तों, ये थी आज के प्रमुख अखबारों की कुछ खास सुर्खियां। और सुर्खियों के साथ ही आइए अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषता की। यूं तो दोस्तों, दुनिया के कई देशों में पेड़ों को पूजा जाता है, मगर भारत में तो कई पेड़ों में देवी देवताओं का वास माना जाता है। भारत में सनातन धर्म में पीपल, बरगद, तुलसी और केले का पेड़ अत्यधिक पवित्र माना जाता है। पेड़ों की पूजा और उन्हें धार्मिक एवं परंपराओं से जोड़ने के मामले में एशिया के देशों में नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम और जापान में भारत का नाम सबसे ऊपर है। और दोस्तों, भारत में आपको मालूम ही होगा कि पेड़ों को लेकर, या यूं कहें कि पेड़ों से हमारी भावनाओं को जोड़ने को लेकर कई तरह के गीत भी हमारे सामने आते रहते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ ऐसा ही एक गीत।

दोस्तों, गीत से पहले हमने बात की थी पेड़ों की। पेड़ों से जुड़ी धार्मिक परंपराओं या रीति रिवाज, चाहे जो भी हों, कहीं ना कहीं ये हमारे विश्वास पर टिकी होती हैं। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि पेड़ों पर हम सब का जीवन टिका होता है, निर्भर होता है। वो इसलिए क्योंकि पेड़ हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। इनके महत्व को और भी प्रभावी ढंग से समझाने के लिए साल 1950 से लगातार वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। आज इस सप्ताह का आखिरी दिन। अगर पेड़ों की यानी हरियाली की बात करें और इसे हमारी खुशहाली से जोड़कर देखें, तो हम पाएंगे कि जहां जहां पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां स्वास्थ्य, सुकून और समृद्धि के हमें अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। हम देखेंगे कि ये पेड़ हमें आपदाओं से बचाते हैं। एक बार पौधा लगाने के बाद, मामूली सी देखभाल के बाद, जब वो एक पेड़ का रूप लेता है ना, तो हमें स्वस्थ, ताजी हवा, ठंडी छाया, पर्याप्त ऑक्सीजन, धूप बारिश से बचाव, फल फूल लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं। ये सब मिलता है बिल्कुल फ्री, निशुल्क, मुफ्त। दोस्तों, एक कहावत है ना कि हींग लगे न फिट।

0: लकड़ी और रंग चोखा। जी हां, पेड़ भी ऐसे ही होते हैं, हमसे कुछ नहीं पाते पर देते बहुत कुछ हैं। अगर आप इस बात को आजमाना चाहते हैं ना, तो देर मत करिएगा, एक पौधा आज ही रोपिए और उसे अपने कद से ऊपर निकलने तक पाल पोस कर देख लीजिए। यकीन मानिए, आपको पेड़ों से प्यार हो जाएगा, प्रकृति से प्यार हो जाएगा। इसी प्यारी सी बात के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: इन संदेशों के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। दोस्तों, जैसे पेड़ प्रकृति के अमूल्य उपहार हैं, उसी तरह पानी भी प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर है। इस समय मानसून के दिन चल रहे हैं, कई जगह झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब बारिश हो रही हो तो हम बारिश की बूंदों को सहेजने के बजाय चाय पकौड़ी का लुत्फ उठाने में ही वक्त गुजार दें। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां बारिश इस समय नहीं हो रही है, वहां के हालात आप जानेंगे तो आप चिंतित विचलित हो जाएंगे। दोस्तों, अगर बारिश की बूंदों को जमीन में उतारने की हमने तैयारी कर रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रखी है तो हमें ये देखना होगा कि हमारे आसपास पक्के भवन हैं तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी बारिश की बूंदों को वैज्ञानिक तकनीक के साथ जमीन में उतारने की तैयारी, और अगर हमारे आसपास कच्ची जमीन है तो हमें जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे खोद देने चाहिए जिससे वे बारिश के पानी से भरे रहें, और ये पानी बहने की बजाय धीरे धीरे रिस रिस कर जमीन में चला जाए। और जब ये पानी रिस कर जमीन में जाएगा तो यकीन जानिए भूगर्भीय जल स्तर को ऊंचा उठाने में यानी भूगर्भीय जल को वाटर रिचार्ज कराने में इसमें कहीं ना कहीं हमें काफी मदद मिलेगी। तो पक्के मकान है तो भी और पक्के मकान नहीं है, कच्चा स्थान है तो भी, हम दोनों ही तरीकों से बारिश की बूंदों को सहेज सकते हैं, भूगर्भीय जल स्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसी जानकारी के साथ आइए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब कार्यक्रम में क्रम है तिथि विशेष का। दोस्तों, यूं तो हमारे जीवन में हर एक दिन बहुत खास होता है, और बीते हुए दिनों में जो हमने काम किए होते हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमें हमारी भूली बिसरी यादों में याद रहते हैं, और कुछ ऐसी उपलब्धियां होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इतिहास बन जाती हैं। दोस्तों, फिल्म संगीत को नई दिशा देने वाले अनिल बिस्वास, जी हाँ, अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के बरिसाल, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहां हुआ था। उन्होंने 1930 के दशक में हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशन शुरू किया, और क्रिस्टन व कोरल गायन के प्रयोगों से फिल्म संगीत को नई दिशा दी। किस्मत, आरजू और हमदर्द जैसी फिल्मों का उनका संगीत आज भी याद किया जाता है। उन्होंने मुकेश व तलत महमूद को पहचान दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर सम्मान मिला। 31 मई सन 2003 को अनिल बिस्वास का निधन हुआ। दोस्तों, एक ऐतिहासिक घटना घटी थी 7 जुलाई सन 2003 में, जी हाँ, 7 जुलाई सन 2003 में नासा ने डेल्टा 2 रॉकेट के जरिए अपॉर्चुनिटी मंगल रोवर प्रक्षेपित किया। जनवरी 2004 में मंगल पर उतरने वाले इस रोवर का मिशन केवल 92 दिनों का था, लेकिन यह करीब 15 वर्ष तक सक्रिय रहा। इसने मंगल पर प्राचीन जल के ठोस प्रमाण खोजे और ग्रह के भूगर्भीय इतिहास का पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। और दोस्तों, दुनिया ने पहली बार चखा था स्लाइस ब्रेड का स्वाद। जी हां, 7 जुलाई सन 1928 में दुनिया में पहली बार मशीन से कटी हुई स्लाइस ब्रेड व्यावसायिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध हुई थी। इसे अमेरिका स्थित चिलिकाय बेकिंग कंपनी ने बेचा था। स्लाइसिंग मशीन का आविष्कार ऑटो फ्रेडरिक रोहवेडर ने किया था। इस नवाचार ने ब्रेड उद्योगों में क्रांति ला दी थी। और दोस्तों, जब ब्रेड की बात हुई है तो एक और तिथि विशेष है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वो भी हमें काफी, हम उसका लुत्फ उठाते हैं, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा वो बन चुकी है। दोस्तों, आज है विश्व चॉकलेट दिवस। यूं तो इस दिन को मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन विश्व स्तर पर आधिकारिक तौर पर इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2009 में हुई। बताते हैं कि 7 जुलाई 1550 को चॉकलेट पहली बार यूरोप में लाई गई थी, और ये दिन दुनिया भर में चॉकलेट प्रेमियों द्वारा कोको बीन्स से बनी अपनी पसंदीदा मिठाइयों और व्यंजनों जैसे केक, ब्राउनी, हॉट चॉकलेट और कैंडीज का आनंद लेकर इस दिन को मनाने की कई जगहों पर परंपराएं आज भी हैं, खास तौर से आज के दिन।

0: बोलो।
1: ये तो मुश्किल है।
0: सोचो, फिर से सोचो।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को हम और भी बेहतर बनाएं, तो उसके लिए आप हमें सुझाव भेज सकते हैं पत्रों के माध्यम से। कल आपसे पुनः भेंट होगी कुछ और ख़ास जानकारियों के साथ और प्यारे प्यारे से फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और याद रखिए कि पेड़ अपने पास कुछ नहीं रखते, अपना सब कुछ आप पर न्योछावर कर देते हैं। नमस्कार।

0: साथ साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
5: India and Indonesia are very close and strategic partners.
6: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
7: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इस सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, इस सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
3: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
7: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
8: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ

0: महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमरीका को 4-1 से हरा कर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीरे आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीरे आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वजीर आजम ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क्याम के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला दो तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के 3 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी।

0: अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की सदसाला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक एक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि यह वजारत रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत की सुलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरबूत डिजिटल डेटा बेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों के 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाब्तगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद दियोगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAACने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाजाबता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्जाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुक्काम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आले खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा 4 खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़यात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर

0: रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमारी महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाज मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं, जबकि NDRF और SDRF की टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां लोनावाला में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरे के बायस कई सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सियाहती मकामात को एहतियातन बंद कर दिया गया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, सतारा और पुणे के हसास घाट इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज मुंबई समेत कई साहिली जिलों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मुल्क के शुमाल मशरक के बाज इलाकों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पाटाया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमुई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत ने मुख्तलिफ वजन के जुमरों में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन की कुश्ती और मर्दों के फ्री स्टाइल दोनों जुमरे के टीम मुकाबलों में टॉप 3 में जगह बनाई। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिकेल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में NIA की जिमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पाटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। गोल्डन हिट्स कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आपके आज के दिन की हंसते मुस्कुराते हो शुरुआत इसी मंगल कामना के साथ आइए करते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।
4: हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे।

अभी आपने सुना फिल्म असली नकली का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत हसरत जयपुरी ने लिखा था और संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। और दोस्तों, कई बार ना हमारे मन में क्या होता है ये सामने वाला नहीं पहचान पाता है, और जो हमारे मन में होता है, जो हमारे मस्तिष्क में होता है, उसी के हिसाब से हमारी गतिविधियाँ होती हैं, हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर इसमें जब कोई सामने वाला हमसे कुछ अपने मन की चाहे, मन की अपेक्षा पूरी करनी चाहे, तो एक उतार चढ़ाव वाला भाव हमारे मन में आता है, यानी हम खुद को भी नहीं पहचान पाते और सामने वाला भी हमें पहचानने में चूक कर जाता है। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म पहचान का ये प्यारा सा गीत आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने सुना फिल्म पहचान का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। दोस्तों, पहचान जो होती है ना, वो कभी कभी तो बहुत सहज ही समझ में आ जाती है और कभी कभी बड़ा वक्त लग जाता है किसी को पहचानने में। अब देखिएगा, कुछ बातों को भी समझने में बड़ा वक्त लग जाता है। जवानी का एक ऐसा दौर होता है जो बार बार नहीं आता। जी हाँ, बहते हुए दरिया की तरह होती है जवानी। जैसे दरिया एक बार आगे बढ़ने के बाद फिर लौट कर नहीं आता ना, इसी तरह जवानी का एक दौर बीत जाने के बाद लौट कर नहीं आता। और ये बात किसी को तो बहुत सहज समझ आ जाती है और किसी को तो बार बार समझाने पर भी नहीं पता चलता।

अभी आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में उम्र कैद फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया इकबाल कुरैशी ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: 10 लाख की लॉटरी
2: मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम आंख मिचौली।

जी हाँ दोस्तों, दिल जो है वो मस्ताना है और ये कुछ कहता है जो हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और देखेगा, बोला यानी कहा तो केवल मुंह से जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले जो बातें होती है ना, वो हमारे दिल और दिमाग में चल रही होती हैं। यानी कि दिल की बातें और दिमाग की बातें जो होती हैं, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल की बातों को सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग की बातों को सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल की बातों में और दिमाग की बातों में आपस में तालमेल बनाने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दिल और दिमाग की बातों में ना उलझें और सुने कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को इस प्यारे से गीत में, फिल्म का नाम था संग्राम। गीत रचना ऐश कमल की थी और संगीत लाला असर सत्तार ने दिया था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं जरूरी संदेश।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दिल की बात जो कही जाती है वो लबों से कही जाती है, कभी कभी दिमाग से सोची गई बात को भी इन लबों से कहा जाता है। और दोस्तों, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो भी कई बार दिल की बातों को बड़ी आसानी से बयां कर देती है। और उससे भी आसानी से अगर कोई अपने दिल की बात को कह देता है तो वो होती हैं हमारी नज़रें।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को इस प्यारे से गीत में, फिल्म का नाम था बनफूल। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत हेमलता की आवाज़ में, फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गीत रविंद्र जैन ने दिया है और संगीतबद्ध भी रविंद्र जैन ने किया है।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अलीगढ़ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
3: अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा ग्राम सचिवालयों को और अधिक प्रभावी बनाने

0: सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर लागू किया गया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, वरासत, भू अभिलेख सत्यापन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक रूप से तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीएम प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि लेखपाल अपने निर्धारित दिवस एवं समय पर ग्राम सचिवालयों में उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी प्रकरणों में आवश्यक मार्गदर्शन, अभिलेखों का सत्यापन, जाँच एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगे। इसे राजस्व सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा ग्रामीणों को समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी रोस्टर का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम सचिवालय में रोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि ग्रामीणों को लेखपाल की उपलब्धता की पूर्व जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में अस्मिता साइकिलिंग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम सेवा भवन से हुई। साइकिल रैली सेवा भवन से विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। युवाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और कार्यक्रम में फिटनेस व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामघाट रोड स्थित आरएएफ 104 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने परिसर में पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ अन्य अधिकारियों एवं जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल नल्ले मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का प्रण लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के कस्बा वेसवा निवासी भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो राम गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान भारी गोलाबारी के बीच अदम्य साहस, असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण का परिचय देने पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार में शामिल शौर्य चक्र प्रदान किया गया। देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस वीर सपूत ने न केवल भारतीय नौसेना बल्कि पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वेसवा से राष्ट्रपति भवन तक यह सम्मान हर युवा के लिए प्रेरणा है। अलीगढ़ में 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब जिले से भी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर तैयार होंगे। उच्च कोटि के कोचों की देखरेख में खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाएंगे, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है,
1: स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा लगभग 60 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें नेशनल लेवल का ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल है। इसके अलावा 4 उसमें बैडमिंटन कोर्ट हैं, इसके अलावा उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे पिकल बॉल इत्यादि हैं, उनको लाया जा रहा है। लगभग 550 लोगों के बैठने की उसमें दर्शक भीड़ है।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में डूंडा स्थित कार्यालय सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
2: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
3: झांसी प्रशासन ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों तथा जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जनपद में उत्साहपूर्ण मनाया गया। झांसी के लिए परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। उन्होंने योग को स्वास्थ्य जीवन का आधार बताते हुए जनपद वासियों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। जिले के सभी विकास खंड

विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भी सामूहिक योग अभ्यास आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने झांसी प्रवास के दौरान मंडलीय विकास एवं कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अवैध खनन, भू माफिया, ओवरलोडिंग तथा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही झांसी में प्रारंभ किए गए जनसंवाद मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की। विकास परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसून को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता अभियान तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। महिला एवं बाल विकास तथा पोषण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार ने झांसी की उपलब्धियों की सराहना की। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने जिले में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, ICDS, कुपोषण अनुमोदन

0: यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में झांसी को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी रहा। प्रशासन द्वारा निवेश औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करने के प्रयास लगातार जारी है। कृषि विभाग की खरीफ फसलों की तैयारी को लेकर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा कृषि यंत्रीकरण योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, संपर्क मार्ग निर्माण तथा रोजगार सृजन के कार्य में तेजी लाई गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सरकारी विभागों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों ने पौधारोपण कर हरित झांसी के निर्माण का संकल्प लिया। श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से झांसी ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जिले के सभी 496 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे झांसी उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा जिला बनने की दिशा में अग्रसर हुआ जहां ग्रामीण क्षेत्र बाल श्रम मुक्त घोषित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत हजारों बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ा गया और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानि 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। धरती गाती है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं लोक कलाकार कुलदीप सिंह आर्य और उनके साथियों की आवाज में रागनी। तो लीजिए, प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की ये पहली रागनी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में आपको सुनवाई जा रही हैं लोक कलाकार कुलदीप सिंह आर्य और उनके साथियों की आवाज़ में रागनी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं जरूरी संदेश।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस संदेश के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाई जा रही हैं लोक कलाकार कुलदीप सिंह आर्य और उनके साथियों की आवाज़ में रागनी। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की एक और रागनी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में आपको सुनवाई जा रही हैं लोक कलाकार कुलदीप सिंह आर्य और उनके साथियों की आवाज़ में रागनी। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की ये अंतिम रागनी।

इसी रागनी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में अभी आप सुन रहे थे कर्मवीर सिंह आर्य और साथियों की आवाज में रागनी।

0: वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। प्रस्तुति आकाशवाणी अयोध्या की होगी। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में वृक्षारोपण पर विशेष कवि गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। प्रतिभागी कवि होंगे अरविंद कुमार, राजकुमार वर्मा, कल्पक कपलश और इस कवि गोष्ठी का संचालन करेंगे चरण सिंह। सुगम संगीत के अंतर्गत अंजना माथुर की गजलें आप सुनेंगे शाम 7:32 पर और विविधा कार्यक्रम में नगीना सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी शाम 6:45 पर। वार्ता का विषय होगा साक्षरता मानव विकास की आधारशिला। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में बासमती धान की नर्सरी में समेकित कीट प्रबंधन विषय पर भेंट वार्ता में डॉक्टर प्रमोद सिंह तोमर से बातचीत करेंगे सुबेंद्र सिंह। युवाओं को रोजगार के लिए ईएलआई योजना की जानकारी दी जाएगी मेरा सपना उन्नत भारत में शाम 5:00। लोकधारा में जमुना देवी से गढ़वाली लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर और दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनेंगे पूनम शर्मा का काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी लोकेंद्र।
0: श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और हम अपने श्रोताओं को बता दें लोकेंद्र कि ये कार्यक्रम चूंकि हमारे श्रोताओं का है, श्रोताओं के लिए ही है, तो सीधे तौर पर वे इस कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे अपने व्हाट्सएप मैसेजेस और पत्रों के माध्यम से। तो व्हाट्सएप मैसेज तो लाइव हम तक पहुंच जाएंगे लेकिन पत्रों के माध्यम से अपनी बात को कहने के लिए या अपना गीत सुनने के लिए उन्हें कुछ पत्र कुछ दिन पहले लिखकर भेजना होता है। तो जो पत्र हम तक पहुंचे लोकेंद्र
1: वो
0: पत्र
1: शामिल करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और व्हाट्सएप नंबर मैं अपने श्रोताओं के लिए बता देता हूं कि आप अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो गीत आप सुनना चाह रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। एक बार फिर से नंबर आप नोट कर लीजिए 9457078288।
0: जी हाँ बिल्कुल। और देखिएगा जैसे ही हमने व्हाट्सएप का नंबर बताया वैसे ही हमारी स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये हरे रंग के सितारे लोकेंद्र टिमटिमाने लगे हैं और अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हर कोई दिली इच्छा लेकर बैठा है। हम उन्हें निराश नहीं करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि हम अपने श्रोताओं को उनके पसंद के गीत सुनवाएं और उनके मैसेजेस को उनके पत्रों को इस कार्यक्रम में शामिल करें। लेकिन लोकेंद्र हम एक बात और ये कह देना चाहेंगे अपने श्रोताओं से कि आप जब एक बार मैसेज भेज दें तो कृपया प्रतीक्षा रखें, धैर्य रखें, आपका मैसेज हम इस कार्यक्रम में शामिल करने की हर चंद कोशिश करेंगे। मैसेज जब आपका पढ़ लिया जाए तो आप उसके आभारवश, धन्यवादवश या दोबारा अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए कृपया आप दोबारा मैसेज ना करें, अपने अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का पूरा मौका दें।
1: होता क्या है चरणजीत कि हमारे श्रोता बार बार मैसेज करते रहते हैं तो उससे जो हमारे श्रोता एक बार मैसेज करते हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है हमको पढ़ने में भी।
0: तो
1: जो हमने कहा है आप निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप उसका ध्यान अवश्य रखेंगे और एक ही बार आप मैसेज हमें।
0: जी हाँ बिल्कुल। और हमें इस कार्यक्रम का ये पहला मैसेज मिल चुका है इंदु नौटियाल, योगेश चंद्र नौटियाल और नौटियाल परिवार के अन्य सदस्यों का, चुकी है हल्दुखाथा भाबर क्षेत्र कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल से। और ये अगला मैसेज जो कि हमें प्राप्त हुआ है
1: जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से, आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, मीना, तानवी, मानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी और बलवीर सिंह।
0: जी हाँ। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र शाह और ये भेजा गया है पद्मा टाकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से।
1: और बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया।
0: इसके साथ ही ये मैसेज हमें मिला है मजनू का टीला से भेजने वाले कमल बालूजा, मदन बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से मैसेज भेजने वाले हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और मलिक परिवार के अन्य सदस्य।
1: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से ये मैसेज हमें लिख भेजा है, आप हैं पप्पू राजा दिल खुश दिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता, आरजू, बुलबुल, संजीव बंटी और इनका पूरा खुश दिल परिवार।
0: जी हाँ, और लगातार मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं। ये अगला मैसेज
1: हलवाईयान शेरकोट से ये मैसेज चरणजीत हमें मिला है, आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया सादा।

0: हमारे पास है फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से। आप हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू शिवा शिवानी और पवन चौरसिया।
1: जी हाँ, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288। लोकेंद्र, ये हमने नंबर बीच में इसलिए बताया कि हो सकता है कुछ हमारे श्रोता कार्यक्रम के
0: जी
1: साथ
0: अभी
1: अभी
0: जुड़े
1: जुड़े
0: हैं।
1: हों, उन्हें व्हाट्सएप का नंबर ना मालूम हो। तो अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जिन श्रोताओं के मैसेजेस हम तक पहुँचे सुनवाते हैं उनको उन्हीं की पसंद का कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने फिल्म कुर्बानी का ये गीत सुना मनहर और आनंद के स्वर में। गीत इंदिवर साहब का था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।
1: और लोकेंद्र, लगातार मैसेज जो है वो हमारी स्क्रीन पर हम तक पहुंच रहे हैं। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। और ये मैसेज कहाँ से है?
0: कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांचल राय।
1: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और छाबड़ा परिवार के अन्य सदस्यों का।
0: और ये मैसेज हमें शेरकोट बिजनौर से निजामुद्दीन, मोहम्मद रऊफ, अरसलान, महक और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने लिखकर भेजा है।
1: नगर पंचायत बढ़ापुर जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से ये मैसेज भेजा है एम ताहिर और इनके अभी अन्य सभी साथियों ने।
0: जी, और ये मलोट कैंट पंजाब से ये खत हमें लिखकर भेजा है सतीश मिगलानी, शीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी ने।
1: मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश भत्ता ने हमें मैसेज लिख भेजा है कनेरा मोहल्ला पटियाला पंजाब से।
0: और
1: और
0: ये नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर और आल फ्रेंड ये लिखते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ ये हमें
1: शाही
0: मैसेज।
1: मार्केट सोहारा जनपद बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना अरफात, अदीब और कादिर चौधरी ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए।
0: करूला मुरादाबाद से अयूम खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और सिंधौली मीरगंज बरेली से ये हमें व्हाट्सएप मैसेज लिखकर भेजा है इसी गीत को सुनने के लिए।
1: मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी ने हमें मैसेज लिख भेजा है और मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून ने मैसेज भेजा है जिला मुरादाबाद के गांव दूल्हापुर से।

0: काल, सोनिया सबकाल, साईराज सबकाल और विशाल सबकाल का भी मैसेज हम तक पहुंचा है।
1: छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: गांव पांडरकड़वा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे ने मैसेज हमें लिख भेजा है और लगातार मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं।
1: आप हैं मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन और इनके साथ संयम जैन, मुस्कान जैन और पूरा जैन परिवार हमको ये मैसेज लिखकर गीत सुनना चाहता है।
0: छठिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, असमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार का मैसेज और इसके साथ ही बिहार भवन दिल्ली से एक मैसेज लिख भेजा है सरफुद्दीन कुटरिया, उल्लाह वली कुटरिया ने।
1: बिहार स्टेट से मोहम्मद याकूब, आसमा फकीर, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद सलीम और मोहम्मद कलीम आसमा फकीर ये सुनना चाहते हैं गीत।
0: तो हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं अपनी ही श्रोताओं की पसंद का कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म फागुन का ये गीत है जिसे आवाज़ें दी हैं आशा भोसले और साथियों ने। गीत रचना कमर जलालाबादी की है और संगीत ओपी नैयर का।
1: तो जी आपके लिए पेश है फिल्म फागुन का एक गीत।

जी हाँ, वास्तव में श्रोताओं, इस समय जो मानसून कुछ धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, तो जहाँ जहाँ भी बारिश नहीं हो रही है, कुछ ऐसी ही उम्मीदें, ऐसी ही कामना लिए हुए हैं, और ऐसी कामना लिए हुए हमारे श्रोता भी हैं जिन्हें वास्तव में बारिश की बहुत ज़रूरत है, और ऐसी ही कामना के साथ उन्होंने ये गीत भी ज़रूर सुनना चाहा होगा। तो हम अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं ज़रूरी संदेश।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें आई हुई हैं, बहुत सारे पत्र हमारे साथ में हैं और साथ साथ व्हाट्सएप मैसेज हैं, तो आइए।
2: जी हाँ लोकेंद्र, वास्तव में लगातार मैसेज आ रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप भी मैसेज कर सकते हैं 9457078288 यानी 9457078288 पर।
1: तो श्रोताओं, ये फरमाइश हमें लिख भेजिए। आप हैं कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम कमल कुमार और अफजल मलिक ने।
2: जी हाँ, और ये मैसेज है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा, रेशमा थापा। और ये अगला मैसेज है जूट मिल रायगढ़ से डब्लू बेलदार, आदिबा बेलदार, सरफुद्दीन बेलदार और आसमा बेलदार का। और ये अगला मैसेज किन का है?
1: ये आप हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रतेश और पूरा इनका संघई परिवार।
2: और ये मैसेज है नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर। और इसके साथ ही भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज लिख भेजा है सोहन जोशी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम ध्यानपुरा से आप हैं, आपने लिखा है, इन्होंने नाम अपना
2: जी हाँ लिखा है, ये नसरीन,
1: नसरीन काजोल और सभी घर परिवार के पूरे लोग।
2: जी हाँ, और ये मैसेज है गांव व डाकघर नेमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, और सुनना चाहते अपनी पसंद का गीत। और अगला मैसेज किनका है लोकेंद्र?
1: अगला मैसेज है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष जंगेल और नंदली जंगेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल ने हमें लिख भेजा है।
2: और ये मैसेज है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का।
1: और ये मैसेज है जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर,
2: चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्ल्यू अली जाटव, सोनम अली जाटव और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का मैसेज भी हम तक पहुंचा।
1: आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आपने हमें लिख भेजा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से,
2: मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी ने नई बस्ती गंज डुंडवारा से हमें मैसेज भेजा है।
1: आपने लिखा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से आप हैं लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप।
2: ये मैसेज हमें मिला है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से, लिखने वाले हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के अन्य सदस्य। इन्होंने सुनना चाहा है अपनी पसंद का कार्यक्रम का। सुनिए ये अगला गीत।

0: तो श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत जो अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में था और फिल्म का नाम था त्रिमूर्ति।
1: और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
0: जी बिल्कुल।
1: तो चरणजीत, कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बता दें कि आप हमें इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
0: जी हाँ लोकेंद्र, और पत्र भी भेज सकते हैं, क्योंकि अब हम जो पत्र शामिल करेंगे वो पत्र इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले तक हम तक पहुँच चुके थे। तो हम उन श्रोताओं को बता दें कि जिनका मन है हमें पत्र भेजने का तो वो किस पते पर भेज सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप हमें पत्र भेज सकते हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763 पर। तो पत्र जो लोकेंद्र मैं देख रहा हूं कि आपके हाथ में है, तो किन्होंने हमें ये पत्र भेजे हैं?
1: ये पत्र हमें लिखकर भेजा है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से आप हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश कुमार बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, रवनुक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। और ये पत्र मेरे हाथ में है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। और ये गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज भी है हमारे पास, इसको आप पढ़िएगा।
0: जी हाँ बिल्कुल, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार ने हमें मैसेज लिख भेजा है।
1: और ये पत्र मेरे हाथ में है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से आप हैं वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा, बुलंदशहर से बदुद्दीन अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी और फर्जी वली अंसारी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, करनाल से आप हैं जग्गी दुआ, संदीप गोगनानी और सुनीता शर्मा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजबा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर।
0: और ये मैसेज जो हम तक पहुंचा है मोहल्ला अफगानान शेरकोट जनपद बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल घनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का। और सुनना चाहा है इन्होंने अपनी पसंद का कार्यक्रम का ये गीत।

0: हमारे श्रोताओं की पसंद का कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में। मदर इंडिया फिल्म का ये प्यारा सा गीत था जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत नौशाद ने दिया था।
1: श्रोताओं, 954 किलो हर्ट्ज पर आप इस समय अपने रेडियो फोन, मोबाइल फोन, रेडियो सेट या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त लोकेंद्र, और मेरे साथ हैं,
0: जी हाँ, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह।
1: तो श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद का गीत आपके नाम के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो, तो जल्दी से हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9457078288 इस नंबर पर। और ये अगला गीत सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास है, मोताला महाराष्ट्र से आप हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती चिड़िया और ओम भैया।
0: और ये मैसेज गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का हम तक पहुंचा है।
1: वडिंग खेड़ा पंजाब से आप हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।
0: और अगला मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का।
1: आप सब्जी मंडी झज्जर हरियाणा से लिखते हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत, मंजू, मयंक भाटिया और परिवार के इनके सभी लोग।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जाड़ा, सिटी दीवाना का भी मैसेज हम तक पहुंचा है।
1: आपने लिखा है सप्तरंग श्रोता परिवार, कुंभार गली श्रीरामपुर से आप हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले।
0: ये मैसेज हमें मिला है गगनदीप थांदी, त्रिपता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी का, जो कि भेजा गया है गांव टोरोवाल नवा शहर पंजाब से।
1: दाऊसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी और मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं।
0: भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का दतरेंगी से हमें मैसेज मिला है।
1: और राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा हमें मैसेज लिखकर भेजते हैं गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से।
0: मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी का मैसेज हमें मिला है। इसके साथ ही कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का मैसेज दादरी गेट भिवानी से हम तक पहुंचा है।
1: आपने हम तक लिखकर भेजा है, आप हैं सतीश मिगलानी, अनमोल मिगलानी, विवान मिगलानी और महावीर संधू, आप लिखते हैं मलोट कैंप पंजाब से।
0: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
1: आप लिखते हैं गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र, मनोज और इनके भ्याण परिवार के सभी सदस्य।
0: जी हाँ, और मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निसा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का मैसेज हम तक पहुंचा है। और ये अगला मैसेज
1: नांगल सोती जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद असलम पेंटर, मोहम्मद उजैफ खान।
0: और ये मैसेज है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से रफत, सईद, राशिद, असद, फिरोजा, मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
1: ग्राम मिर्तला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, सुषमा, रश्मि, दीपिका, देवांश, कुमार भास्कर और बेबी आरवी हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं।
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आपकी पसंद।

0: श्रोताओं, अभी आपने किशोर कुमार के स्वर में फिल्म अमर प्रेम का ये गीत सुना। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया था आर डी वर्मन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज लगातार कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारे श्रोता ऐसे हो सकते हैं जो हमसे कार्यक्रम में अभी जुड़े हों, तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से आपके लिए बता देते हैं, 9457078288।
1: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है ग्राम मिरतला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, सुषमा, रश्मि, दीपिका, देवांश कुमार भास्कर और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का। और ये मैसेज
0: हमें मिला है, आप हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से और आप हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: ये मैसेज सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब का मैसेज हमें मिला है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से।
0: आप हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा और मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, आपने लिखा है मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से।
1: और ये मैसेज है नाज पैलेस अजमेर शरीफ, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी का। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। ये उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और ये अगला मैसेज हम तक पहुँचा है,
0: आप हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने।
1: और ये मैसेज मिला है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी का। और हमें देखिएगा लोकेंद्र, लगातार रिपीट मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, तो अपने श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे,
0: कहा भी था कि आप बार बार मैसेज करते हैं, आपका नाम शामिल कर लिया, फिर बार बार करते हैं तो जिन लोगों ने मैसेज किया है उनका नाम कहीं छूट जाएगा, तो आपसे निवेदन एक बार फिर से है कि आप हमें डबल और बार बार मैसेज ना करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। श्रोता रघुवीर नगर से हमें लिखते हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू।
1: और ये मैसेज नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर का मैसेज और मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुहरकर का मैसेज भी हम तक पहुंचा है। मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया शाहीन, नाजिया नूरी नाज का मैसेज नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से हम तक पहुँचा है।
0: अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान हमें मैसेज करते हैं।
1: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। और इसके साथ ही अगला मैसेज कहां से है,
0: ये मोहल्ला बारादरी से आप हैं, आपने लिखा है महमूद खान रामपुर से, मोहल्ला बारादरी से, भाई रफत साहब सईद और भाई मंसूरी राशिद और इनके परिवार के सभी लोग जिसमें फिरोजा, मुस्कान, नगमा और भी शामिल हैं।
1: जी हाँ, और ये मैसेज है 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, नंदनी रघुवंशी, लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी, वंदना और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और सुनना चाह रहे हैं अपनी पसंद का ये गीत।

तुम मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना बिना बिना बिना। आई आई ओ आई आई ओ।

झटका झटका दिल में रहता है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गूं दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को

0: अभी आपने सुना मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज़ में यह गीत, फिल्म का नाम प्यार किए जा। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: तो चरणजीत जी, कार्यक्रम में एक और गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं और बहुत सारे मैसेज इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय और हीरामण शेंडे का ये मैसेज हमारे पास हमें मिला है।
0: रेलगाड़ी श्रोता टोली कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल से ये मैसेज मोहम्मद उमर, मोहम्मद जावेद, विमल कौशिक, रवि अरोड़ा, चंद्रशेखर ठाकुर और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकम खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इशहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी ने मैसेज लिख भेजा है।
1: जसपुर रोड दुल्हापुर मुरादाबाद से आप हैं महबूब दुकानदार, बेगम शाहिबा महबूब, समीर अंसारी, वारिस अंसारी और अलसिफा परवीन।
0: और ये अंतिम मैसेज जो कि हम अब इस शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, सब्जी मंडी बुलढाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयशा अनम, मुदस्सिर हुसैन और कुछ पत्र भी मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में हैं।
1: हाँ, तो ये चरणजीत हमें पत्र लिखा है अयूब खान, इरम गुड़िया, सोएब खान, नावेद खान ने, करूला मुरादाबाद से। आप गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन मुस्कान और कुणाल, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश। आप हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा लाहौरी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद।
0: तो चलिए सुनते हैं अपने श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम अलग अलग,
1: और ये शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया था आरडी बर्मन ने।
0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का यह गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी चरणजीत सिंह
1: और मुझे लोकेंद्र को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने विनोद राठौर को सुना फिल्म बेखुदी में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: कार्यक्रम में श्रोताओं, सुनते हैं अब फिल्म खुदगर्ज का ये गीत, नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज के स्वर में। गीत इंदीवर साहब का है और संगीत राजेश रोशन का।

नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज को आप सुन रहे थे फिल्म खुदगर्ज में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनते हैं फिल्म चालबाज का ये गीत, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में। शब्द रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और संगीत है आनंद बख्शी का। तू रख दे हाथ बस दिल पर मुझे आराम आ जाए, तू रख दे हाथ बस दिल पर मुझे आराम आ जाए, तेरी एक झलक पाकर ये धड़कन संभल जाए।

चालबाज का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में एक और गीत सुनते हैं, फिल्म साजन से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू। गीत समीर का है और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है नदीम सरवन ने।

तेरी यादों के बिना जीना सजा सा लगता है। हर लम्हा मुझे अब एक जुदा सा लगता है। एक दिल को कैसे समझाऊं तू पास नहीं है तो, मेरा हर एक दिन वीरान समझ लगता है।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म साजन के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चितपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
3: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
3: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
3: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
3: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
3: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
3: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
3: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
3: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
3: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
3: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
3: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
3: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी
3: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
2: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
3: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
2: जी
3: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
3: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
2: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
3: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
2: जी।
3: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
2: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
3: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
3: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Attention please, Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please, Air India announces...
1: Papa, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
4: आओ चलो आओ।

0: सुनो कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसे चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके

0: 1 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
1: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
1: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
1: हाँ तो आओ, चलो आओ, खा दे रहा हूँ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली पूछ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी श्रोता सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। हम अपने श्रोताओं को हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी अयोध्या की। आज रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे कवि गोष्ठी। आज की ये कवि गोष्ठी वृक्षारोपण पर विशेष होगी। प्रतिभागी होंगे श्री अरविंद कुमार, श्री राजकुमार वर्मा, श्री कल्पक कपलश। संचालन करेंगे श्री चरण सिंह। आज संध्या 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे श्रोता गजलों का आनंद ले सकेंगे। कलाकार हैं अंजना माथुर।

विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत नगीना सिंह की वार्ता का विषय रहेगा साक्षरता मानव विकास की आधारशिला। समय रहेगा आज शाम 6:45 पर। आज दिन में 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत क्रम रहेगा आधी आबादी से। इसमें आप सुनेंगे पूनम शर्मा से काव्य पाठ। जमुना देवी के स्वर में गढ़वाली लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिन में 1:45 पर।

अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए प्रसारित होगा। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे पीयूष मिश्रा। आज शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को रोजगार के लिए योजनाओं के अंतर्गत आप सुनेंगे ईएलआई योजना के विषय में जानकारी। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा आज शाम 5:15 पर। आज के क्रम होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, दिल से दिल तक, बूस्टर्स और लव स्टोरीज। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे चर्चा, कृषि अवशेषों का सदुपयोग, कृषि सिंचाई योजना। इस कार्यक्रम में किसान भाई बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला सुनेंगे, इसमें भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। बासमती धान की नर्सरी में समेकित कीट प्रबंधन, डॉक्टर प्रमोद सिंह तोमर से सुबेन सिंह की बातचीत आप सुन सकेंगे। गीत संध्या कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 8:00। एक ही फिल्म से कार्यक्रम रात्रि 8:30 प्रसारित होगा और आज रात्रि 10:00 आप सुनेंगे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 अर्थात 954 kHz पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

अभी आपने एआर रहमान और श्रीनिवास के युगल स्वर में फिल्म लगान का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय कार्यक्रम आप सैनिकों के लिए सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं प्रणीति चोपड़ा के स्वर में फिल्म केसरी का ये गीत।

0: अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वर में फिल्म इश्क विश्क का ये गीत सुना। गीत समीर का था और संगीत अनु मलिक का। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक रिश्ता में। गीत समीर का था और संगीत नदीम शर्वण का।

0: साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।

0: मेहनत और रोजगार के वजीर अनिल राजभर ने कहा कि वुजरा की काउंसिल ने गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बिस्तरों के अस्पतालों और वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मुफ्त आराजी के अलॉटमेंट को अपनी रजामंदी दे दी है।
1: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है, मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: काबीना ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर और मुरादाबाद के जरिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने और क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से फंड फराहम करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर वाक़ प्रेरणा पार्क का इफ्तिताह किया। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल के मुजस्समों की भी नकाब कुशाई की। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि तरक्की के लिए विरासत का एहतराम जरूरी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शजरकारी मुहिम 2026 की तैयारियों का जायजा लिया।

महिलाओं की शक्ति, योग्यता, दृढ़ हौसलों को समर्पित हमारी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें हम आपका परिचय कराते हैं नई नई प्रतिभाओं से, नई जानकारी और साथ ही बहनों का मनोरंजन। यही है हमारा कार्यक्रम महिला जगत। सभी श्रोता बहनों को प्रियंका त्यागी का प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत आज के कार्यक्रम में। इसी मंगल कामना के साथ कि हमारी सभी श्रोता बहनें अपने परिवार सहित कुशल मंगल से होंगी। बहनों, एक परिवार से ही हम सबकी जिंदगी शुरू होती है। एक परिवार से हमारा समाज और हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। एक सुदृढ़ सशक्त राष्ट्र की मजबूती के लिए जरूरी होता है देश के सभी नागरिकों में आपसी भाईचारा, सौहार्द और प्रेम। और बहनों, अक्सर हमने ये तो सुना ही होगा कि जहां चार बर्तन होते हैं वो खड़कते भी जरूर हैं। ऐसा ही होता है अक्सर हमारे अपने रिश्तों में भी, अपने परिवार में, जहां कई बार एक छोटी सी बात को लेकर परिवार के सदस्यों में मनमुटाव हो जाता है। और बहनों, कई बार तो स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है कि जहां रिश्तों की डोर लगभग टूट ही जाती है। लेकिन किसी को माफ करना, क्षमादान देना हमारे नए रिश्तों की शुरुआत होती है, जिसकी आज के हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत आवश्यकता है। बहनों, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमा करना बलवानों का गुण है। बिल्कुल सही बहनों। और बहनों, वैश्विक क्षमा दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन हम आपसी मनमुटाव, नाराजगी मिटाकर सद्भावना पैदा करने और लोगों को एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना सिखाता है। यह दिन एक नई शुरुआत करने और पुरानी शिकायतों से आगे बढ़ने का एक सही अवसर है हम सभी के लिए।

का निर्माण हो सके। बहनों, हमारे जीवन में क्षमा का बहुत महत्व है। यह केवल एक गुण मात्र नहीं है, बल्कि स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य, शांति और सुखी संबंधों की नींव है। क्योंकि किसी को माफ कर देने से न केवल आपसी बैर भाव अहंकार खत्म होता है, बल्कि इससे तनाव कम होकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। बहनों, हमें भी अपने रिश्तों में एक बार जरूर मौका देना चाहिए उन्हें फिर से संजोने का। यही है वैश्विक क्षमा दिवस का सार। और बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इन संदेश के साथ।

0: अभी हम सुन रहे थे ये संदेश। खोले हैं पंख मेरे, कहती है जिंदगी, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए आज के परिदृश्य में ये पंक्तियां बिल्कुल सार्थक बैठती है। बहनों, आज भारतीय समाज धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन फिर भी एक विवाहिता का सौंदर्य जगत में कदम रखना हैरानी का कारण बन जाता है। लेकिन जो हर स्थिति में अपने सपनों को पूरा करे, दूसरों के लिए भी मिसाल बने और महिलाओं को यह याद दिलाने के प्रयास कि विवाह या मातृत्व के बाद भी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती, ऐसी ही है हमारी आज की आधी आबादी की नायिका। तो बहनों, सुनते हैं हमारा क्रम आधी आबादी से। हमारी आज की आधी आबादी की नायिका है पहली भारतीय महिला मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह, जिन्होंने 48 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मिसेज यूनिवर्स का ताज लाकर विश्व में भारत का मान बढ़ाया। यह जीत सिर्फ एक ताज की नहीं, बल्कि हर भारतीय विवाहित महिलाओं के सशक्तिकरण और दृढ़ हौसलों की जीत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 की भव्य प्रतियोगिता में दुनिया भर के लगभग 120 से अधिक देशों की प्रभावशाली महिलाओं के बीच शेरी सिंह ने अपनी बुद्धिमता, शालीनता और आत्मविश्वास के दम पर यह ताज अपने नाम किया। बहनों, बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की तो शेरी सिंह एक सफल एंटरप्रेन्योर, मॉडल और सोशल एक्टिविस्ट है। वे उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास स्थित गांव मकौड़ा की रहने वाली हैं। शेरी सिंह ने फैशन और रिटेल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की है और बहनों, इनको बचपन से ही मॉडलिंग का शौक भी रहा है। और बता दें कि एक समय ये राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। लेकिन उस वक्त उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी कहानी का रूप ही बदल दिया। खेलते वक्त पैर का लिगामेंट फटने से उनका बास्केटबॉल करियर समाप्त हो गया, लेकिन शेरी सिंह ने हार नहीं मानी और उन्होंने फैशन वर्ल्ड की तरफ रुख किया। बहनों, बता दें कि शेरी सिंह एक बच्चे की माँ हैं और उनके पति का नाम है सिकंदर सिंह, जिन्होंने उनकी इस यात्रा में पूरा सहयोग किया। बहनों, विवाह और मातृत्व के बाद इस मंच तक पहुंचना और सफल होना, जिसमें कड़ी मेहनत और अनुशासन का बहुत महत्व है, और इन्होंने इसे बखूबी निभाया। बहनों, विवाह के बाद एक महिला की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। विश्व स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत साहस, मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में मिसेज यूनिवर्स का खिताब पाना शेरी सिंह के लिए कितना चैलेंजिंग रहा, जानते हैं उन्हीं से।
1: एक गृहिणी के लिए सारी चीजें, एक माँ के लिए सारी चीजें बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने बच्चे को दें, अपने पति को दें, अपने ससुराल को दें, अपने पेरेंट्स को दें। तो बहुत सारे रोल्स होते हैं जिनको बैलेंस करके चलना पड़ता है, और चैलेंजिंग रहा। मेरे 2 साल की मेहनत इसमें लगी है और इसके साथ साथ काफ़ी सारी ट्रेनिंग लगती है। हमें रैंप पे चलना, हील पे चलना, ये सब बहुत मेहनत का काम है। ये बस ऐसे चमकता धमकता दिखता है और इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है।
0: बहनों, शेरी सिंह ब्यूटी विद ब्रेन का सशक्त उदाहरण है। विवाह के इतने दिनों बाद उनके मन में विश्व मंच पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार क्यों आया, बता रही हैं।
1: एक्चुअली ये मेरा 15 साल पुराना सपना है। 15 साल क्या, बल्कि मैं जब 5 साल की थी तब ऐश्वर्या जी और सुष्मिता जी मिस वर्ल्ड और मिस

0: यूनिवर्स जब बने थे
1: जी
0: तब से ही ये सपना रहा है। मगर फिर शादी हो गई, माँ बाप ने बोला पढ़ाई करो, पढ़ाई में लग गए, तो फिर बेटा हो गया, उसमें लग गए, तो कभी अपने लिए टाइम सच मिला नहीं या निकाला नहीं। तो अब लगा कि नहीं, इट्स नेवर टू लेट, कुछ अपने लिए करना चाहिए, और मैंने सोचा चलो कर।
2: बहनों, हम सभी के जीवन में विवाह से पूर्व और बाद में स्थितियां जरूर बदलती हैं और एक उम्र का दौर भी मायने रखता है। विवाह के बाद इस क्षेत्र में आने के लिए किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा, कितनी मेहनत की उन्होंने, सुनते हैं।
0: चैलेंज सबसे पहले तो जो फेस करना पड़ा, देखिए पेजेंट्री है, आउटलुक, आपकी आउटर ब्यूटी को भी इसमें काउंट किया जाता है। तो जब मेरा बेटा हुआ था तब मैंने 20 किलो वेट बढ़ा लिया था, और फिर वो कम करना बड़ा चैलेंजिंग रहा कि अच्छा मुझे दोबारा से अपना ध्यान रखना शुरू करना है। और ये वेट मेरा काफ़ी टाइम तक रहा था, और जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, हम लोग घर में हैं, सिर्फ चार लोगों से बात करें, सडनली आप स्टेप आउट करते हो, आपको स्टेज पे खड़ा होना है, लोगों के सामने बोलना है, रिप्रेजेंट करना है, देश को रिप्रेजेंट करना है, तो एक वो कुकून में से बाहर आना बड़ा ही चैलेंजिंग था। बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करी आगे बढ़े।
2: अब देखिए बहनों, हर महिला की स्थिति ऐसी नहीं।

0: किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, उस चीज से कोई लेना देना।
1: बहनों, शेरी सिंह सिर्फ सौंदर्य प्रतियोगी विजेता ही नहीं बल्कि उनके सामाजिक कार्य भी सराहनीय हैं। वे विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बच्चियों की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए काम करती रही हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उनका जाने का क्या उद्देश्य रहा और जीत के बाद उनकी क्या पहल रही, सुनते हैं शेरी सिंह से।
0: जो मिसेज यूनिवर्स का जो एडवोकेसी है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और मैं पेजेंट्री में इसीलिए आना चाहती थी कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी आवाज़ उठाने का और लोग आपको सीरियसली लेते हैं, आपको सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो मैं ये प्लेटफॉर्म को इस डायरेक्शन में, वुमेन एम्पावरमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस, इस चीज़ में मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि मैं इस चीज़ पर ही काम करूँ। मूवी वगैरह मैं कभी भी यूनिवर्स में ना नहीं डालती, तो मैं इस चीज़ के लिए ना कभी नहीं कहूँगी, जो आगे लिखा है वो होगा, बट माई प्रेफरेंस इज टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट।
1: शेरी सिंह कई सोशल कैंपिंग से जुड़ी हैं, जिनमें महिलाओं के सेल्फ डिपेंड बनने, उनके करियर और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इनका मानना है कि एक सशक्त महिला सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से में बदलाव लाने की प्रेरणा बनती है। असली सुंदरता सिर्फ चेहरे की ही नहीं बल्कि विचारों और कार्यों की होती है। मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह का यह ऐतिहासिक कदम अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल है कि वे विवाह और मातृत्व के साथ भी अपने सपनों को उड़ान दे सकती हैं और दुनिया को दिखा सकती हैं कि सच्ची सुंदरता दया, ताकत और अदम्य साहस में निहित होती है। क्रम आधी आबादी में अभी हम सुन रहे थे मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह की सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने साबित कर दिखाया है कि अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। और बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त है काव्य पाठ का। बहनों, कई बार हम अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं पिरो पाते, लेकिन काव्य एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की भावनाओं को बहुत सुंदर सजीव तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। काव्य में छिपी भावनाएं सीधे हमारे हृदय को छू जाती हैं। तो आइए बहनों, मिलकर आनंद लेते हैं काव्य पाठ का, और कवियत्री है पूनम शर्मा।
2: बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं, तो मैंने एक कल्पना की है बादलों को मनाने की। बदरवा, आओ रे बदरवा जरा झूम के बरसो, सबके जिया है बेचैन बरखा रानी की, नन्नी नन्नी बूंदियों को तरसे सभी के नैन। बदरवा, सबके जिया है बेचैन, जोरे बदरवा।

जोरे बदरवा मोरे खेतों में बरसो, मकई के भुट्टे खिलाऊं। जोरे बदरवा मोरे खेतों में बरसो, मकई के भुट्टे खिलाऊं। जोरे बदरवा मोरे बागों में बरसो, खट्टी मीठी अंबिया खिलाऊं। प्यास बुझा दो प्यारी कोयलिया की, प्यास बुझा दो प्यारी कोयलिया की, बोलेगी मीठे मीठे बैन बदरवा तरसे सबके नैन। जोरे बदरवा मोरे गाँव में बरसो, पुए पकोड़े खिलाऊं। जोरे बदरवा मोरे गाँव में बरसो, पूरी पकोड़े खिलाऊं। जोरे बदरवा मोरे घेरों में बरसो, छाछ और दूध।

बदरवा तरसे सब के नैन। औरे बदरवा जरा झूम के बरसो सबके जिया है बेचैन। बरखा रानी की नन्नी नन्नी बूंदियों को तरसे सब के नैन। बदरवा तरसे सब के नैन। और जब वर्षा का आगमन होता है तो पेड़ पौधे सभी मुस्कुरा उठते हैं। उनकी मुस्कान देखकर ये भाव मेरे मन में उठे हैं, देखो पेड़ मुस्काया, देखो पेड़ मुस्काया। जब कोमल सी कोपल

पंछी चहचहाए, भंवरों ने भी गीत सुनाए, थिरक थिरक लहराया, देखो पेड़ मुस्काया। जब अंबर से मेहा बरसे, जब अंबर से मेहा बरसे, तप्त धरा का जियरा हरसे, तप्त धरा का जियरा हरसे, तृप्ति पासर साया, देखो पेड़ मुस्काया। खेले जब बच्चों की टोली, मोद मनावे भर भर कौली, खेले जब बच्चों की टोली, मोद मनावे भर भर कौली, झूम झूम इतराया, देखो पेड़ मुस्काया। शीतल पवन बहे सुखदाई, शीतल पवन बहे सुखदाई, झूम झूम लतिका मुस्काई, पुलक पुलक हर्षाया, देखो पेड़ मुस्काया, देखो पेड़ मुस्काया। और जब ये पेड़ की बात हुई, मेरी कविता है बावरा मन। ये उस समय की कविता है जब शरीर थकने लगता है मगर मन में कुछ कर गुजरने की लगन बढ़ती ही जाती है, तब मैं कहती हूँ

की थकन पर है बोझिल रोके तन की थकन, विवश मन तड़प ता रहा रात दिन, विवश मन तड़प ता रहा रात दिन, पथे दुर्गम मगर नहीं रुकते कदम, पथे दुर्गम मगर नहीं रुकते कदम, बावरा मन कहे

कदम, अब तो बढ़ते ही जाएंगे आगे कदम। मगन मन मचलता रहा रात दिन, मगन मन मचलता रहा रात दिन, एक दिन छो

एक ही गगन मीत हमारे। मेरे घर में बहुत प्यारे प्यारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मगर जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ बानर आकर उन्हें छिन्न भिन्न कर देते हैं। तब मेरे मन में ये भाव उठते हैं, मेरे घर में महक रहे हैं सुंदर बेलपात, मेरे घर में महक रहे हैं सुंदर बेलपात। कुछ दिन से कुछ वानर आकर करते हैं उत्पात, कुछ दिन से कुछ वानर आकर करते हैं उत्पात, करते हैं उत्पात कूदते डाली डाली, छिन्न भिन्न करें पौधों को तोड़े फूल और कली, छिन्न भिन्न करें पौधों को तोड़े फूल और कली। कैसे समझाएं इनको तुम खेलो मौज उड़ाओ, कैसे समझाएं इनको तुम खेलो मौज उड़ाओ। पेड़ पौधों को मत तोड़ो बगिया नहीं उजाड़ो, पेड़ पौधों को मत तोड़ो बगिया नहीं उजाड़ो। पेड़ ही घर नष्ट करोगे फल कहाँ से खाओगे, पेड़ ही घर नष्ट करोगे फल कहाँ से खाओगे। प्राण वायु नहीं मिली क्या जीवित रह पाओगे, प्राण वायु नहीं मिली क्या जीवित रह पाओगे। आओ मिलकर इन्हें बचाएं यह है मीत हमारे, आओ मिलकर इन्हें बचाएं यह है मीत हमारे। हर मुश्किल से हमें बचाते देते सदा सहारे, हर मुश्किल से हमें बचाते देते सदा सहारे। आखिरी शाम इस संदर्भ में लिखा हुआ है कि जैसे कई बार हम समझ नहीं पाते हैं किसी के मन की बात, और उस वक्त कब आखिरी शाम हो जाए पता नहीं होता। चाहता पागल मन सबसे हंस बोले हम, चाहता पागल मन सबसे हंस बोले हम, जाने कब आखिरी शाम हो जाए, जाने कब आखिरी शाम हो जाए। हमसे यूं ना नजर फेरो हमदम मेरे, जाने कब आखिरी सलाम हो जाए, जाने कब आखिरी सलाम हो जाए। अब तो कांटों सी चुभती हैं बातें मेरी, अब तो कांटों सी चुभती हैं बातें मेरी, शूल से चुभते हैं तुमको मेरे वचन, शूल से चुभते हैं तुमको मेरे वचन। ऐसा ना हो किसी रोज हमदम मेरे, ऐसा ना हो किसी रोज हमदम मेरे, मेरे बोलों को ही तू तरस जाए, मेरे बोलों को ही तू तरस जाए। जाने कब आखिरी शाम हो जाए, जाने कब आखिरी शाम

0: अब तो अच्छी नहीं लगती सूरत मेरी, अब तो अच्छी नहीं लगती सूरत मेरी, फेर लेते हो मुंह जब भी पड़ती नजर, फेर लेते हो मुंह जब भी पड़ती नजर, ऐसा ना हो किसी रोज हमदम मेरे, ऐसा ना हो किसी रोज हमदम मेरे, मेरी तस्वीर से प्यार हो जाए, मेरी तस्वीर से प्यार हो जाए, जाने कब आखिरी शाम हो जाए, जाने कब आखिरी शाम हो जाए। अब तो झुंझलाते हो मेरी हर बात पर, अब तो झुंझलाते हो मेरी हर बात पर, और चले जाते हो हाथ झटकते हुए, और चले जाते हो हाथ झटकते हुए, ऐसा ना हो किसी रोज हमदम मेरे, ऐसा ना हो किसी रोज हमदम मेरे, मेरे दीदार को ही तरस जाए, मेरे दीदार को ही तरस जाए, जाने कब आखिरी शाम हो जाए, जाने कब आखिरी शाम हो जाए। मैंने चाहा तुझे मैंने पूजा तुझे, मैंने चाहा तुझे मैंने पूजा तुझे, तेरे जुल्मों से तम हंस के सह लेंगे हम, तेरे जुल्मों से तम हंस के सह लेंगे हम, ऐसा ना हो किसी रोज हमदम मेरे, ऐसा ना हो किसी रोज हमदम मेरे, मेरी नफरत को ही तू तरस जाए, मेरी नफरत को ही तू तरस जाए, जाने कब आखिरी शाम हो जाए, जाने कब आखिरी शाम हो जाए। चाहता पागल मन सबसे हंस बोले हम, चाहता पागल मन सबसे हंस बोले हम, जाने कब आखिरी शाम हो जाए, जाने कब आखिरी शाम हो जाए।
1: बहनों, अभी हम आनंद ले रहे थे इस काव्य पाठ का, और कवित्री थी पूनम शर्मा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी श्रोता बहनों को ये जरूर पसंद आया होगा। अब देखिए बहनों, काव्य और संगीत एक ऐसे माध्यम होते हैं जिनके सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, और बहनों काव्य पाठ का आनंद तो हम ले चुके हैं, और अब इस आनंद को दुगना करने के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, इसी गीत के साथ हमारा आज का महिला जगत कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको हमारा महिला जगत कार्यक्रम कैसा लगता है। बहनों, यदि आप भी हमें अपने विचारों या सुझावों से अवगत करना चाहती हैं, तो हमें पत्रों के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। और बहनों, मैसेज करने के लिए नोट करें हमारा मोबाइल नंबर। हमारा नंबर है 9457078288। और बहनों, पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो बहनों, बनी रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम महिला जगत। और इसी मंगल कामना के साथ कि हमारी सभी बहनें स्वस्थ रहें, आज का कार्यक्रम संपन्न करने की प्रियंका त्यागी को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनते हैं गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं जमुना देवी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत गढ़वाली लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं जमुना देवी।

0: दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
0: मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को

0: को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
1: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी रोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
2: जनजाति समूह का सामूहिक विकास, ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी

0: पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुणे जिले के घाट क्षेत्र लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के

फिल्म गुलाल से गायक कलाकार भी पीयूष मिश्रा ही हैं इस गीत के। छोड़ दे आज वो कल्पनाओं के प्रेम गीत, छोड़ दे आज वो कल्पनाओं के प्रेम गीत, मांगता है ये जहां जुझारूपन की सिर्फ जीत। फूंक दे तू आज वो जो नसों में खोले लहू, आरंभ है प्रचंड आज जग में डंका बज रहा।

जान ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है।

पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी

0: श्रोताओं, अभी आपने पीयूष मिश्रा को सुना फिल्म गुलाल में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत गीतकार पीयूष मिश्रा के लिखे कुछ गीत सुन रहे हैं।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, पीयूष मिश्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर में पूरी की। उसके बाद पीयूष मिश्रा दिल्ली के प्रसिद्ध नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक करने के लिए गए और वहां से आपने वर्ष 1986 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में आपने दिल्ली में हिंदी थिएटर में काम करना शुरू किया और 1990 में एक्ट वन थिएटर ग्रुप की शुरुआत।

कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं ये गीत फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से। इस गीत को लिखा है पीयूष मिश्रा ने, संगीतबद्ध भी पीयूष मिश्रा ने किया है और आवाज पीयूष मिश्रा की ही है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां।

0: श्रोताओं, अभी आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय एक ही कलाकार कार्यक्रम में गीतकार पीयूष मिश्रा के लिखे कुछ गीत सुन रहे हैं। श्रोताओं, मुंबई जाने से पहले पीयूष मिश्रा ने दिल्ली में कई वर्षों तक हिंदी थिएटर में काम किया, कई नाटकों के लिए स्क्रिप्ट लिखी और उनका निर्देशन भी किया। कार्यक्रम में अब सुनते हैं आजा नचले, इस फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान और साथियों के स्वर में। गीत पीयूष मिश्रा का है और संगीत सलीम सुलेमान का है। जो ना हूं मैं तेरे संग तो फिर काम किस काम की ये जवानी, जो ना हूं मैं तेरे संग तो फिर काम की किस ये जवानी, सुनिए मिल जा मिले में इसका नाम है जवानी।
1: पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन टगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसक मसक के क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: के खर्जन, अरे मथुरा के पेड़े, रेवड़ी मेरठ वाली चाट गरीबा की लाएगा। अरे मैं हुक्म करूँ तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाऊंगा।

आजा नचले, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज गीतकार पीयूष मिश्रा के लिखे कुछ गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म टशन का ये गीत सुनिधि चौहान और पीयूष मिश्रा के युगल स्वर में। इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है विशाल शेखर ने और गीत लिखा है पीयूष मिश्रा ने। नजरें उठी तो कयामत, नजरें उठी तो प्यार, नजरें उठी तो कयामत, नजरें उठी तो प्यार, छलिया की इन अदाओं पे दिल हार बैठा हजार, तेरी मुस्कान में है जादू, तेरी चाल में मस्ती, छलिया की तरह हर दिल पर तू ही तो राज करती। नसीला, नसीला तेरा नैना, चुराई ले हमरा चैना।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म टशन का ये गीत सुना। पीयूष मिश्रा ने फिल्म टशन में पर्दे के पीछे रहकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। इस फिल्म में कई शानदार गीत लिखे और इस फिल्म में पीयूष मिश्रा की मुख्य भूमिका गीतकार और गायक के रूप में रही। श्रोताओं, पीयूष मिश्रा ने अपनी आत्मकथा तुम्हारी औकात ही क्या है, पीयूष मिश्रा इस आत्मकथा में अपनी जिंदगी के कई संघर्षों को खुलकर जिक्र किया है। खुद को कैसे संभाला और कला की दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई, इसमें उन्होंने बखूबी लिखा है। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत वसुंधरा दास के स्वर में। इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है प्रवीण मानी ने और शब्द रचना है पीयूष मिश्रा की। इन आंखों में छुपे हैं अनगिनत फसाने तेरे, इन आंखों में छुपे हैं अनगिनत फसाने तेरे, मेरी रूह में समाए हैं साए तेरे। जब तक चलती है सांसें तुमसे ही पहचान है, मेरे इस वजूद की तो तू ही मेरी जान है।

वसुंधरा दास के गाए फिल्म मेरी जहाँ के इसी गीत के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इसमें आज आपने गीतकार पीयूष मिश्रा के लिखे कुछ गीत सुने। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारे केंद्र से आज की सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी प्रसारण सभा के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए जानकारी लाते हैं देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों के विकास के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं उनके बारे में। हमारे देश की सरकार हर वर्ग के नागरिकों के लिए, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, किसान हो, या महिलाएं हो, या छात्र छात्राएं हो, हर वर्ग के नागरिकों के लिए सरकार हमारी कोशिश करती है अलग अलग योजनाओं को क्रियान्वित करने की, जिससे कि उस वर्ग के नागरिक जो हैं लाभ उठा सकें और उनका भी विकास हो सके। श्रोताओं, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे युवाओं को रोजगार के लिए ईएलआई योजना यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। साथियों, हमारा देश भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इतनी बड़ी युवा आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जरा सोचिए, यदि युवा वर्ग को समय पर रोजगार और कौशल विकास के अवसर न मिलें, तो यह एक चुनौती भी बन सकती है। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उद्योगों को अधिक से अधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करता है। यह योजना विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी प्राप्त होंगे। रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना की घोषणा भारत सरकार ने रोजगार बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के उद्देश्य से की है। यह योजना मुख्य रूप से उन कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए बनाई गई है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लाखों नए रोजगार सृजित करना और युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं देश में नए रोजगार के अवसर बढ़ाना, युवाओं को पहली औपचारिक नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना, उद्योगों को अधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रेरित करना, ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकरण बढ़ाना और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में सहायता करना। साथियों, इस योजना की मुख्य विशेषताओं पर अगर हम नजर डालें तो उनमें है, पहली बार नौकरी करने वाली युवाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ समय तक नियोक्ता के अंशदान में सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है। योजना के माध्यम से कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होंगे। साथियों, यह योजना महिला रोजगार को भी बढ़ावा देती है। अधिक महिलाओं के औपचारिक कार्यबल में शामिल होने से आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, परिवार की आय में सुधार होगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी प्राप्त होगा। इस योजना का देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रभाव है। वो कैसे? यदि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलता है तो बेरोजगारी दर में निश्चित ही कमी आएगी।
लोगों की आय बढ़ेगी, उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा, कर संग्रह में वृद्धि होगी और सकल घरेलू उत्पाद को मजबूती मिलेगी। श्रोताओं, कहा जा सकता है कि रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना भारत के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि युवाओं को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य प्रदान करने का एक सुलभ माध्यम भी है। यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है और अधिक से अधिक युवा और उद्योग इससे जुड़ते हैं, तो यह भारत को रोजगार सृजन, कौशल विकास और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। साथियों, ये थी जानकारी युवाओं को रोजगार के लिए ELI योजना के विषय में। और अब आइए एक सुनते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के शेष प्रसारित कार्यक्रमों पर।

विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनिएगा एक वार्ता, साक्षरता मानव विकास की आधारशिला। वार्ताकार हैं नगीना सिंह।

अब से कुछ ही देर में 5:15 पर प्रसारित होगा युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज श्रोता सुनेंगे दिल से दिल तक और लव स्टोरी। रोपाई के बाद आरंभिक अवस्था में बासमती धान में शस्य क्रियाएं, इस विषय पर डॉक्टर प्रमोद सिंह तोमर से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा कृषि अवशेषों का सदुपयोग और कृषि सिंचाई योजना। सुगम संगीत में 7:32 पर अंजना माथुर की आवाज में चंद गजलें पेश की जाएंगी। और फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम में 6:55 पर। गीत संध्या कार्यक्रम होगा 8:00। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में 8:30 फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे और श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 10:30। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की।

और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कल रात 9:30 बजे। कानून की बात, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे 7:32 पर। भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की ये वार्ता प्रसारित की जाएगी विविधा कार्यक्रम में 6:45 पर। खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन, इस विषय पर डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा पशुओं में टीकाकरण का महत्व। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों को जानकारी का विषय होगा आधुनिक और परंपरागत खेती का विलय। जोड़ों का दर्द और सावधानियां, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी प्रातः 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। धरती गाती है कार्यक्रम में 9:25 पर श्रोता सुनेंगे निर्देश त्यागी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 12:05 पर शिशिर कानाधर चौधरी के स्वर में वायलिन वादन प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: लिसनर्स का स्वागत है आपके और हमारे फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, जहां आपके साथ जुड़ चुकी हूं मैं, आपकी अपनी सखी सहेली और रेडियो पार्टनर वंशिका सोती।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रोग्राम में वंशिका के साथ हाजिर हो चुकी हूं मैं, आपकी अपनी दोस्त रुमान परवीन। तो बताइए ना, मजा आ रहा है ना प्रोग्राम में और बरसात में भी?
0: क्यों नहीं रुमान, इतने दिन गर्मी को बर्दाश्त करते हुए हर दिन बारिश के लिए जो फरियाद की, वो अब जाके पूरी हो गई है ना।
1: तो वंशिका, जब आज इस बरसात ने माहौल बना ही दिया है, तो क्यों ना हम प्रोग्राम में भी बरसात कर दें?
0: करेंगे, जरूर करेंगे। सेगमेंट्स की बरसात होगी, गीतों की भी बरसात होगी।
1: अब वो तो है ही। मैं सोच रही थी अगर हमारे फ्रेंड्स भी हमें इस बरसात से जुड़ी अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करें, अपनी कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, तो कैसा रहेगा वंशिका?
0: एकदम गजब रहेगा रुमान। तो आज हमारा सेगमेंट भी तो है ना ट्यूजडे स्पेशल, दिल से दिल तक, और हम उसकी थीम रखते हैं, तो क्यों ना बरसात को थीम बना लिया जाए।
1: बहुत सही रहेगा वंशिका।
0: तो चलिए दोस्तों, फिर देर नहीं कीजिए।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं दोस्तों। तो आप बरसात से जुड़ी अपनी यादें हमें शेयर कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर।
0: जी हाँ, फिलहाल हमारे पहले सेगमेंट की बरसात करते हैं आप पर, जो है बूझो तो जाने।
1: तो आज का हमारा आपसे सवाल रहेगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितनी टीम भाग ले रही हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितनी टीम भाग ले रही हैं?
0: इसका सही आंसर आप हमको भेजेंगे हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में।
1: तो आइए गर्मा गर्म चाय का, मिट्टी की सौंधी महक का,
0: और फाइनली म्यूजिकल बरसात का लुत्फ उठाते हैं हमारे इस पहले गीत के साथ।

0: बादलों ने अपनी महफिल सजा ली है,
1: हवाओं ने सुरीली धुन छेड़ दी है।
0: ऐसे ही सुहाने मौसम की इस खूबसूरत शाम में आप

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: अरे यार, क्या बात, बड़ा खुश नजर आ रहा
3: है। हूँ भी थोड़ा सा। क्या हो गया?
4: नहीं नहीं, होना भी चाहिए, खुशी रहना चाहिए इंसान को। वैसे तो
3: इतनी बारिश में किसी को खुशी हुई हो या ना हुई हो,
4: पर क्या और किसे खुशी होगी? मुझे?
3: अरे मुझे नहीं, तुझे तो, नहीं
4: तो किसे?
3: दरवाजे और खिड़कियां फूले नहीं समा रहे।
4: हाँ, तेरी तरह।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: तो दोस्तों, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। हमारे सेगमेंट कुछ खास है आज में।
4: जी हाँ, प्रोग्राम है युवाणी, तो कुछ खास बातें करना तो बनता ही है ना दोस्तों।
3: और वंशिका, आज का जो दिन है ना, वो मीठी मुस्कान, प्यारी यादें और ढेर सारी खुशियों का है।
4: अब ये पहेली मत बुझाओ रोमान, सीधे सीधे बताओ।
3: चलो मैं बताती हूँ वंशिका। आज है 7 जुलाई, यानी वर्ल्ड चॉकलेट डे। ये दिन चॉकलेट के इतिहास में सांस्कृतिक महत्व और स्वाद का उत्सव है।
4: दोस्तों, ये दिन दुनिया भर में चॉकलेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। क्यों रोमान, क्या कहती हो?
3: कह सकते हैं। तुम वंशिका मुझे ये बताओ कि चॉकलेट पसंद तो बहुत होती है सबको, है ना?
4: एग्जैक्टली, चॉकलेट की बात सुनते ही ना उसका जो फ्लेवर है ना, एकदम

0: कैन यू इमेजिन?
1: वही तो ना, देखो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है चॉकलेट।
0: अच्छा तो फिर बताओ, अगर ज्यादा पसंद है चॉकलेट
1: मुझे पता है
0: तो
1: तुम मुझसे सवाल पूछने वाली हो।
0: ऑब्वियसली जब आपको पसंद है तो आप उसके लिए कुछ जवाब सवाल जवाब भी दे सकती है ना।
1: बिल्कुल, पूछो क्या पूछना है तुम्हें।
0: चाहे बताओ, ये चॉकलेट डे मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई भाई?
1: अरे देखो, चॉकलेट की जो शुरुआत हुई है वो 1550 में हुई थी, जब
0: अच्छा
1: पहली बार चॉकलेट यूरोप में आई थी।
0: ओके, तो यूरोप वालों ने हमें चॉकलेट दिया ये कह सकते हैं। और पहली बार, दोस्तों को मैं बता देती हूँ कि जो ये वर्ल्ड में विश्व चॉकलेट डे मनाते हैं, ये 2009 में मनाया गया था।
1: वैसे वंशिका, चॉकलेट भी एकदम गजब चीज है ना, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम की तरह, कितना भी सैड मूड हो एकदम से एंटरटेनिंग बना देती है।
0: ये तो सही कहा तुमने रुमान, युवानी तो है ही एंटरटेनमेंट का डबल डोज।
1: वैसे दोस्त से याद आया, अब हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं दिल से दिल तक की ये अगली गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे यार, क्या मस्त बारिश पड़ रही है, कुछ सुना देना।
4: सुना दे? क्या सुना दे? सुनाऊंगा तो फिर कहेगा सुनाता रहता है।
3: अरे नहीं नहीं यार, तू आज सुना मुझे।
4: तो ले चल, बरसात के दिन है, अपनी महबूबा को याद कर लेते हैं।
3: चल चल जल्दी सुना।
4: तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद।
3: क्योंकि?
4: क्योंकि वहाँ कीचड़ हो गया बरसात के बाद।
3: है?
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: जी हाँ, तो आ गया है ना मजा।
3: अरे हाँ वंशिका, मजा तो आया ही होगा। से वंशिका, बरसात को लेके तुम्हारा क्या ख्याल है?
4: बरसात? बरसात को लेके तो बस यही ख्याल है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़ा।
3: और कुछ ख्याल नहीं है तुम्हारा? और क्या ख्याल? सबसे रोमांटिक मौसम होता है बरसात का।
4: ओह माय गॉड, हाँ वो तो है ही। खैर, जो रोमांटिक कपल्स हैं उनके लिए तो बरसात हो जाए यानी कि बस प्यार की बरसात हो गई।
3: मतलब तुम्हारे लिए नहीं है? अरे जो कपल नहीं होते उनके लिए भी बारिश, चाय और युवाणी प्रोग्राम
4: खास होता है।
3: बिल्कुल, ये भी तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही है ना, कि शाम के 5 बजने का इंतजार करना और चाय के मग के साथ में युवाणी प्रोग्राम सुनना।
4: बिल्कुल, और इस रोमांटिक माहौल को बनाए रखते हैं।
3: हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई हूँ दोस्तों। हाँ। वंशिका कहना चाह रही है जैसे कि आज का ये रोमांटिक सब मौसम है, चाय है, युवाणी प्रोग्राम है,
4: तो एक आपके लिए लव स्टोरी हो जाए।
3: बिल्कुल, पूरा माहौल बनाते हैं। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आज की लव स्टोरी,
4: जो जिसका टाइटल है तुमसे ही, और प्रेजेंट करिए हमारी साथी अक्षी त्यागी ने। तो आइए सुनते हैं इसका पार्ट 2।
5: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
6: हेलो दोस्तों, मैं अक्षी त्यागी आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी डायरी से एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी तुमसे ही, जिसके पहले एपिसोड में आपने सुना बारिश में हुई पहली मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती धीरे धीरे प्यार बन गई। लेकिन तभी तरुण के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे एपिसोड नंबर 2, दूरियों की ओर, और जानते हैं आगे क्या हुआ। तरुण घर पहुंचता है, पूरे घर में सजावट का माहौल है और माँ उसे देखते ही कहती है, आ गया मेरा बेटा, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
7: हाँ माँ, पापा ने फोन पर बताया।
6: लेकिन इतनी जल्दी?
7: तभी उसके पापा आते हैं। शर्मा जी की बेटी नंदनी, बहुत अच्छा परिवार है और हमने तुम्हारा रिश्ता वहां पक्का कर दिया है।
6: ये सुनकर तरुण के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहता है, लेकिन पापा मेरी भी कोई इच्छा हो सकती है। तभी पापा सख्त आवाज में उसे बोलते हैं,
7: हमारे घर में फैसले बड़े लेते हैं, बच्चे नहीं।
6: तरुण कुछ कहना चाहता है लेकिन माँ की नम आंखें देखकर वो चुप हो जाता है।
7: अगले दिन कॉलेज में अनामिका खुशी खुशी तरुण का इंतजार कर रही होती है और वो तरुण को आते हुए देखती है और वो कहती है,
8: अरे तरुण, तुम्हें क्या हुआ? आज बड़े चुप चुप हो।
7: तरुण जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ बोलता है,
9: बस कुछ नहीं, थोड़ी थकान है अनामिका।
7: वैसे झूठ बोलते वक्त तुम्हारी आंखें अक्सर नीचे क्यों हो जाती हैं? तरुण कुछ पल चुप रह जाता है और फिर धीरे से अनामिका की बात का जवाब देता है, अनामिका मुझे तुमसे कुछ कहना है।
8: हाँ तो बोलो, मैं सुन तो रही हूँ।
9: दरअसल घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है।
7: What? जैसे ही ये शब्द अनामिका के कानों में पड़ते हैं, उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। कुछ देर दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ खामोशी रहती है और उस खामोशी को तोड़ते हुए अनामिका कहती है, और तुमने तुमने कुछ नहीं कहा ना?
9: नहीं, अभी कुछ नहीं कहा।
8: यानी हमारे बारे में भी कुछ नहीं कहा तुमने?
7: तरुण कुछ नहीं बोल पाता और अनामिका को बस रोते हुए देखता रहता है।
8: तरुण प्लीज कुछ बोलो,
7: तुम्हारी चुप्पी मेरा दिल तोड़ रही है, तरुण प्लीज। और तरुण अनामिका को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और तरुण की यही चुप्पी अनामिका का दिल तार तार कर देती है। दोनों के बीच पहले जैसी बातें बिल्कुल भी नहीं होती। दोनों कॉलेज में मिलते हैं लेकिन नजरें चुराकर निकल जाते हैं। उन दोनों की इस हरकत को देखकर रोहन सब समझ जाता है और वो खुद से कहता है,
9: प्यार में सबसे खतरनाक चीज ना धोखा नहीं होती, खामोशी होती है। और इन दोनों की खामोशी एक दूसरे को तोड़ रही है। अब इन दोनों के बीच

0: दिन तरुण हिम्मत करके अपने पिता से कहता है,
1: पापा मैं किसी और से प्यार करता हूं, मैं नंदिनी से शादी नहीं कर सकता।
0: तरुण की इस बात को सुनने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है।
1: अगर उस लड़की से शादी की तूने तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, समझे?
0: बाप बेटे की बात सुनकर माँ रोने लगती है और तरुण से कहती है, बेटा तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं, उनकी बात समझने की कोशिश करना। तरुण पहली बार खुद को दो रास्तों के बीच खड़ा पाता है, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार। अनामिका और अनामिका की सहेली रिया आपस में बात कर रहे हैं और रिया अनामिका से कहती है, अनामिका अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है ना तो वो तुम्हारे लिए जरूर जरूर लड़ेगा अपने परिवार से। और रिया अगर उसके लड़ने से उसका परिवार टूट जाए तो? अनामिका की ये बात सुनकर रिया चुप हो जाती है। पहली बार अपने प्यार से ज्यादा तरुण के परिवार के बारे में अनामिका सोचती है।

0: आखिर वो दिन आता है जब उन दोनों की वो आखिरी मुलाकात होती है। कॉलेज की वही छत जहां दोनों ने पहली बार अपने दिल की बातें की थी। अनामिका, मैं सब छोड़ दूंगा, बस तुम साथ रहना। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, नहीं तरुण, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने माँ पापा को खो दो। प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना।
1: और तुम्हें खो दूं, ये कैसे सहूं यार, मैं नहीं रह सकता अनामिका तुम्हारे बिना।
0: तरुण, कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, किसी की खुशी के लिए खुद को खो देना भी होता है। अनामिका की ये बात सुनकर तरुण उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है,
1: ठीक है, वादा करो तुम मुझसे, तो मुझे कभी नहीं भूलोगी।
0: भूलना होता तरुण तो प्यार ही क्यों करती मैं तुमसे। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उनके प्यार का ये सबसे दर्दनाक पल होता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब तरुण कॉलेज में अनामिका का इंतजार कर रहा होता है और अगले दिन अनामिका कॉलेज नहीं आती। फिर एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, तरुण बेचैन हो जाता है। वो उसका घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचता है। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला खोलती है।
1: नमस्ते दादी जी, ये अनामिका घर पर है?
0: महिला की आंखें भर आती हैं।
2: बेटा, वो यहां नहीं रहती।
1: आप ये क्या कह रही हैं? कहां गई वो?
2: एक लिफाफा तरुण, तुम्हारे लिए वो छोड़ करके गई है और कह गई थी कि जब तुम आओ तो मैं तुम्हें दे दूं। लो, ये तुम्हारा लिफाफा है।
0: तरुण दादी के हाथ से लिफाफा लेता है और कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है, तरुण, अगर किस्मत ने चाहा तो अगली मुलाकात में मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी याद बनकर मिलूंगी। ये पढ़कर तरुण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे नहीं पता अनामिका कहाँ गई, क्यों गई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में उसे छोड़कर चली गई या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जो अभी सामने आना बाकी है। अनामिका आखिर गई कहाँ? क्या उसने सचमुच तरुण को छोड़ दिया या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे जानकर सब बदल जाएगा? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आप कल शाम 5:15 बजे मेरी डायरी तुमसे ही में सुनने जरूर आइएगा।

0: क्या खूबसूरत माहौल बनाना वंशिका आज।
1: बिल्कुल, वाकई में बरसात का तो है ही ऐसा ही माहौल बनाने का काम।
0: बिल्कुल। वैसे वंशिका, मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे मैसेज रिसीव हो चुका है हमारे दोस्तों का।
1: अच्छा, फाइनली जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई है।
0: बिल्कुल, तो क्यों ना शामिल किया जाए उसे।
1: जरूर।
0: बिल्कुल, ये जो मैसेज में भेजा है ये आया है अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत, कनिष्का चौहान, भव्य चौहान की तरफ से। ये कहते हैं, नमस्कार, आज हमारे यहाँ 11 बजे से 1 बजे तक बारिश हुई है। और तुम्हें पता है वंशिका, इन्होंने बारिश में जैसे स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती है ना, उसका बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है कि
1: अच्छा,
0: बच्चे बारिश में खेलते हुए जा रहे थे और ये भी बच्चों के साथ में इंजॉय किया इन्होंने।
1: देखो होता ही है ना, जब बच्चे और टीचर्स मतलब एक पेरेंट्स की तरह ही केयर करते हैं, क्योंकि टीचर्स
0: बिल्कुल
1: तो ऑब्वियसली बात है वो उनके साथ एंजॉय भी करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं, तो होता ही है भाई, टीचर्स और
0: ये
1: उनका तो
0: बताते
1: अच्छा से
0: हैं कि
1: मस्ती
0: कुछ
1: करी हुई।
0: बच्चे तो इन्हीं के साथ छुट्टी में आए हैं जिन्होंने बारिश में पूरा एंजॉय किया और इन्होंने बच्चों को देख देख कर अपना बचपन याद किया।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और एक मैसेज, एक नहीं दो मैसेजेस मेरे पास भी हैं।
0: बिल्कुल, तो
1: ये
0: शामिल करो उन्हें जल्दी से प्रोग्राम में।
1: बिल्कुल करते हैं। सबसे पहला मैसेज है मेरे पास मिसबा शमसी का फ्रॉम नगीना। ये लिखती हैं, गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? तो हम बिल्कुल अच्छे हैं।
0: हम बहुत
1: उन्होंने
0: अच्छे हैं मरियम।
1: वो कह रहे हैं कि बरसात का ये जो टॉपिक लिया आज हमने, बहुत अच्छा लग रहा है। और बता रही है कि यहाँ भी सुबह से मौसम बहुत सुहाना है, ऐसे में गर्म चाय पकौड़े के साथ हम आपका प्रोग्राम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है,
0: बहुत अच्छी, जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था वंशिका कि
1: वैसे ही इन्होंने
0: हमारे दोस्त
1: बताया
0: चाय के साथ में
1: है।
0: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत
1: सही
0: अच्छा लगा
1: बात।
0: हमें सुनकर।
1: और अब नेक्स्ट मैसेज गेस कर सकते हो किसका है?
0: अनिल विनोचा जी,
1: हाँ, एग्जैक्टली, हमारे डेली
0: अरे
1: लिसनर।
0: वाह,
1: और रुमान, इन्होंने भी ना कुछ ऐसे ही अपनी बचपन की यादों को ताजा करते हुए कुछ यही बताया कि जब बारिश बहुत मन्नतें मांगने और दुआ करने पर बरसे तो सच में खुशी से झूम उठते थे, और आज भी ये झूम उठते हैं। और ये जब बचपन में जैसे नहाते थे पानी में उसकी तरह उसको बता रहे हैं, और नाव का खेल खेलते थे, ये आगे पीछे रेस मजा आ जाता था, सबके मन परेशान हो जाते थे अगर बारिश रुक जाती थी, और जब बारिश होती थी तो प्रसन्न हो जाते थे। सच, गर्मी से निजात मिल जाती है, और ठंडी ठंडी हवा जब लगती है तो मन की खुशी व्यक्त नहीं की जा सकती। बारिश सच सबके लिए जीवन ही होती है।
0: बहुत अच्छी
1: बिल्कुल,
0: बात कही है इन्होंने, सच में दिन बना दिया। क्यों वंशिका,
1: जब हमारे लिसनर्स के मैसेजेस हमारे पास तक आ जाते हैं ना, तो हमें लगता है हमारा प्रोग्राम सफल हो गया है।
0: बिल्कुल, वैसे आज का तो दिन बहुत खूबसूरत है। एक तो वर्ल्ड चॉकलेट डे, तुम्हारा कौन से चॉकलेट खाने का मन कर रहा है
1: मेरा
0: वैसे?
1: तो डार्क चॉकलेट।
0: डार्क चॉकलेट, ओके, मतलब हॉट चॉकलेट चलेगी तुम्हें।
1: बिल्कुल चलेगी, क्योंकि देखो मौसम है तो कोल्ड कॉफी या कुछ नहीं प्रेफर कर सकते ना। हॉट
0: वैसे
1: आई
0: मैं
1: विल
0: तो
1: प्रेफर।
0: मिल्की बार खाना पसंद करूंगी।
1: ओ माय गॉड, तो ये मिल्की बार को अभी थोड़ा सा साइड पे
0: बिल्कुल,
1: रखते
0: मैं समझ रही
1: हैं।
0: हूँ दोस्तों। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने पूछा था आपसे एक सवाल, हमारा आपसे सवाल था फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितनी टीम ने भाग लिया है, और इसका सही जवाब है 48।
1: और सही जवाब भेजने वालों के नाम हम अब शामिल करने वाले हैं, जिन्होंने फेसबुक पर हमें सही कमेंट्स किए हैं। उनका नाम है नानक खन्ना, जॉन डिकेस्ट्रो, राहुल पाल, सुदर्शन शाह, ताज अंसारी, आकाश रस्तोगी, भगवत चौबे, दिनेश वर्मा, मोहम्मद जाहिद अली, अनिल विनोचा, विठल सुरोशे, राम कुमार रेवार, मोहम्मद रफीक पवार, जगदीश धाकड़, मसरूर हसन, सोहन जोशी, जाकिर मंसूरी, बलवंत कुमार वर्मा, गुरमीत सिंह मीता, राधेश्याम पांडे, धर्मेंद्र चीपा, शकील अहमद इदरीसी, आफताब अंसारी, गजानन येले, निसार सलमानी, मोहम्मद यासीन और सुरेश गगनेजा। तो अब रुमान, क्या कहती हो? हमारे लिसनर्स ने मैसेजेस भी भेज दिए और हमें कमेंट्स भी भेज दिए, तो उनको
0: तो वंशिका, हम अपने लिसनर्स को सुनवाते हैं दिल से दिल तक का ये आखिरी गीत।
1: जी।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं हमें जरूर बताइएगा अपने खत के जरिए। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, साथ ही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। तो आप हमारे पुराने प्लेज और कहानियाँ सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर। और आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। इसी के साथ दीजिए अनुमति रुमान परवीन
0: और मुझे वंशिका सोते को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रही थी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अदिपुणा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं और अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। और प्रमोद भैया क्या हो रहा है भाई? आज बारिश तो बहुत अच्छी हुई।
1: हाँ भैया बारिश हो गई और यूं समझो कि भैया अब तो मनसा लगने लगा खेतों में जाके भी।
0: भाई देखो, गांव में एक कहावत है
1: हाँ हाँ हाँ
0: कि भैया माघ के परसे का और अंबर के भरसे का,
1: हाँ
0: इसका कोई तोड़ ही नहीं
1: ना
0: है।
1: जी ना।
0: तो भाई अब लोग क्या था कि फसल भैया पत्ती ऐंठ रही थी और पड़ाव वैसा सा हो रहा था, और जैसी ये बारिश पड़ी ना तो भाई पत्तियां भी ऐसा लग रहा मान लो खिल रही हो, नाच रही हो, है ना।
1: वही तो बात है भैया। देखो ये जो प्रकृति का जो नजारा होता है ना
0: हाँ
1: भैया, वो बात कुछ और ही हो गया उसमें।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए भैया आज हो गई बरसात शुरू, तो किसान भाइयों को राहत भी मिल गई और भैया सब अच्छा ही अच्छा होगा अब तो।
0: बिल्कुल भाई देखो, अब तो जिन हमारे किसान भाइयों की धान की पौध 21 से 25 दिन के बीच की हो गई,
1: जी
0: तो भैया उन्हें यह चाहिए है कि वो अब रोपाई कर दें,
1: हाँ
0: क्योंकि देखो बारिश भी हो गई,
1: हाँ
0: पौध भी तैयार हो गई, और भैया ढैंचा और सनई या लोबिया जो वो रखा था हरी खाद के लिए वो भी उन्होंने जोत दिया होगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कुल मिला के जितनी भी तैयारी है वो पूरी हो गई।
1: बिल्कुल, अब तैयारी पूरी हो गई तो भैया धान की रोपाई के काम को भी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि समय से करा गया काम बहुत ही बढ़िया रह करा है।
0: बिल्कुल देखो, काम समय से ही होना चाहिए, जो काम समय से हो जाता है ना उसका परिणाम भी अच्छा आता है
1: जी
0: और उससे लाभ भी अधिक होता है। और भाई देखो, खेती के बारे में तो यूँ कहा जा रहा है कि भाई अगेती ठीक रहे,
1: बिल्कुल ठीक बात है।
0: तो हम अपने किसान भाइयों को एक बार फिर से ये सलाह देंगे कि भैया आपके अगर खेत तैयार हैं, आपकी अगर पौध तैयार है और बारिश हो ही गई है, तो धान की रोपाई करके रहो।
1: बिल्कुल ठीक बात है भैया। देखो टाइम से काम हो जाएगा तो यूं समझो कि टाइम से फसल अच्छी तैयार होगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। और भैया देखो टाइम की बात तो कर ही रहे हैं, आज तो मैं पता दिन क्या।
0: भाई देखो, आज है तो मंगलवार, और मंगलवार को एक विशेष बात ये होती है कि आज हम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन भैया जब बात बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला की आई है,
1: हाँ
0: तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई बासमती धान लगाना चाह रहे हैं, तो भैया उन्होंने कुछ ने तो लगा भी दिया।
1: जी जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। रोपाई का काम तो किसान भाई शुरू कर ही रहे हैं।
0: बिल्कुल। तो भैया जिन्होंने रोपाई कर दी,
1: जी
0: तो रोपाई के बाद की जो कुछ आरंभिक अवस्था में सस्य क्रियाएं होती हैं वो करनी जरूरी रहे हैं, तो
1: हाँ
0: भैया क्यों ना इस बारे में कुछ जानकारी हो जाए।
1: बिल्कुल। और भैया देखो आज का जो हमारा पाठ है ना वो इसी विषय से संबंधित है कि रोपाई के बाद आरंभिक अवस्था में होने वाली सस्य क्रियाएं।
0: तो भैया बात यो है, इस
1: हाँ
0: बारे में भी जानकारी लेते हैं और बासमती के बारे में और विस्तार से जानते हैं, और सुनते हैं बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का पाठ 8।
1: ठीक है भैया।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: अरे मास्टर जी।
0: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
0: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
3: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
4: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
5: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
6: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
2: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
0: और मैं हूं आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम।
2: तो भाई गंगाराम।
0: हाँ भैया झुमरू।
2: भाई देखो बासमती धान की रेडियो कृषि पाठशाला शुरू हो गई है।
0: बिल्कुल।
2: और भैया इस टाइम जो हो बासमती धान की रोपाई जोर शोर से चल रही है भैया।
0: बिल्कुल, देखो भाई इस पाठशाला के जरिए हमारी जो कोशिश है ये है कि भाई किसान भाइयों को बीज जैसा उन्होंने लिया है,
2: हाँ,
0: और अब पौधशाला में पौध डाल ली है,
2: और
0: अब रोपाई करेंगे और आगे को भी जो जो क्रियाएं करेंगे उसकी सटीक जानकारी देना और वैज्ञानिकों से सीधा उनका संवाद करना, जो हमारा जो उद्देश्य है भैया।
2: बिल्कुल। और देखो भैया हमारे किसान भाई जो हो भैया रसायन मुक्त और उच्च गुणवत्ता का बासमती धान पैदा कर सका।
0: बिल्कुल
2: भैया, हमारी पाठशाला का ये भी उद्देश्य है।
0: बिल्कुल भाई, देखो बार बार हम एक बात कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भाई भारत का थोड़ा सा हिस्सा और पाकिस्तान का जरा सा हिस्सा,
2: बिल्कुल
0: केवल ये ही पैदा करने वाले हैं और पूरा संसार खाने वाला, तो भाई इसका लाभ उठाना चाहिए। और भाई विदेशी धान हम जब ले सकते हैं जब हम रसायन मुक्त बासमती पैदा करें।
2: बिल्कुल, और देखो भैया अगर हम कृषि निर्यात की बात करते हैं भैया,
0: हाँ,
2: तो कृषि निर्यात में बासमती चावल का सबसे ज्यादा योगदान है।
0: बिल्कुल भाई, देखो पिछले साल नंबर एक आया था और हम उम्मीद यो है कि अब नंबर एक ही रहेगा।
2: बिल्कुल, तो मैं देखो हमारे किसान भाई बासमती धान की रोपाई में लगे हुए हैं।
0: बिल्कुल,
2: और भाई किस तरीके से हम इसकी रोपाई करनी है, कैसे भैया नर्सरी से पौध उखाड़नी है, कैसे भैया उसकी जो शोधन करना है, और किस तरीके से भैया रोपाई के बाद हम अपनी बासमती धान की देखरेख करनी है, कौन कौन सी सस्ते गिर रहे हैं, तो भाई आज का पाठ इसी पर आधारित है भैया।
0: बिल्कुल सही बात है, देखो भाई रोपाई जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है।
2: हाँ,
0: तो वो लाइन से लाइन में करनी चाहिए और बीच में गैप छोड़ना चाहिए, किस तरह से पौध उखाड़नी चाहिए, और पौध उखाड़ने से पहले पानी हमें भरना चाहिए पौधशाला में, उसके बाद पौध का शोधन करना चाहिए, बहुत सारे बिंदु हैं, तो इसकी जो है बिंदुवार अगर जानकारी मिल जा तो हमारे किसान भाइयों के बल्ले बल्ले हो जाएगी भैया।
2: तो मैं देखो रोपाई के बाद,
0: हाँ,
2: बासमती धान में आरंभिक अवस्था में कौन कौन सी सस्य क्रियाएं हमें करनी है भाई, इस बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जो कि वैज्ञानिक है बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में, भैया हमारे कार्यक्रम में आ गए हैं।
0: भाई देखो आपके बराबर में बैठे हैं और भैया आपको बातचीत का कौन सा अनुभव भी है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करो।
2: तो भाई जब ऐसी बात है तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बासमती धान की रोपाई काम चल रहा है और रोपाई के बाद जो हमारी बासमती धान की देखभाल करने का कार्य होता है तो वो हमें करना है, और जो शुरुआती स्टेज होती है उसमें हमें कौन कौन सी कर्षण क्रिया करनी है, कौन सी सस्य क्रिया करनी है, किस तरीके से देखभाल करनी है, तो हमारे आज का पाठ का विषय यही है। और शुरुआती जो स्टेज होती है यानी कि आरंभिक में जो हमारी फसल है आरंभ में, उसमें हमें कौन कौन सी क्रिया करनी है, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आए हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जो कि वैज्ञानिक अधिकारी हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद शुभेंद्र जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
2: तो देखिए डॉक्टर साहब, जैसे कि धान की रोपाई काम शुरू हो गया है और हमारे किसान भाई जो है बासमती धान को लगा रहे हैं, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि जैसे कि रोपाई काम चल रहा है तो डॉक्टर साहब किस तरीके से हमें खेत को तैयार करना है और कैसे हमें जो हमारे पौधा जो नर्सरी है वो उखाड़नी है। डॉक्टर साहब
7: देखिए किसान भाइयों, इस समय रोपाई चरम सीमा पर चल रही है
2: जी,
7: मौसम अभी वैसे साथ नहीं दे रहा है क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई है, तो अपनी नर्सरी में पानी बनाए रखें और उखाड़ने से पहले
2: जी,
7: सपोज करो आपको कल चार क्यारी को उखाड़ना है तो पहले दिन उन सब क्यारियों में पानी लगा दें। कई बार लाइट नहीं आती, इंजन नहीं चलता और कई बार लेबर आपने सुबह बुलाई और पौध उखाड़ने को लगा दिया तो पौध लेबर ऊपर को खींचती हैं और जमीन नीचे को, तो उसमें बहुत सारी पौध टूट जाती है
2: जी,
7: जो पहला पेस्टिसाइड लगने का कारण बनती है। तो इसलिए अपने खेत में पहले क्यारियों में पानी लगाए तब पौध को उखड़वाएं और पौध को उपचारित जरूर करें।
2: अच्छा,
7: हाँ, जो लोग जैविक विधि से करना चाहते हैं वो ट्राइकोडर्मा के द्वारा उपचारित करें, 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं और 5 ग्राम सुडोमोनास प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं।
2: बिल्कुल,
7: जो रासायनिक विधि से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वे 2 ग्राम कार्बनडाइजिन प्रति लीटर पानी के हिसाब से सोल्यूशन बनाए और अपनी उखड़ी हुई पौध की गुच्छियों को उसमें गंगा स्नान कराते हुए खड़ा करके रख दे ताकि जड़ों का उपचार भी हो जाए और पत्तियों के ऊपर जो स्पोर्स वगैरह हो बीमारियों के वो धुल जाए।
2: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि स्नान हम उसको पानी में डुबो दें, तो क्या कोई गड्ढा में तैयार करना है इस तरीके का जिसमें हमें घोल बनाना है?
7: हाँ, बहुत, जैसे ही हम पौध उखाड़ते हैं तो हमारे पीछे वो जगह खाली हो जाती है
2: जी,
7: उसमें अपना फावड़ा सब किसानों के पास होता है, दो दो कदम चल के एक छोटा सा तालाब बना दे, उस तालाब में पानी सा भरे, अच्छा और करना चाहते तो उसमें एक पोलोथीन डाल दे तब पानी भरे, तो पानी आपका वेस्टेज भी नहीं जाएगा
2: जी,
7: जो सॉल्यूशन बनाएगा वो उतना बना रहेगा।
2: हुँ।
7: उसमें फिर पौध को खड़ी करते रहें।
2: अच्छा,
7: एक लेबर की ड्यूटी लगा दे कि जितनी पौध की गुच्छियां उसमें गई है उन सबको अच्छे से पानी में डुबो के तब खड़ा करें
2: जी,
7: एक ये तरीका हो गया। दूसरा, जब उस गुच्छियों को वहां से उठाकर ले जाएं तो अरपोद आपकी थोड़ी बड़ी हो तो उसके ऊपर का लगभग 1 से 1.5 इंच पार्ट को तोड़ के डिस्ट्रॉय कर दे,
2: अच्छा।
7: खत्म कर दे, नष्ट कर दे, ताकि उसमें जो तना छेदक ने, पत्ती लपेटक ने अपने अंडे पत्तियों पर दे दिए हैं वो आपके रोपित खेत में ना जाए।
2: अच्छा,
7: तो इससे जो पहला पेस्टिसाइड आप किसान भाई लगाते हैं, क्योंकि कीड़े के अंडे जाएंगे तो वो 5-7 दिन में निकल के उससे सुंडिया डैमेज करना शुरू कर देंगी और आपको नुकसान दिखेगा, तो आप दवाई का इस्तेमाल करेंगे।
2: बिल्कुल,
7: ऐसा करने से आप पहला पेस्टिसाइड बचा सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब इस तरीके से हमें जब हम पौध को उखाड़ते हैं, अपनी नर्सरी उखाड़ते हैं, तो रोपाई से पहले हमें उसको शोधित करना है और एक हमें गड्ढा सा बना लेना है और उसमें घोल तैयार करके हम अपने जो हमारी पौध है उसमें उसको डुबो दें, तो इस तरीके से हमें धान की रोपाई करनी है। अब देखिए डॉक्टर साहब, बात यह आती है कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि हम अच्छा उत्पादन लें। तो डॉक्टर साहब, कितनी हमें लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और कितनी हमें पौधे से पौधे की दूरी रखनी है रोपाई में?
7: किसान भाइयों, बासमती उत्पादन के लिए पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो अच्छा रहेगा
2: जी।
7: वो हर पौधे को लाइट मिलेगी, हवा मिलेगी, बीमारी और कीड़ा कम अटैक। और यदि लाइन से लाइन दूरी रखने के बाद 10 लाइन के बाद में आप एक लाइन को छोड़ देते हो लगाए बगैर, या किसी वजह से आपकी लेबर लाइनों में नहीं लगाती, तो 3 मीटर पे एक आधा मीटर का गैप आप दे देते हैं तो वो गलियारा सा बन जाएगा
2: जी।
7: जो आपके बहुत काम आता है। शुरुआत में आपका घास निकालने के काम आएगा, हाथ डालने के काम आएगा, दवाई का स्प्रे करने के काम आएगा, और बाद में जो इंसेक्ट मैनेजमेंट में काम आता है तो उस गलियारे में सबसे ज्यादा मकड़ियों के जाले बनेंगे, जो इंसेक्ट एक गलियारे से दूसरे गलियारे में जाने को होंगे तो वो सब वहाँ डैमेज हो जाएंगे, तो आपका ये नेचुरल मैनेजमेंट भी इंसेक्ट का गलियारा बनाने से हो जाएगा।
2: बिल्कुल, और देखिए डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानना चाह रहे हैं कि जो हम पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी एक समान रखते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे रोपाई वाले होते हैं वो अनुमान से पौधे की दूरी रखते हैं, लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि दूरी कम हो जाती है, कई बार देखते हैं कि दूरी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी क्या विधि है, किस तरीके से हमारे किसान भाई रोपाई हो सकती है कि एक समान दूरी रहे? डॉक्टर साहब,
7: एक समान दूरी के लिए रस्सी ले ले, रस्सी पर चाहे तो आप डिमार्केशन कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं 20 सेंटीमीटर पर।
2: अच्छा,
7: रस्सी सीधी खींच दे, और कई बार क्या होता है कि वो रस्सी पानी में डूब गई और लेबर को नहीं दिख रही है, वो रोपाई कर रही है, तो उनकी सबकी बिलहेंद होती है अंगूठे के किनारे से लेके और कन्नू उंगली के किनारे तक जो दूरी है वो लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास बैठेगी।
2: अच्छा,
7: तो जहां डाउट लगता है तो लेबर को कह सकते हैं कि आप अपनी उंगली बिलहेंद से भी नाप के डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो रस्सी के माध्यम से हम उसमें गांठ बांध देते हैं और इस तरीके से हम एक समान दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी हम रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन हम बासमती में ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब देखिए, अब बात यह आती है कि जब हम रोपाई करते हैं तो उस समय तो खेत में पानी होता ही है, लेकिन बाद में भी हमें अपनी फसल में पानी रखना होता है, तो जल प्रबंधन डॉक्टर साहब हमें किस तरीके से करना है? क्या खेत में हर समय पानी रहना आवश्यक है? डॉक्टर साहब,
7: किसान भाइयों, रोपाई के बाद में पहले 30 दिन पानी बनाए रखना होता है।
2: अच्छा।
7: और पानी भरकर नहीं रखना होता है। आपने रोपाई की है, रोपाई करने के बाद में एक पानी का लेवल इतना रखे कि जब आप उस खरपतवार नाशी उसमें लगा रहे हो
2: जी।
7: तो वो पानी अगले 24 घंटे में खेत में बना रहे, मतलब बिल्कुल खत्म ना हो जाए, तली तक तो चला जाए कोई बात नहीं, बिल्कुल खत्म ना होने पे, तो उससे जो आपने वीडीसाइड अप्लाई किया है वो पूरा इफेक्टिव होगा और आपके खेत में घास नहीं होगी।
2: अच्छा,
7: उसके बाद आप उसमें पानी का लेवल बढ़ा सकते हैं और उस लेवल को अप डाउन कर सकते हैं
2: जी।
7: कि आपने सपोज करो 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पानी दिया, फिर डाउन कर दिया, 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर आपने पानी दिया, फिर डाउन कर दिया, तो उससे आपके पानी भी कम लगेगा और फसल भी अच्छी चलेगी।
2: बिल्कुल, तो इस तरीके से हमें जल प्रबंधन करना है और खेत में पानी बनाकर रखना है। और देख डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कई बार जो हमारे कल्ले फूटते हैं वो अच्छे नहीं फूटते हैं, तो कल्ले अच्छे फूटे इसके लिए हमारे भाई क्या काम कर सकते?
7: किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपके रोपे हुए धान में बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी टोनिक के कल्ले अच्छे निकले, तो ये BDF द्वारा एक प्रैक्टिस आप लोगों को बताई जा रही है पिछले 7-8 सालों से कि आप पाटा प्रैक्टिस अपने खेतों में करें
2: जी।
7: पाटा प्रैक्टिस करने में क्या होता है कि रोपाई करने के लगभग 15 दिन बाद से और 25 दिन के बीच में अपने खेत में 7 से 10 सेंटीमीटर पानी भरें और एक यूकेलिप्टिस का सूखा डंडा
2: जी
7: लगभग 2 मीटर लंबाई का, जिसका वजन 12 से 15 किलोग्राम के करीब हो, उसमें रस्सा बांधे और जैसे पाटा चलाते हैं खेत में ऐसे उसको चलाओगे तो हर पेड़ के ऊपर से वो डंडा गुजरेगा और एक पेड़ को झटका लगेगा तो उसमें एक तो पत्ती लपेटक वगैरह इंसेक्ट वगैरह जो आए हैं वो उसमें से गिर जाएंगे
2: जी।
7: और वो खत्म हो जाए। दूसरा क्या होगा, मिट्टी का एक घोल पानी में बनेगा जो एक खाद जैसा काम करेगा।
2: अच्छा,
7: तीसरा क्या है, जो खरपतवार आपके खेत में रोपाई करने के बाद में फिर से जमना शुरू हुए थे, छोटी स्टेज में थे, मिट्टी में डंडा घूमने से वो मिट्टी में चिपक जाएंगे, गल जाएंगे और वो फिर से खाद बन के पौधों को मिल जाए। पौधे के ऊपर एक स्ट्रोक थेरेपी

0: और चाहे हम उसकी पडलिंग ट्रैक्टर के माध्यम से करें या हल बैल से करें। अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई क्या काम करते हैं कि जैसे ही हल बैल या ट्रैक्टर खेत से बाहर निकलते हैं तो रोपाई वाले जो हमारी लेबर होती है वो तुरंत खेत में घुस जाती है, और हम देखते हैं कि ऐसे में मिट्टी हमारी सेट नहीं होती है। तो खेत तैयार करने के कितने समय बाद उसमें रोपाई होनी चाहिए डॉक्टर?
1: ये निर्भर करता है मिट्टी की टेक्सचर पे, क्योंकि चिकनी मिट्टी में आप रोपाई कर सकते हो 1-2 दिन बाद भी,
0: जी
1: क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे धीरे सेट होती है। पडलिंग के तुरंत बाद में यदि लेबर पौधा लगाती है तो पानी उसको ऊपर फेंक देता है
0: जी
1: और लेबर उसको और गहरा लगा देती है, तो गहरी रोपाई होने की वजह से कल्ले देर से निकलते हैं। कितने किसानों की तो शिकायत आती है कि उनकी पौध जो रोपी थी उसमें 2-3 गाँठें जमीन में अंदर बन गई और कल्ला कोई नहीं निकला। गहरी रोपाई होने का ये मेन कारण होता है, इसलिए मिट्टी थोड़ा सेट हो जाने दे तब आप उसकी रोपाई करें। रेतली मिट्टी में 2-3 घंटे बाद में आप कर सकते हो, क्योंकि वो जल्दी सेट होना शुरू हो जाती है।
0: जी
1: दोमट में 5-6 घंटे के बाद में आप कर सकते हो, और चिकनी मिट्टी में आप 1 दिन बाद भी शुरू कर सकते हो।
0: बिल्कुल। तो इस तरीके से देखिए हमें अपने खेत में रोपाई करनी है। और देखिए डॉक्टर साहब, बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो देखिए डॉक्टर साहब, जब हम खेत को तैयार करते हैं तो उस समय हमें कितनी खाद और उर्वरक डालनी है, साथ ही रोपाई के बाद में कब हमें उसमें उर्वरक का इस्तेमाल करना है डॉक्टर?
1: किसान भाइयों, आजकल खाद की बड़ी दिक्कत भी चल रही है, कई बार किसान को समय से नहीं मिल पाती,
0: जी
1: लेकिन खाद ना मिलने की वजह से आप अपनी रोपाई को डिले ना करें। आप पडलिंग के समय खाद मिलती है तो पडलिंग फर्स्ट पडलिंग होने के बाद खाद डाल सकते हैं, किसी वजह से लेट मिल रही है तो आप रोपाई शुरू करने से पहले खाद को डाल सकते हैं। और यदि आपके यहाँ लेबर मने करती है कि भाई हम खाद डलगी तो हम रोपाई नहीं करेंगे,
0: जी
1: वो रोपाई करने के तुरंत बाद खाद को डाल सकते हैं। तो जो मिट्टी का सस्पेंशन पानी में बना है, घोल बना है, वो मिट्टी धीरे धीरे धीरे आपके द्वारा डाली गई खाद के ऊपर बैठ जाएगी, वो ऊपर से दिखाई नहीं देगी। बहुत से किसान रोपाई के 10-15 दिन बाद खाद डालते हैं, तो उनको पाटा प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए
0: अच्छा
1: ताकि मिट्टी का घोल बने, वे दाने मिट्टी में धस जाए, चिपक जाए और उनके ऊपर मिट्टी जम जाए तो पौधों को वो मिल पाएगा। नहीं तो आपने देखा होगा जब हम अपनी फसल की कटाई करते हैं तो वे दाने खेत में ऊपर पड़े मिलते हैं।
0: बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें खाद डालना है और जैसी भी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हमारे किसान भाई उसमें उर्वरक डाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, हमारे भाइयों ने पूरी जानकारी उनको हो गई है कि आरंभिक अवस्था में किस तरीके से हमें अपनी फसल की देखभाल करनी है, कौन कौन से काम करने हैं। तो चलते चलते हमारे भाइयों को आप इस बारे में और क्या राय मशवरा देना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
1: किसान भाइयों, आपके द्वारा जो बासमती पैदा होता है वो अधिकतर हम लोग विदेश में निर्यात करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो रसायन अवशेषों की आती है। तो आप सब लोग से निवेदन है कि अपने बासमती धान में जो भी रसायन आप उपयोग करें उसकी संस्तुति वैज्ञानिकों द्वारा की गई हो, किसी विशेषज्ञ के द्वारा की गई हो और कृषि विभाग के द्वारा की गई हो। समय समय पर सरकार वैज्ञानिक आप लोगों के बीच में संदेश भेजते हैं कि इन पेस्टिसाइड को नहीं लगाना। आप लोगों को याद होगा पिछले बार 10-12 पेस्टिसाइड को बैन किया गया था, तो जो बैन पेस्टिसाइड होते हैं बासमती में इस्तेमाल नहीं करने होते हैं तो उनको इस्तेमाल ना करें। जो रिकमेंडेड पेस्टिसाइड है उन्हीं का आप अपने बासमती धान में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा निर्यात बढ़ेगा, हमें अच्छे रेट मिलेंगे और हमें विदेशी मुद्रा ज़्यादा प्राप्त होगी।
0: तो इस तरीके से किसान भाइयों, हमें आरंभिक अवस्था में अपनी बासमती धान की फसल में ये सारी शस्य क्रिया करनी है, ये सारे काम करने हैं, और हमें रसायन मुक्त बासमती धान का उत्पादन लेना है, गुणवत्ता युक्त बासमती धान का उत्पादन लेना है। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जी, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान बहन भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रोपाई के बाद आरंभिक अवस्था में बासमती धान में शस्य क्रियाएं, इस बारे में भैया डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर से हमारे भैया झुमरू ने बातचीत करी।
0: हाँ
2: और झुमरू भैया देखो बड़ी अच्छी बात निकल गई।
0: भाई, देखो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें किस तरीके से,
2: हाँ
0: भैया पहले तो खेत को तैयार करना है
2: ठीक।
0: अच्छे तरीके से, भैया उसकी पेडलिंग करनी है और भैया खेत को समतल करके भैया उसमें एक समान हमें 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरना है,
2: बिल्कुल।
0: ज्यादा पानी भैया हमें नहीं भरना। और भाई डॉक्टर साहब ने बताया कि भैया पौध को अच्छे तरीके से उखाड़ कर उसे शोधित करके और भैया हम लाइनों में समान दूरी पर रोपाई करनी है।
2: बिल्कुल। देखो एक खास बात यो भी बताई कि 3 मीटर के बाद भैया थोड़ी सी जगह छोड़नी है, जिससे भैया जो है हम फसल में जो है खाद डाल सकें और जब निराई गुड़ाई करते हैं उसमें भी फायदा हो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि यो जो चीज़ है
0: हाँ
2: यो भैया जब खा

0: जगह रह जाएगी ना, तो इसमें मकड़ी जाला पूर देंगी,
1: बिल्कुल।
0: तो होगा यो कि जो हानिकारक कीट हैं वो इस जाल में फंस जाएंगे और आपका फ्री में ही कीट नियंत्रण हो जाएगा।
1: बिल्कुल। और मैं देखो डॉक्टर साहब ने बताया हा कि भैया बासमती धान में जो हमारे पौधे हैं वो अच्छा ब्यांत कर सकें,
0: हाँ
1: अच्छे कल्ले फूट सकें,
0: हाँ
1: तो भाई इसके लिए पाटा विधि भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो, पाटा लगाना जरूरी है, यानी कि एक बार जो है पूरे पौधे को लिटा देना है पानी में,
1: हाँ
0: है ना। तो भैया इसके लिए कैसे कैसे करना है थोड़ा सा बताओ।
1: भाई देखो डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमें एक लकड़ी लेनी है
0: हाँ
1: और भैया उसे हमें दो उसे बांध देना है रस्सी से,
0: हाँ
1: और भाई उसे दो आदमी पकड़ लेमो और उस लकड़ी को भैया खींचते हुए चले जामो
0: हाँ
1: पूरे फसल पर, जैसे कि भैया पैंत भर भर का
0: हाँ
1: हम पशुओं के माध्यम से ट्रैक्टर के माध्यम से भैया हलाई भरे हैं,
0: हाँ
1: उसी तरीके से भैया वो हम लकड़ी पूरे खेत में घुमानी है, पाटा लगाना है, तो एक बार को भैया सारे पौधे वो तिरछे हो जाएंगे,
0: हाँ
1: बिछ जाएंगे भैया वो, और उस टाइम पर खेत में पानी होना चाहिए,
0: हाँ
1: तो खेत में अगर पानी होगा तो भैया जो अंडे हैं या भैया उसमें तितली बैठी हुई है जो बाद में अंडे देगी तो वो सारी झटके लगकर पानी में गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक तो फायदा ये होगा,
0: हाँ
1: साथ ही भैया दूसरा फायदा ये होगा कि भैया झटका लगने से अच्छे कल्ले फुटेंगे।
0: बिल्कुल ऐसा बताया डॉक्टर साहब ने भैया। पौधे की जो जड़ है उसमें एक गांठ सी होती है, तो जैसे ही पौधे को तिरछा करेंगे तो ये उस पौधे में से वो जो गांठ है वो फूट जाएगी और वहां से जो है बहुत तेजी से कल्ले फूटेंगे। तो कुल मिला के एक ब्यात अच्छा हो गया,
1: हाँ
0: दूसरे कीटों से नियंत्रण हो गया। तो भैया तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई।
1: बिल्कुल। और देखो भाई डॉक्टर साहब ने संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन के बारे में बताया हाँ,
0: हाँ
1: तो भैया यो भी हमें डालना हाँ, और भाई बढ़िया उत्पादन हम अपनी फसल से ले सकें, इसके लिए भैया हम खेत में बराबर नमी बरकरार रखनी है भाई, उसमें जो दरार नहीं फूटनी चाहिए खेत में।
0: बिल्कुल भाई देखो, पैर भैया हमारा जो है जरूर बैठने चाहिए खेत में, इतनी नमी बनी रहनी चाहिए। अगर भैया दरार फूट गई और झिरी सी दिखाई देने लगी
1: हाँ
0: तो समझ लो भैया पानी कम है,
1: बिल्कुल
0: फौरन सिंचाई कर दो।
1: हाँ, तो भैया हमें इस बात का ध्यान रखना कि खेत में तो दरार ना फुटे, साथ ही ऊपर से पपड़ी ना उतरे,
0: हाँ
1: तो भैया अगर ये तब तक नहीं होगा जब तक हम खेत में नमी बना कर रखेंगे, तो भैया उससे पहले ही जो है भैया खेत में आप पानी लगाते रहो, और हमेशा भैया पानी हम शाम के टाइम लगाना है।
0: बिल्कुल। देखो भाई पानी खासियत यह है कि भैया वो जल्दी से तो गर्म नहीं होता, लेकिन देर से गर्म हो,
1: हाँ
0: और जितनी देर से गर्म हो उतनी देर में वो ठंडा हो।
1: बिल्कुल
0: तो बहुत देर तक अगर गर्म पानी हमारे खेत में रहेगा तो पौधे को नुकसान देगा। तो इसलिए भैया पानी ज़्यादा भर कर ना रखें, बस हल्की नमी बनाओ रखें। हाँ
1: तो भाई इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे और रोपाई के बाद में अच्छे तरीके से भैया अपने खेत में देखभाल करेंगे, ये सारी सस्ती क्रियाएं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई बासमती धान की फसल से बढ़िया उत्पादन ले सकेंगे।
0: बिल्कुल सही बात आपने की। देखो बात छोटी छोटी सी जरूर है, लेकिन हमें उन्हें उपयोग में लाना है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: तो भाई देखो हमें इस तरीके से अगर बासमती धान से बढ़िया उत्पादन लेना है तो बासमती धान के बारे में, उसकी खेती के बारे में तकनीकी जानकारी लेने के लिए, गुणवत्ता युक्त तो बासमती धान उत्पादन करने के लिए सुनते रहो प्रत्येक मंगलवार को
0: बासमती
1: बासमती
0: धान
1: धान रेडियो
0: रेडियो
1: कृषि
0: कृषि पाठशाला।
1: पाठशाला। अरे मास्टर जी,
0: हाँ भैया।
1: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा
0: अरे भाई
1: रहा
0: लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा
1: है।
0: है।
1: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। हाँ,
0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
1: देश किसान किसान का मान बासमती धान।
2: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान का मान बासमती, देश की शान बासमती।
4: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: अरे गंगाराम भैया,
0: हाँ प्रमोद भैया।
2: ऐसा लग रहा है भैया तुम तो इस बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के इस पाठ में खो गए।
0: बिल्कुल भाई देखो बात यो है,
2: हाँ
0: बासमती की ऐसी बात है कि इसके उगाने की जिम्मेदारी हमारी है।
2: बिल्कुल हमारी है भैया।
0: हाँ क्योंकि भाई देखो शहरी दुनिया में ये पैदा नहीं होती भाई, थोड़ा सा हिस्सा हमारा और जरा सा हिस्सा पाकिस्तान का,
2: पाकिस्तान का
0: बाकी सब खाने वाले हैं।
2: तो
0: तो
2: भैया
0: भाई
2: इसलिए हमें तो उगाना।
0: हाँ, लेकिन भैया एक बात का ध्यान रखना हमारे
2: जी
0: किसान भाइयों को
2: जी जी जी
0: कि भाई कीटनाशक उसमें ऐसे उपयोग करें जो भैया परेशान ना करें बाद में, है ना।
2: देखो भैया, कीटनाशकों का जो इस्तेमाल है वो तो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, किसी भी फसल में क्यों ना।
0: सही।

0: बात है।
1: और भाई हमें बड़ी सारी सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो फसल है ना वो तो महत्वपूर्ण है ही,
0: हाँ
1: भैया जो उसके अवशेष खेत में रह जाए हैं वो भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण रह कर हैं।
0: बिल्कुल। देखो भैया, अगर कीटनाशक क्या या किसी भी चीज़ का अंश भैया जांच में आ गया तो हम उसे निर्यात नहीं कर सकते, यानी विदेश नहीं भेज सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमें जो है भैया ऐसा ध्यान रखना है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी कि दोनों काम हो जाए, उत्पादन पर भी फर्क ना पड़े और हमारी मुंजी जो है फेल भी ना हो।
1: फेल भी ना हो और भैया हमारा खेत भी ठीक ठाक बना रहे है।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो, ये तो हो गई कुछ बासमती की बात, अब कुछ अन्य फसलों की बात कर लेते हैं।
1: देखो भैया हम अभी कर रहे थे ना भाई, अभी हम एक बात कर रहे थे कि कीटनाशकों का हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, और हम कह रहे थे कि भैया जो हमारी फसल के जो अवशेष हैं वो भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण रह कर रहे हैं,
0: सही बात है,
1: तो भैया बात इसी पे क्यों ना कर ली जाए।
0: बिल्कुल। जहां तक तुमने अवशेषों की बात कही ना, तो वही हुआ है कि देखो कृषि के अवशेष तो इतने हैं। अब इस टाइम की बात ले लो, इस टाइम हमारे, और बात छोड़ो तुम चारे को ले लो,
1: हाँ
0: तो चारे में चरी की जड़ है, बाजरे
1: बिल्कुल
0: की जड़ है, या
1: बिल्कुल।
0: अन्य चीजों के अवशेष हैं। या भैया हम जब गन्ना चलता हमारा, तो गन्ने की जड़ है, गन्ने की
1: जी
0: पत्ती हैं।
1: हाँ
0: या मुंजी जब कटकाती, तो भैया मुंगी मुंजी की जड़ है, पुराल है।
1: हाँ
0: या भैया गेहूं की बात करें, तो गेहूं की जड़ है, उसका नालवा है।
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जिन्हें हमारे किसान भाई सोचते हैं यार ये किसी काम के नहीं,
1: लेकिन ये बड़े
0: और
1: काम के हो हमें।
0: इनमें आग लगा दें,
1: हाँ
0: तो भाई आग लगाने से नुकसान ही होता है कि भूमि की ऊपरी सतह जल जाती है और वही सतह हमारी उपयोगी हो।
1: अब भैया जब हम भूमि की ऊपरी सतह को ही जला देंगे तो फिर हम फसल किस में पैदा करेंगे, ये तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: बिल्कुल
1: इसलिए भाई अपने खेत में जो भी काम करें वो बड़ा सोच समझ के करें, अपने फसलों के अवशेषों को पहचान के करें, उनके महत्वपूर्ण जो भैया बात होती है ना उसको जानते हुए हमें जो अपने खेतों में काम करना चाहिए, पोषक तत्वों का भैया प्रबंधन भी उन्हीं के माध्यम से हुआ है,
0: सही
1: तो
0: बात
1: इन
0: है,
1: चीज को तो हमें पहचानना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल। तो भाई हम अपने किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि भैया कृषि के अवशेषों को बजाय जलाने के मिट्टी मिलाना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: भैया देखो, आजकल तो कृषि के यंत्र बहुत हो गए, रोटावेटर हो गया,
1: हाँ
0: हैरो है,
1: जी
0: टीलर है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: इनकी सहायता से जब एक बार मिट्टी मिल जाएंगे तो गल सड़ जाएंगे, उससे क्या होगा, जो कार्बनिक तत्व उसके अंदर हैं वो भैया भूमि को मिल जाएंगे और भूमि हमारी उपजाऊ हो जाएगी।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है। और जो पोषक तत्व तो हम अपने खेत में बाहर से ला कर डाल रहे हैं, रासायनिक तरीके से हम उसमें उसकी पूर्ति कर रहे हैं, तो भैया वो पूर्ति हम अपने इन फसल के अवशेषों से भी कर देंगे, ये बात है ना।
0: बिल्कुल सही बात है आपने की। तो भैया जब हम देख रहे हैं कि बहुत फायदा है, तो हम अपने जो कृषि के अवशेष हैं उनको जो है मिट्टी में मिलाना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: भाई अगर हम जलाते हैं तो सैकड़ों नुकसान है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है भैया, जो दमे के मरीज हैं, खांसी के मरीज हैं,
1: जी जी
0: उनकी तो
1: जी
0: हालत ख़राब हो जा,
1: हाँ
0: जो सांस के रोगी हैं भैया उनका जीना दूरभर हो जाता। तो भाई हम ऐसा काम करें जिससे भैया औरों का हित भी हो और हमारा उत्पादन भी बढ़े।
1: बिल्कुल आपने ठीक बात कही है भाई। तो देखो हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत ही समझदार हैं, जागरूक हैं, सारे काम बड़े समझदारी के साथ कर रहे हैं।
0: हाँ
1: और भैया देखो अब तो किसान भाई यो सोच रहे हैं कि भाई बातचीत तो हो ही रही है, मनोरंजन भी हो जाए, पर मनोरंजन से पहले हम सोच रहे हैं कि ये कुछ जो संदेश हमारे पास में है ये सुनवा दिया जाए किसान भाइयों को।
0: ठीक है भैया, सुनते हैं ये संदेश।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: गंगाराम भैया
0: हाँ
1: संदेश तो सुन लिए, और भैया हम यूं कह रहे थे कि किसान भाइयों का मनोरंजन होना बहुत जरूरी है, थारी क्या मर्जी भैया।
0: भाई, नेक्यर पूछ पूछ सुनवाओ ये प्यारी सी
1: ठीक है भाई
0: रागनी।

0: मेरी मांग रोशनी रजनी चंदा तारों ने। भैया अभी आपने बहुत ही अच्छी रागनी सुनी मेनपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में। और प्रमोद भैया देखो, अब और बात तो हम बाद में करेंगे,
1: हाँ भैया,
0: पहले भैया मौसम की चिट्ठी पढ़कर सुनाओ।
1: बिल्कुल। देखो भैया, मौसम की चिट्ठी हमारे पास में आई है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग,
0: हाँ
1: सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ से।
0: अच्छा
1: और भैया देखो, इस चिट्ठी में लिखा है कि आने वाले 5 दिनों तक बिजली, गरज, आंधी और तेज हवा के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और भैया यो जो चिट्ठी है ना, यो जनपद बिजनौर और उसके आसपास के जो जिले हैं उनके लिए भैया बताई गई है।
0: भैया, बात यो है, यो बताओ कि कौन कौन से दिन भैया भारी वर्षा की संभावना।
1: देखो भैया, कल को है 8 जुलाई,
0: हाँ
1: तो 8 जुलाई को कह रहे हैं कि बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली, तूफान आदि तेज सतही हवाएं होंगी।
0: ठीक।
1: और भाई 9 तारीख के लिए तो कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन 10 तारीख में भी भैया भारी वर्षा होने की संभावना है। और 11-12 तारीख को कोई चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन वर्षा होने की संभावना है।
0: यानी कि भैया 12 तारीख तक बारिश होगी रुक रुक कर, और कल को और 10 तारीख को भारी वर्षा होगी।
1: बिल्कुल। और देखो भाई, ऐसे मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह यो दी गई कि किसान भाई मूंग, उड़द और मूंगफली की बुआई को अभी स्थगित कर दें।
0: हाँ
1: अधिक नमी या लगातार बारिश के कारण बीज सड़ सकते हैं और अंकुरण भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए इसकी बुआई अभी ना करें।
0: बिल्कुल। देखो भैया, आपका जो अपना कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जरिए आपको कुछ जानकारी लेनी है खेती किसानी की, पशुपालन की, बागवानी की, तो भैया हमें खत लिख दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिनकोड 2467633।
1: इसके अलावा किसान भाई हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर हमारा जानते ही हैं किसान भाई। हमारा मोबाइल का नंबर है 94-570-78-288, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज किसान भाई कर सकते हैं।
0: और भैया देखिए, हमारे यहाँ से हेलो किसान, हेलो गन्ना किसान और हेलो बासमती, तीन भैया कार्यक्रम ऐसे हैं जो माह के पहले शुक्रवार को हेलो किसान होता है, तीसरे शुक्रवार को भैया हमारे माह के जो होता है हेलो गन्ना किसान, और आखिरी मंगलवार को हमारा होता है हेलो बासमती।
1: जी
0: तो इनसे संबंधित कोई समस्या हो तो भैया सीधे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, उसका नंबर भी बता दो भैया।
1: बिल्कुल, नंबर हमने अभी बताया है, नंबर हमारा वही है 94-570-78-288।
0: इसके अलावा भैया आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और भैया व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो भैया, बातें करते करते कार्यक्रम का समय कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं और दोनों भैया कर लेते हैं
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी किसान भाई सुन रही थी अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक वार्ता, साक्षरता मानव विकास की आधारशिला, और वार्ताकार हैं नगीना सिंह।
1: साक्षरता जीवन का आधार है। साक्षरता दर का मतलब किसी देश का या क्षेत्र की जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो किसी भाषा को पढ़ने, लिखने और समझने में सक्षम है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार यह दर 74.4% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% थी। लेकिन 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार यह बढ़कर 80.9% हो गई, जिसमें केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उच्च साक्षरता दर वाले हैं। साक्षरता दर क्या है यह समझना भी आवश्यक है। यह किसी दिए गए आयु वर्ग, आमतौर पर 7 वर्ष और उससे

पर के उन लोगों का प्रतिशत है जो किसी भाषा में पढ़ और लिख सकते हैं। इसमें केवल पढ़ना और लिखना ही नहीं बल्कि उस भाषा को समझना भी शामिल है। इस समय भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है, अतः इस समय भारत में लगभग 120 करोड़ लोग साक्षर हैं। मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी चेतना, विवेक और सीखने की क्षमता है। इस क्षमता को दिशा विस्तार और सामाजिक उपयोगिता प्रदान करती है साक्षरता। साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान नहीं है बल्कि यह जीवन को समझने, निर्णय लेने, अधिकारों को पहचानने और कर्तव्य को निभाने की आधारशिला है। इसलिए कहा गया है कि साक्षरता जीवन का आधार है। जिस समाज की नींव साक्षरता पर टिकी होती है वही समाज प्रगति, समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ता है। साक्षर होना केवल अक्षर पढ़ लेना नहीं है बल्कि यह शिक्षा की पहली सीढ़ी है। यही वह आधार है जिस पर एक व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करता है और राष्ट्र अपनी प्रगति की गाथा लिखता है। शिक्षा से केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि योग्यता, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास भी मिलता है। यही योग्यता आगे चलकर एक महान समाज और महानतम राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत जैसे प्राचीन और गौरवशाली इतिहास वाले देश के लिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम है। जब कोई निरक्षर व्यक्ति अक्षरों से परिचित होता है तो केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता बल्कि उसका परिवार, समाज और पूरा परिवेश एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। आज हम सभी शिक्षित नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम निरक्षरों को साक्षर बनाने के यत्न में हाथ बटाएं। यह प्रयास केवल सेवा नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रति सच्ची साधना होगी। यही संस्कार है जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया और यही संस्कार हमें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करे तब यह राष्ट्र हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर, सक्षम और विश्व का नेतृत्व करने वाला हो। यह सपना तभी संभव होगा जब हर नागरिक शिक्षा से सशक्त हो। आइए संकल्प लें कि हम अपने आसपास के हर निरक्षर को साक्षर बनाने की दिशा में योगदान देंगे, क्योंकि जब हर हाथ में किताब होगी, हर मन में ज्ञान होगा और हर हृदय में राष्ट्र भाव होगा तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। यही हमारी राष्ट्र के प्रति सच्ची सेवा होगी। सामान्य अर्थों में साक्षरता का तात्पर्य पढ़ने, लिखने और लिखित सामग्री को समझने की क्षमता से है, किंतु आधुनिक संदर्भ में साक्षरता का अर्थ कहीं अधिक व्यापक हो गया है। आज इसमें शामिल है बुनियादी पढ़ना लिखना, संख्यात्मक ज्ञान, सूचना और डिजिटल साक्षरता, सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक समझ, आत्मालोचनात्मक और तार्किक सोच। यानी साक्षर व्यक्ति केवल शब्द नहीं पढ़ता बल्कि समाज व्यवस्था और स्वयं को भी पढ़ना सीखता है। व्यक्ति के जीवन में साक्षरता की भूमिका अत्यंत निर्णायक होती है। साक्षर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, शोषण, अंधविश्वास और भ्रामक प्रचार से बच पाता है, बेहतर रोजगार और जीवन स्तर प्राप्त करता है। एक अशिक्षित व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है जबकि साक्षर व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता रखता है। कोई भी समाज तभी विकसित कहलाता है जब उसके नागरिक शिक्षित और साक्षर हों। साक्षरता सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देती है। जाति, लिंग और वर्ग आधारित भेदभाव को कमजोर करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। एक साक्षर समाज संवाद करता है, प्रश्न पूछता है और बदलाव की पहल करता है। वहीं निरक्षर समाज आसानी से अफवाहों, रूढ़ियों और सत्ता के दुरुपयोग का शिकार बन जाता है। लोकतंत्र की सफलता का सीधा संबंध साक्षरता से है। साक्षर नागरिक अपने मताधिकार का सही उपयोग करता है, नीतियों और घोषणाओं को समझता है, सत्ता से सवाल पूछता है, जवाबदेही की मांग करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन पद्धति है, और यह जीवन पद्धति तभी संभव है जब नागरिक साक्षर और जागरूक हों। साक्षरता किसी भी देश की आर्थिक उन्नति की रीढ़ है। शिक्षित मानव संसाधन उत्पादकता बढ़ाता है, नवाचार को जन्म देता है, उद्योग, विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाता है। आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था

0: में साक्षरता बिना रोजगार की कल्पना भी कठिन है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर भारत जैसे लक्ष्य साक्षरता के बिना अधूरे हैं। महिला साक्षरता का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है, स्वास्थ्य, पोषण और संस्कारों में सुधार लाती है, सामाजिक बदलाव की वाहक बनती है। इसलिए कहा जाता है, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। भारत जैसे समाज में साक्षरता सामाजिक न्याय का सबसे प्रभावी औजार है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और वंचित समुदायों के लिए साक्षरता दमन के खिलाफ आवाज है, अधिकारों की पहचान है, आत्मसम्मान का माध्यम है। इतिहास गवाह है, जब जब वंचित वर्ग साक्षर हुआ है तब तब उसने अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त किया है। आज का युग डिजिटल है, ऐसे में साक्षरता का नया रूप सामने आया है। मोबाइल और इंटरनेट का विवेकपूर्ण उपयोग, फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं की पहचान, ऑनलाइन सेवाओं और सरकारी योजनाओं की समझ, डिजिटल साक्षरता के बिना व्यक्ति आधुनिक समाज में पिछड़ जाता है। इसलिए आज साक्षरता का अर्थ केवल किताबों तक सीमित नहीं है। हालांकि भारत में साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई है, जैसे ग्रामीण शहरी असमानता, महिला और बालिका शिक्षा में बाधाएं, गरीबी और बाल श्रम, शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न। इन चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी योजनाएं नहीं बल्कि सामूहिक सामाजिक संकल्प से संभव है। साक्षरता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक संगठन, साहित्यकार और बुद्धिजीवी सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब समाज यह स्वीकार कर लेता है कि अज्ञान सबसे बड़ा अभिशाप है, तभी साक्षरता एक जन आंदोलन बनती है। अतः कहा जा सकता है कि साक्षरता केवल जीवन का एक पक्ष नहीं बल्कि पूरे जीवन की आधार भूमि है। यह व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, समाज को सभ्य और राष्ट्र को सशक्त। जिस समाज में साक्षरता होगी वहीं समानता होगी, न्याय होगा, प्रगति होगी। इसलिए हमें साक्षरता को केवल शैक्षणिक लक्ष्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय अभियान के रूप में अपनाना होगा। सच ही कहा गया है कि साक्षरता जीवन का आधार है और आधार मजबूत हो तो भविष्य उज्जवल होता है।
1: साक्षरता मानव विकास की आधारशिला। अभी आपने नगीना सिंह की ये वार्ता सुनी और इसके साथ ही विविध कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने आज के मौसम को देखते हुए चुना है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बरसात का गीत। गीत के बोल हैं रमेश शास्त्री के और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बरसात से, और बरसात के ही मौसम का आइए सुनते हैं एक और गीत मुकेश की आवाज़ में फिल्म छलिया से। गीत रचना कमर जलालाबादी की है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म दो बदन से आशा भोसले की आवाज में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म दो बदन से। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म परख का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की है और संगीत निर्देशन है सलील चौधरी का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देशगान।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे आज रात 10 बजे। और आज इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र की प्रस्तुति दी जाएगी। रात 9:30 बजे आप सुनेंगे वृक्षारोपण पर विशेष कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं अरविंद कुमार, राजकुमार वर्मा और कल्पक कपलश। संचालन होगा चरण सिंह का। सुगम संगीत में शाम 7:32 पर अंजना माथुर की आवाज में चंद गजलें सुनवाई जाएंगी। और फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे रात 8 बजे कार्यक्रम गीत संध्या में। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में रात 8:30 बजे और आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा रात 10:30 बजे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कल रात 9:30 बजे। कानून की बात, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल शाम 7:32 पर। भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की ये वार्ता प्रसारित की जाएगी विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर। खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन, इस विषय पर डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे संध्या 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा पशुओं में टीकाकरण का महत्व। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी आधुनिक और परंपरागत खेती का विलय इस विषय पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 7:18 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्यप्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में

0: यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
1: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा है कि वह एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की एक सप्ताह की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 18 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा, सुशासन और रोजगार का एक मॉडल स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह बात आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
2: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर को 819 करोड़ रुपए से अधिक की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता जब अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल बनता है, और जब सुरक्षा का माहौल होता है तो प्रगति को गति भी मिलती है, जिससे विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती मिलती है।
2: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है, और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और बारिश के मद्देनजर संभावित बाढ़ को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। हरियाली का यह उत्सव जन सहभागिता से मनाया जाएगा। अभियान को लेकर आज वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने राज्य सरकार के मंत्रियों संग बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बैठक में कहा कि 12 जुलाई को सभी विभागों के सहयोग से पूरे प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र, प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों की सहभागिता रहेगी। उन्होंने बताया कि नोडल वन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधे लगाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 12 जुलाई को प्रस्तावित वृहत वृक्षारोपण अभियान को पूरी तैयारी, समन्वय और जवाबदेही के साथ संपन्न कराया जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का आज 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 छात्रों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 छात्रों को डिग्री और 52 छात्रों को पीएचडी अवार्ड भी प्रदान किए गए। प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज वृंदावन में बताया कि प्रदेश के कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए

0: के कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार होमगार्ड्स विभाग में तैनात अवैतनिक अधिकारियों को भी इस सुविधा के दायरे में लाया गया है।
1: एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, होमगार्ड के जवानों के लिए हर थाने में 2 रूम की व्यवस्था रहेगी, 1 रूम लड़कियों के लिए, 1 रूम लड़कों के लिए। होमगार्ड और अवैतनिक हमारे पदाधिकारी सभी के परिवार को कैशलेस की व्यवस्था से जोड़ा है। आयुष्मान की तरह 5 लाख रूपए के इलाज की व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवान, कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। ऐतिहासिक निर्णय हुए है होमगार्ड विभाग के लिए सभी।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
2: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर आज सुबह का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
0: हॉकी इंडिया ने ओमान के मस्कट में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली मेन्स यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 से पहले राष्ट्रीय शिविर के लिए उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को चुना है। इन खिलाड़ियों के नाम शाहरुख अली, राहुल यादव, केतन कुशवाहा, रोमित पाल और प्रहलाद राजभर हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी लखनऊ समेत फरुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ समेत कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्य प्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अंजना माथुर की आवाज में चंद गजलें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस पेशकश से।

श्रोताओं, ये गजल आपने सुनी अंजना माथुर की आवाज में, और इसी आवाज में आइए सुनते हैं एक और गजल

श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अंजना माथुर की आवाज में चंद गजलें। आइए सुनते हैं एक और गजल

श्रोताओं, अभी आपने अंजना माथुर की आवाज़ में ये गज़ल सुनी और इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं और अब वक्त है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत संध्या का। श्रोताओं, गीत संगीत वास्तव में हमारे मन को लुभा देता है। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरजू से। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म आरसू से। मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म में आइए सुनते हैं मुकेश और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में ये गीत। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और धुन तैयार की है हयाम ने।

श्रोताओं, इस मीठी सी नोक झोंक के बाद आई सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म पूजा के फूल से। गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण की और संगीत निर्देशन है मदन मोहन का।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत से सजाया है चित्रगुप्त ने। फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी।

श्रोताओं एक बार फिर सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां। गीत है राजा मेहंदी अली खां का और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

पिया का घर। श्रोताओं, इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म ललकार का गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आई सुनते हैं फिल्म हमराही के कुछ गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम सुन रहे हैं फिल्म हमराही के कुछ गीत। आइए सुनते हैं एक और गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाज़ों में।

दिल तो भीगा, प्यार में मुस्कुरा।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, और इसके साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम जिसमें आज आपने फिल्म हमराही के गीत सुने, अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। रात के 8:45 हुए हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान, और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
2: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
3: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगे, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।

0: मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
1: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पालरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
5: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the 3rd T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
7: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
6: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
8: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and common vision for the future. The Prime Minister said India believes in development, peace, stability and prosperity. Mr. Modi stressed the need for collective action against terrorism and unilateral actions that undermine regional security. He emphasized global South stability besides Indo-Pacific. The Prime Minister called for deeper cooperation in defense, maritime security, trade, digital technology, educational, artificial intelligence and critical minerals. He also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Chandipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
6: The Prime Minister reached Jakarta last evening on the first leg of his three-nation visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Earlier today, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Prime Minister Modi also addressed the Indian community at Jakarta this evening. He said, India's economy is playing a major role in driving global growth. He said the government is working on the mantra of reform, perform and transform.
7: Aaj Bharat ki arthavyavastha दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 billion aspirations in motion.
6: The Prime Minister said India's journey towards self-reliance is becoming a multiplying force, not only for Indonesia, but for the entire ASEAN region. He stressed that India and Indonesia share a common vision of development and cannot afford to wait or slow down. Indonesian President Prabowo Subianto, in his address, said he has an Indian DNA. He said the achievements of India, both at the union level and across its states, are truly remarkable, and he closely follows this remarkable journey.
9: I want to admit that I am a great admirer of Narendra Modi ji, and I studied the policies of your Prime Minister. And Prime Minister Modi graciously allowed me to copy his policies. So the important thing is Indonesians must learn from the experience of India. Our civilization, our culture, many hundreds of years, strongly influenced by Indian civilization. Our language, what, 50% from Sanskrit?
6: Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, IIM, Bangalore, to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system.
10: As I am Bangalore ki campus.
11: Today, the Prime Minister approved the establishment of an IIM Bangalore campus in Indonesia. The expansion of such prestigious institutions abroad is a significant step towards internationalizing India's rich knowledge, tradition and education system.
6: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat conclave in New Delhi, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking the critics to show even one vehicle with issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. The minister stressed the need to promote alternative biofuels to achieve energy security and reduce dependence on fossil fuel imports. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that India successfully ensured an uninterrupted supply of LPG by taking timely steps to strengthen domestic production and secure energy supplies. Addressing the Viksit Bharat conclave, Mr. Puri said that while effective diplomacy helped evacuate stranded ships during the global energy crisis, India's domestic LPG production capacity was increased from 35,000 metric tons per day to 54,000 metric tons per day in a short period, ensuring uninterrupted cooking gas supply for over 33 crore LPG consumers. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah today launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Makinam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that this campaign is a significant initiative aimed at transforming Delhi's environment. Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of Green Ridge area into forest land over the next 4 years and ensure its protection.
12: Today, with the support of the Government of India, the Delhi government has prepared the working plan document and the management plan for the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary while also developing the Delhi Bird Atlas. These initiatives form part of a comprehensive effort to restore the entire ecosystem. More than 70 ponds will be developed within the ridge along with small restaurants and visitor amenities. In addition, all archaeological structures in the area will be conserved and protected.
1: Archaeology ki sanrachnaen surakshit karenge.
6: Delhi Chief Minister Rekha Gupta said over 12 lakh saplings will be distributed free of cost and appealed the citizens to actively participate in the campaign. In Kerala, three people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kallari in Meppadi, Wayanad, following heavy rainfall today. Nine workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital in Meppadi. Six others remain missing and are feared trapped beneath the debris. Rescue operations are continuing with teams from the Fire and Rescue Services and Disaster Response Agencies. The Keralam State Disaster Management Authority said the collapse occurred when debris accumulated during excavation for the tunnel construction site slid down due to heavy rain. Wayanad has been experiencing heavy rainfall since yesterday. A red alert has been issued for Wayanad and Kozhikode districts. Heavy monsoon rains continue to batter Maharashtra today, triggering flooding, landslides and traffic disruptions in Palghar, Raigad and Ghat areas of Nashik, Pune, Ahilyanagar and Kolhapur districts. Meanwhile, Mumbai and the adjoining areas witnessed a relative easing of rainfall. The IMD has forecast heavy rainfall conditions in several areas of North and South India for the next 3 to 4 days. Here is more from our correspondent.
13: IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till 13th of this month. The weather agency has forecast heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh and South Interior Karnataka till 13th of this month. Thunderstorm conditions have been forecast over Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana till next Monday. Thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds are likely to prevail over Andhra Pradesh, Jharkhand, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Odisha and northeastern region during the next 3 to 4 days. Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
6: Two explosions rocked Syria's capital Damascus this afternoon, injuring 18 people, including four police officers. The explosions occurred just before the meeting between French President Emmanuel Macron and his Syrian counterpart Ahmed al-Sharaa at the presidential palace. President Macron, who arrived in the Syrian capital yesterday, is the first top European leader to visit the war-torn country since the fall of the regime headed by Bashar al-Assad. Benchmark domestic equity indices gave up their initial gains and ended on a negative note today. We have a report.
14: Sensex dropped 104 points to close at 78,181. Nifty dipped 32 points to settle at 24,399. Both the stock market indices dropped 0.13%. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.3%, while the small-cap 100 index lost more than 0.5%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 44 paise to close at 94 rupees and 96 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
6: On to sports. In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. England defeated India by 4 wickets in the second T20 match on Saturday in Manchester. The first match was washed out due to rain. In the Wimbledon tennis, world number one and defending champion Jannik Sinner has stormed into men's singles semi-final, beating Jan Lennard Struff of Germany in London this evening. In women's singles, Coco Gauff advanced to the semi-finals, defeating fellow American Jessica Pegula in a thrilling quarter-final match. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in the round of 16 match in Atlanta tonight. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver at 1:30 a.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of Green Ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the 30-20 international of the five-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
15: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इकतसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
16: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत तरक्की अमन इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफा बहरी सलामती तिजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
15: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीके कार के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए करीबी

0: पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपूर्ण से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जुजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीकेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मजबूत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
2: रीच के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है।

0: हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की, ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मनसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ्त का भी जायजा लिया, जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोदे खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मैपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के 5वें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1,00,000 से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सुपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दोतरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 इशारिये में 0.3 और स्मॉल कैप 100 इशारिये में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا. پری کوارٹر فائنل کے ایک دیگر مقابلے میں وینکوور میں بھارتی وقت کے

का मन निश्चित नहीं, पिता को बेटा हर एक याद करे, मगर पेड़ निज छाया फल से निस्दिन श्राद्ध करे। वर्मा ने पढ़ धर्म शास्त्र से लिखा यह कथन।

0: एक दो
1: बहुत
0: मुक्तक
1: सुंदर,
0: और प्रस्तुत करता हूं।
1: स्वागत है स्वागत।
0: कि कविता क्या है, मन के भावों को लिख गाना पड़ता है।
1: वाह वाह।
0: कविता क्या है, मन के भावों को लिख गाना पड़ता है, उदासीन लोगों के मन उत्साह जगाना पड़ता है।
1: वाह वाह।
0: और जब समाज या शासन अपनी राह भटक कर चलते हों, तब कवियों को कविताई का धर्म निभाना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह।
0: तब कवियों को कविताई का धर्म निभाना पड़ता है। है छोटी मोटी कुछ खुशियाँ हमारे भी खजाने में, है छोटी मोटी कुछ खुशियाँ।

बड़ा सुख चैन मिलता है किसी के काम आने में, बड़ा सुख चैन मिलता है किसी के काम आने में। कर सक्षम हो निर्दोषों पे अत्याचार मत करना, अगर सक्षम हो निर्दोषों पे अत्याचार मत करना। कभी भी आत्मा को मार धन स्वीकार मत करना। कोई निर्बल सताया हो किसी का।

0: ना सहायक उसके तुम इनकार मत करना, बन जाना सहायक उसके तुम इनकार मत करना, अगर सक्षम हो निर्दोषों पे अत्याचार मत करना।
1: बहुत अच्छे राजकुमार जी, आपने सामाजिक दृष्टिकोण से भी और हमारे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी कविताएं सुनाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, आपका पुनः स्वागत है। और अब मैं दूसरे कवि को भी बुला रहा हूँ इसी कड़ी में, कल्पक कपलस जी हैं, वो भी पेड़ों पर, पेड़ों का क्या महत्व है, पेड़ क्यों लगाने चाहिए, क्या पौराणिकता है, और इस समाज को, इस देश को कैसे बचाना है जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है चारों तरफ और पूरी दुनिया में पर्यावरण जो है प्रदूषित हो चुका है, बहुत सारी बीमारियां उससे पैदा हो गई हैं। ऐसे में कल्पक जी हमें कविता के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से इससे हमें नुकसान है और कैसे हमें फायदा हो सकता है। मैं उन्हें एक मुक्तक के साथ बुलाना चाहता हूँ कि आज क्या स्थिति हो गई है शहरों की, कि बड़े शहर ऊंची हवेली देखी, सुबह शाम थकी नवेली देखी, दोपहर बाद वहां निकले दिन, रूठी रूठी धूप सहेली देखी, रूठी रूठी धूप सहेली देखी, धूप भी नहीं पहुंच पाती, कंक्रीट के जंगल इतने खड़े हो गए हैं। आइए कल्पक कपलस जी, आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज के इस उपलक्ष में मैं बस इतना कहूंगा कि मानव जो आज के विस्तार में इतना लगा हुआ है, आधुनिकता के नाम पर पर्यावरण की जो दुर्गति कर रहा है, उससे नुकसान जो है वो हमारा तो है ही, मगर ये नुकसान उनका भी है जिनका प्रकृति पर बराबर का हक है, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसे एक परिंदे की तरफ से आपके लिए एक मुक्तक रख रहा हूँ।

0: नहीं।
1: वाह,
0: जिसने सारी सृष्टि लूटी उस पर क्यों कोई सजा नहीं, जिसने सारी सृष्टि लूटी उस पर क्यों कोई सजा नहीं। धरती को मरुथल कर डाला, धरती को मरुथल कर डाला, कहता है कुछ करा नहीं। छीन लिए सबके घर आंगन, घर तेरा अब भी भरा नहीं। छीन लिए सबके घर आंगन, घर

0: भरा नहीं।
1: अब इसी के साथ एक कविता और गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2: स्वागत।
1: कि वो विनती क्या है इस मानव से, कि वो विनती क्या है इस मानव से कि

0: है,
1: हाँ
0: इनके रहते धरा है सुंदर वरना सब बेकार
1: वाह
0: है।
1: वाह
0: इनके रहते धरा है सुंदर वरना
1: वरना
0: सब
1: सब
0: बेकार
1: बेकार
0: है।
1: बहुत सुंदर
0: इस धरती पर केवल मानव, इस धरती पर केवल मानव नहीं तेरा अधिकार है।
1: वाह
0: हर प्राणी हर जीव का भी उतना ही ये संसार है।
1: है बहुत
0: हर
1: सुंदर
0: प्राणी हर जीव का भी उतना ही संसार है। काट दिए सब जंगल तुमने अपने घर बनाने को,
1: वाह
0: काट दिए सब जंगल तुमने अपने घर बनाने को, नहीं है सोचा जाए कहाँ ये पंछी दर्द भुलाने
1: वाह वाह
0: को,
1: वाह
0: नहीं
1: वाह
0: है
1: बहुत सुंदर
0: सोचा जाए
1: वाह
0: कहाँ ये पंछी दर्द
1: दर्द
0: भुलाने
1: भुलाने
0: को।
1: को
0: सिमट गए हैं वन सारे सूनी हर एक डाल हुई, सिमट गए हैं वन सारे सूनी हर एक डाल हुई। चाह नहीं फिर भी रुकी भटके तू क्या क्या पाने को,
1: वाह वाह
0: चाह नहीं फिर भी रुकी भटके तू क्या क्या
1: क्या पाने
0: पाने
1: को
0: को। पूछ रहे हैं पशु ये पंछी कैसा तेरा व्यवहार है,
1: है
0: पूछ रहे हैं पशु ये पंछी कैसा तेरा व्यवहार है। हर प्राणी हर जीव का भी उतना ही ये
1: क्या
0: संसार
1: बहुत सुंदर
0: है।
1: बहुत
0: हर
1: सुंदर बहुत
0: प्राणी
1: सुंदर
0: हर जीव का भी उतना ही ये संसार है। मत काटो इन वृक्षों को, मत काटो इन वृक्षों को, ये जीवन का आधार है।
1: है
0: इनके रहते धरा है सुंदर वरना सब बेकार
1: बेकार है बहुत
0: है।
1: सुंदर
0: धरती पर केवल मानव नहीं तेरा अधिकार है। इस
1: वाह
0: धरती पर केवल मानव नहीं
1: नहीं
0: तेरा
1: तेरा
0: अधिकार
1: अधिकार
0: है।
1: है
0: हर
1: सुनो
0: प्राणी हर जीव का भी
1: कभी
0: उतना ही ये संसार
1: अधिकार
0: है।
1: है।
0: अगला बन सुनिएगा।
1: स्वागत स्वागत है।
0: आधुनिकता का दंभ भरता, आधुनिकता का दंभ
1: कादम्ब
0: भरता
1: भरता
0: खुद को बड़ा महान कहे, आधुनिकता का दंभ भरता खुद को बड़ा महान कहे।
1: क्या
0: नदियों में विष घोल घोल कर इसको तू विज्ञान
1: क्या
0: कहे,
1: बात है
0: नदियों में विष घोल घोल
1: वाह
0: कर इसको तू विज्ञान कहे।
1: वाह
0: जब
1: वाह
0: दूषित करता प्रकृति को तब उसको तू उत्थान कहे,
1: जी
0: फिर साफ सफाई की चर्चा कर इसको तू समाधान कहे,
1: वाह
0: फिर
1: वाह
0: साफ सफाई की चर्चा

0: ये संसार है।
1: बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर।
0: मत काटो इन वृक्षों को, मत काटो इन वृक्षों को, ये जीवन के आधार है, इनके रहते धरा है सुंदर।

0: संसार है।
1: आखिरी बंद सुनिएगा।
2: स्वागत स्वागत।
0: जहाँ शहर तूने है बसाए, जहाँ शहर तूने है बसाए, रहना वहाँ दुश्वार हुआ। धुएं धूल और शोर के कारण जीवन स्वयं बीमार हुआ। धूल धुएं और शोर के कारण जीवन स्वयं बीमार हुआ। और शुद्ध हवा की खोज में फिर, शुद्ध हवा की खोज में फिर पर्वत भी शिकार हुआ। पर्यटन के नाम पर उस पर कितना अत्याचार हुआ। पर्यटन के नाम पर उस पर कितना अत्याचार हुआ। तो फिर दोषी

0: हैं, इनके रहते धरा है सुंदर, वरना सब बेकार है। धरती पर केवल मानव नहीं तेरा अधिकार है, हर प्राणी हर जीव का भी उतना ही ये संसार है। हर प्राणी हर जीव का भी उतना ही ये संसार है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कल्पक जी ने इस संसार के बारे में बताया, और अब अगले कवि के रूप में जो इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, प्रेरित करेंगे, अरविंद कुमार नादा जी, उनको मैं एक मुक्तक के साथ बुलाना चाहता हूँ कि फूल खिले गुलशन में तो बहार आई, फूल खिले गुलशन में तो बहार आई, आप आए तो खुशियाँ हजार आई, समझ ना आए कैसे करूँ स्वागत आपका, समझ ना आए कैसे करूँ स्वागत आपका, नई नई तरकीबें दिल में बारंबार आई, नई नई तरकीबें दिल में बारंबार आई। अरविंद नादा जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। अरविंद नादा जी
2: बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। पर्यावरण संबंधी कुछ दोहे प्रस्तुत है।
1: स्वागत।
2: वन जंगल सब कट गए धरा हुई निर्वस्त्र, वन जंगल सब कट गए धरा हुई निर्वस्त्र, किसने विकास के नाम पर किया सभी को त्रस्त।
1: वाह।
2: पेड़ लगाकर कीजिए पेड़ों का सम्मान, पेड़ लगाकर कीजिए पेड़ों का सम्मान, तभी बचेगा मानव जीवन जन जंगल और जान।
3: क्या बात, बहुत सुंदर,
1: बहुत बढ़िया।
2: दोहे और हैं। इधर उधर क्यों भटक रहे हो ढूंढे पेड़ की छांव,
1: वाह।
2: इधर उधर क्यों भटक रहे हो ढूंढो पेड़ की छांव, वृक्षारोपण कीजिए अपने अपने गांव।
4: क्या बात,
2: वृक्षारोपण कीजिए अपने अपने गांव। और एक ये जो है दोहा विशेष ध्यान चाहूंगा, बूंद बूंद पानी को तरसे ये मानव के पूत।
1: वाह।
2: बूंद बूंद पानी को तरसे ये मानव के पूत, तू ही तो खुद बना हुआ है जंगल का यमदूत। तू ही तो खुद बना हुआ है जंगल का यमदूत, वृक्षों से मिलता हमें भोजन पानी वस्त्र, पेड़ लगाकर धरा सजाओ मिट जाएंगे सब कष्ट।
1: क्या बात, बढ़िया बढ़िया।
2: कुछ दोहे और है। धरती माँ तप रही सूखे खेत और गाँव,
1: वाह।
2: पेड़ लगाकर दीजिए इनको ठंडी छांव,
1: बढ़िया।
2: पेड़ लगाकर दीजिए इनको ठंडी छांव, भूस्खलन बाढ़ और आंधी और तूफान, इनका कारण एक है केवल वृक्ष कटान।
1: वाह।
2: इनका कारण एक है केवल वृक्ष कटान।
4: अच्छा।
2: जंगल हो या प्रति भूमि या खेत की मेड़, धरती का अनमोल रतन पेड़ लगाओ पेड़।
1: वाह वाह।
2: धरती का अनमोल रतन है पेड़ लगाओ पेड़। मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ।
4: स्वागत है, स्वागत है।
2: वो अपने प्रियतम को कह रहा है कि कहाँ से लाऊं अब मैं प्रियतम, कहाँ से लाऊं अब मैं प्रियतम हरा भरा सा सुंदर उपवन।
1: वाह।
2: कहाँ से लाऊं मैं प्रियतम हरा भरा सा सुंदर उपवन, मेरा मन था तुझको निस्दिन वन उपवन की भ्रमण कराऊं। मेरा मन था तुझको निस्दिन वन उपवन का भ्रमण कराऊं, ठंडी ठंडी छाओ बैठकर तुमको प्रणय गीत सुनाऊं। ठंडी ठंडी छाओ बैठकर तुमको प्रणय गीत सुनाऊं, अब न रही वो ठंडी छाया अब न रहे वो सुंदर मधुवन, कहां से लाऊं मैं प्रीतम हरा भरा सा सुंदर उपवन, हरा भरा सा सुंदर। और दूसरा बंद है, तेरे सुंदर यौवन की अब मैं किससे उपमा दे पाऊंगा।
1: वाह वाह।
2: तेरे सुंदर यौवन की अब मैं किससे उपमा दे पाऊंगा, तेरे कजरारे नैना को मैं कैसे भंवरा कह पाऊंगा। तेरे कजरारे नैना को मैं कैसे भंवरा कह पाऊंगा, ना रही वो पुष्प वाटिका कैसे हो भंवरों का गुंजन।
1: वाह वाह वाह।
2: ना रही वो पुष्प वाटिका कैसे हो भंवरों का गुंजन, कहाँ से लाऊं ए मैं प्रियतम हरा भरा सा सुंदर उपवन। और ये आखिरी बंद है, तेरे रक्तिम अधरों को मैं कैसे कमल दल कह पाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: तेरे रक्तिम अधरों को मैं कैसे कमल दल कह पाऊंगा, तेरे आंचल की खुशबू को कैसे संदल कह पाऊंगा, तेरे आंचल की खुशबू को कैसे संदल कह पाऊंगा, गुम हो गए सभी कमल दल कहाँ गए वो चंदन वन।
1: वाह वाह वाह।
2: गुम हो गए सभी कमल दल कहाँ गए वो चंदन वन, कहाँ से लाऊं अब मैं प्रियतम हरा भरा सा सुंदर उपवन, कहाँ से लाऊं मैं अब प्रियतम हरा भरा सा ये सुंदर उपवन। और इसके बाद एक गीत और प्रस्तुत है।
1: स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
2: पर्यावरण पर एक गीत है
1: जी।
2: जल जंगल की मित्र सुरक्षा हमको ही करनी होगी
1: जी।
2: जल जंगल की मित्र सुरक्षा हमको ही करनी होगी, तब जाकर ये शस्य श्यामला अपनी ये धरनी होगी। तब जाकर ये शस्य श्यामला अपनी ये धरनी होगी। और बंद है, हमने विकास के नाम पे बंधु कैसा विनाश कर डाला है, काट काट कर वन धरती का चीर हरण कर डाला है। काट काट कर वन धरती का चीर हरण कर डाला है। मानव को अपनी करनी अब खुद को ही भरनी होगी। मानव को अपनी करनी अब खुद को ही भरनी होगी। तब जाकर ये शस्य सामला अपनी ये धरनी होगी।
1: बहुत बढ़िया।
2: तो एक बंद है,
1: स्वागत स्वागत।
2: ओजोन परत भी छीण हो गई, दिनकर की किरणें प्रखर हुई।
1: वाह।
2: ओजोन परत भी छीण हो गई, दिनकर की किरणें प्रखर हुई। शीतलता की सभी कोशिशें मानव की बेअसर हुई।
1: वाह।
2: शीतलता की सभी कोशिकें मानव की बेअसर हुई। इस धरती पर पेड़ लगाकर, इस धरती पर पेड़ लगाकर कोशिश फिर करनी होगी।
1: वाह वाह वाह।
2: इस धरती पर पेड़ लगाकर कोशिश फिर करनी होगी। तब जाकर ये शस्य श्यामला अपनी ये धरनी होगी। बस ये मन है। जल जंगल की मित्र सुरक्षा हमको ही करनी होगी। तब जाकर ये शस्य श्यामला अपनी ही धरनी होगी।
3: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया नाथा जी, क्या बात है।
4: बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरित करने वाली और जागरूक करने वाली ये सुंदर पंक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने वाले ऐसे हम सभी के प्रिय कवि, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, इतिहासकार और कलमकार को आदरणीय चरण सिंह स्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूं अपने काव्य पाठ के लिए एक मुक्तक से, कुछ पंक्तियों से, कि कंक्रीट के जंगल धुएं के बादल, कंक्रीट के जंगल धुएं के बादल प्रदूषण नदिया के पानी में, कंक्रीट के जंगल धुएं के बादल प्रदूषण नदिया के पानी में, जा सारी धरती मानव तेरी, मैं तो रह लूंगी नानी की कहानी में।
1: धन्यवाद कल्पक जी। और जैसा कि ये गोष्ठी चल रही है पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए और पेड़ों को लगाने के लिए, तो ऐसे में पूरा पर्यावरण, पूरी धरती, पूरा संसार प्रभावित हुआ है कि धरती प्यासी, सागर प्यासा, प्यासा आज आसमान भी है।
4: क्या बात।
1: उपयोग उपभोग की अति से दुखी आज भगवान भी है।
4: आहा, क्या बात है, क्या
1: इतना
4: बात
1: उपयोग है? हमने किया है, इतनी अति की है। और मैं कहता हूँ कुछ लोग जो पेड़ लगा तो रहे नहीं, काट रहे हैं, ऐसा महापाप बोल कर रहे हैं। तब एक मुक्तक बन पड़ा है कि पेड़ों की जो भी कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की जो भी कटाई कर रहे हैं, जीवन की समझो वो लुटाई कर रहे हैं।
4: क्या बात है, क्या बात।
1: और तापमान बढ़ाकर धरती का, तापमान बढ़ाकर धरती का वो जीवन में पापों की कमाई कर रहे हैं।
4: क्या
1: जीवन में पापों की कमाई कर रहे हैं।
4: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: और मैं कहता हूँ कि सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। वृक्षों के पूजन कर रहे हैं, तुलसी है, पीपल है, बरगद है, कि सारी

0: रही है, यावन में तुमसे ही खुशियां आ रही है।
1: तब हम ऐसे में इन वृक्षों की वंदना करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ये मेरी कविता है वृक्ष वंदना।
2: स्वागत।
1: जीवन हमने जिनसे पाया, जीवन हमने जिनसे पाया, क्या हमने उनका कर्ज चुकाया, हर प्राणी का करते पोषण, धरती का करते संरक्षण।
0: क्या बात।
1: आओ इनको नमन करें, इनको नमन करें, मिलकर नमन करें।
3: बहुत सुंदर।
1: और क्या महत्व है, शीतल छाया फल और जल दे, शून्य धरती को संबल दे, प्राण वायु का दान निरंतर, जीवन का आधार अनस्वर, इनके उपकारों को स्मरण करें, इनको नमन करें।

0: धूप वर्षा सब स्वम सह जाए, पशु पक्षी और मानव सारे इनकी छाया के हैं सहारे, और इनके चरणों में वंदन नमन करें,
1: क्या बात है,
0: मिलकर नमन करें, इनको नमन करें। और जब जब इनका ह्रास हुआ है तब क्या हुआ है
1: जी,
0: जब जब वन का ह्रास हुआ है।

0: जब जब वन का ह्रास हुआ है, जीवन एक संत्रास हुआ है, सूखा बाढ़ और बढ़ता ताप, प्राण मात्र के हैं अभिशाप, तब आओ मिलकर संरक्षण करें, इनको नमन करें।
1: बहुत सुंदर।
0: आज सभी ये संकल्प उठाएं, हम संकल्प लेते हैं सभी
2: जी।
0: आज सभी ये संकल्प उठाएं, हर आंगन में वृक्ष लगाएं, उनकी रक्षा का व्रत निभाकर हरित धरा का स्वप्न सजाएं, उनकी रक्षा का व्रत लेकर हरित धरा का स्वप्न सजाएं, आने वाले कल का सृजन करें, इनको नमन करें, मिलकर नमन करें,
1: बहुत अच्छा,
0: इनको नमन करें। और मैं कहता हूँ कि पेड़ों से बारिश होती है
2: जी,
0: पेड़ों से बारिश होती है, बारिश खुशियों को बोती है, खुशियों को सब चाहते हैं, चलो सब पेड़ लगाते हैं।
2: क्या संदेश
0: कहता हूँ अंत में, कि इन देवों को गले लगाएं, इन देवों को गले लगाएं, नित इनके ही गुण गाएं, मात पिता के नाम से हम आओ दो दो वृक्ष लगाएं, आओ दो दो वृक्ष लगाएं। ये मेरा संदेश है।
1: बहुत अच्छा हवन।
0: कविता छोटी सी और है, जो इस पर्यावरण प्रदूषण से किस तरह से पूरा वातावरण दूषित हो गया है, एक तरह से आग सी लगी हुई है चारों ओर, तब मेरी कविता का शीर्षक भी आग लगी है चारों ओर, क्या वातावरण पैदा हो गया है। यहाँ भूखा बच्चा कुत्ते से रोटी छीन रहा, यहाँ भूखा बच्चा कुत्ते से रोटी छीन रहा, वहाँ बूढ़ा बाबा कूड़े से अन्न को बीन रहा, पेड़ों बिन प्रदूषण हमसे सब कुछ छीन रहा, पेड़ों बिन प्रदूषण हमसे सब कुछ छीन रहा, उधर जनता जनार्दन पेड़ों से दीन रहा, पेड़ नहीं लगा रहा, लूटो लूटो का मचा है शोर, आग लगी है चारों ओर, आग लगी है चारों ओर, धरती जलती अंबर जलता, जलता सागर खारा
2: जी,
0: धरती जलती अंबर जलता सागर खारा, भूमि की गोद खाली कर रहा अब विज्ञान हमारा,
1: क्या बात है,
2: क्या बात है, क्या
0: मैला ढोकर नदियां अब सागर को झुलसाती हैं, कितने जलीय जीव मरते लाखों मछली मर जाती हैं, ना जाने कब होगी भोर, आग लगी है चारों ओर।
2: सुंदर, बहुत सुंदर।
0: और साहब, ओजोन परत में छेद हुआ है, ओजोन परत में छेद हुआ है, घायल भी आकाश है, प्रदूषण से दिनकर जलता बढ़ रहा प्रकाश है, बाजारों में अब ज्ञानी बिकता विज्ञानी बिकता, बढ़ती जनसंख्या के कारण बोतल में पानी बिकता, क्रय विक्रय पर बस है जोर, आग लगी है चारों ओर, आग लगी है चारों ओर। ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण के साइड इफेक्ट हैं, नुकसान है, कैसा वातावरण बन गया, पेड़ अगर ज्यादा होंगे अधिक होंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी। और क्या, कोई झुलसता भूख प्यास की आग में, कोई झुलसता भूख प्यास की आग में, कोई झुलसता हक पाने के विवाद में, कन्या जलती दहेज कुंड की वेदी पर, कोई कटता अंधविश्वास की देवी पर, उनको समझने आता ठोर, आग लगी है
2: बहुत सुंदर।
0: छोटी छोटी बस्तियां देखो शहर बनी है, किस तरह से विस्तार हुआ है, पेड़ों को काट काट कर किस तरह क्यों लगाने चाहिए, उनकी पूर्ति हमें करनी है
2: जी।
0: कि छोटी छोटी बस्तियां देखो शहर बनी है, कल कल करती नदियां अब जहर बनी है, आसमान में बादल भटक रहे पानी को, खाली तालाब दिखते मछली रानी को, प्यासे मरते चिड़िया मोर, आग लगी है चारों। धन्यवाद हमारे आने वाले कवियों का, बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद नादा जी, कल्पस जी और राजकुमार वर्मा जी, और मैं सोमचरण सिंह स्वामी आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी वृक्षारोपण पर विशेष कवि गोष्ठी, जिसमें प्रतिभाग किया था अरविंद कुमार, राजकुमार वर्मा और कल्पक कपलश ने, संचालन किया चरण सिंह ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, कल रात 9:30 बजे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कानून की बात। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल शाम 7:32 पर। भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की ये वार्ता प्रसारित की जाएगी विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1 बज

0: 15 मिनट पर बहनें सुनेंगी थारा स्वास्थ्य क्रम के अंतर्गत कार्यक्रम, और साथ ही प्रीतम कौर से की गई बातचीत का विषय होगा गर्भधारण के दौरान सावधानियां। लोकधारा कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर श्रोता सुनेंगे शारदा सिंह के स्वर में राजस्थानी लोकगीत। धरती गाती है कार्यक्रम में सुबह 9:25 पर आप सुनेंगे निर्देश त्यागी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:05 पर शिशिर कानाधर चौधरी के स्वर में वायलिन वादन प्रसारित किया जाएगा। जोड़ों का दर्द और सावधानियां, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी प्रातः 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों को जानकारी का विषय होगा आधुनिक और परंपरागत खेती का विलय। खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन, इस विषय पर डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे संध्या 6:05 पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने को है, अब हमारा अगला कार्यक्रम आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।
1: खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत एजे अमरजीत सिंह और इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है सरस्वती पाठक। खेल प्रेमी श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए पहले अयोध्या मंडल की स्थानीय खेल खबरों की ओर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित 2 दिवसीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का बुधवार 1 जुलाई को समापन हुआ। ये प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों के तहत आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के अटल बिहारी क्रीड़ा स्थल पर इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग के लिए कबड्डी, खो खो, बोरी दौड़ और लंगड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा बालक वर्ग के लिए गुल्ली डंडा और कंचा प्रतियोगिताएं भी शामिल थी। इन पारंपरिक भारतीय खेलों का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक दक्षता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव बढ़ाना था। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इनके संरक्षण से युवाओं को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे विश्वविद्यालय की एक सराहनीय पहल बताया। अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आयोजित 4 दिवसीय चयन ट्रायल के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मकबरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल मुकाबले में अंबेडकर नगर की टीम ने सुल्तानपुर को 55 रनों से पराजित कर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अंबेडकर नगर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 215 रन बनाए। टीम के बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुल्तानपुर की टीम 160 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला 55 रनों से हार गई। क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव उमेर अहमद ने बताया कि अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी के लिए मंडल स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। ट्रायल में अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और गोंडा जनपद के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनकर्ताओं की ओर से खिलाड़ियों के बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण कौशल का बारीकी से मूल्यांकन भी किया गया। अयोध्या में 8.84 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा मकबरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम के उच्चीकरण और नवीनीकरण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को

0: मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या के विकास खंड है रिंगटनगंज की ग्राम पंचायत ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और स्टेडियम की फिनिशिंग अंतिम चरण में है। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मल्टीपर्पज हॉल, बाउंड्री वॉल, बोरिंग गार्ड रूम, पंप हाउस, सीसी सड़क, ओपन जिम तथा आधुनिक रनिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। स्टेडियम के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र में खेल गतिविधियों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं प्राप्त होंगी। खेल दर्पण में अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम डाबा सेमर अयोध्या में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना से।
1: आकाशवाणी अयोध्या एफएम की ओर से सक्सेना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या में इस समय कौन कौन सी खेल गतिविधियां हैं जो चल रही हैं।
2: अयोध्या में बताना चाह रहा था कि पूरे यूपी का सबसे बड़ा एक स्टेडियम है जो कि लगभग 45 एकड़ में ये बना हुआ है और इसमें अलग अलग खेलों की बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पर चलती रहती हैं, जिसमें हमारे यहाँ कोचिंग जो चल रही है वो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, हैंडबॉल, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, ये सब खेल और कुश्ती, ये सब गेम यहाँ पर।
1: अभी हाल ही में कौन सा लेटेस्ट खेल गतिविधि चल रही थी?
2: अभी बिल्कुल बैडमिंटन खत्म हुई है 1 तारीख को।
1: जी,
2: पूरा राज्य के बच्चे यहाँ आए हुए थे और उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग नेशनल खेलने भी जा रहे हैं, तो इसलिए उस प्रतियोगिता
1: ट्रायल हुआ था, उसका
2: प्रतियोगिता कम ट्रायल था।
1: जी जी,
2: एसोसिएशन द्वारा वो आयोजित की गई थी, क्योंकि यहाँ पर अपने खेल विभाग के अलावा अगर एसोसिएशन या क्लब्स या कोई भी आकाशवाणी भी चाहे तो अपने कोई प्रतियोगिता छोटी सी करा सकते हैं, तो कोई भी जना उसको कर सकते।
1: तो जो बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए?
2: नेशनल नहीं जाएंगे,
1: राष्ट्रीय
2: यूपी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे
1: बैडमिंटन में।
2: बैडमिंटन में इसी प्रकार से अलग अलग गेमों में चलता रहता
1: है। और इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें यहाँ नवोदित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो अपने खेल को निखार कर प्रोग्रेस करके उसमें उन्नति करके अयोध्या मंडल का नाम रोशन करेंगे?
2: ये खेल तो जो मैंने आपको नाम बताया ये सर तो लोकल ही बच्चे इसको खेलते रहते हैं और बाहर के भी खेलते रहते हैं। साथ साथ ये स्टेडियम के अंदर 7 जो है गेमों के अंदर हॉस्टल है और वो भी अच्छी चीज ये है कि यहाँ सिर्फ बालिकाओं का ही हॉस्टल है। पूरे प्रदेश से हमारे 135 लड़कियां यहाँ पर रहकर खाना, उनकी सुविधाएं, ठहरना, सब चीज की दी जाती है, जिसमें हॉकी, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तो कुश्ती और वॉलीबॉल, ये 7 गेम हैं।
1: स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा जाहिर सी बात है यहाँ जिले के आसपास के ग्रामीण अंचलों से या प्रदेश के बाहर के भी खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे, ऐसे में क्या खिलाड़ियों को छात्रावास की भी सुविधा है यहाँ रहने के लिए?
2: 7 गेमों के अंदर यहाँ पर हॉस्टल है जिसमें हमारी बालिकाएं रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं का हॉस्टल है तो उसमें वो लोग कर सकती हैं। और इसका सिलेक्शन होने का प्रोसेस जो है जिला स्तर से शुरू हो जाती है, पहले जिला स्तर पे अपने सिलेक्शन होगा।
1: अच्छा।
2: उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मंडल पे जाएंगे, मंडल में जो सिलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट में जाएंगे, फिर एक स्टेट में उनको 15 दिन का एक कैंप लगाया जाएगा, सेंट्रल कोचिंग कैंप कहते हैं।
1: जी जी।
2: उस 15 दिन बाद जो कोच होगा उसमें से फिर जितनी सीटें होंगी 2, 5, 7 वो बच्चे जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाता है, जिसको सरकार की ओर से रहना, खाना पीना सब चीज फ्री।
1: तो उसमें किन किन खेलों के लिए यहाँ पे छात्रावास है? क्योंकि सभी खेलों के लिए तो नहीं होगा।
2: हॉकी है, हैंडबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है। लगभग इसमें हर एक में 20-20 बच्चे रहते हैं, लड़कियां जो के खेलेंगे या प्रैक्टिस करती हैं।
1: जी, छात्रावास में रहकर खिलाड़ी को अपने खेल कौशल को निखारना है तो उसे एडमिशन के लिए कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है? एडमिशन के लिए उसे क्या कुछ करना होता है?
2: देखिए, लोकल अगर आना चाहता है तो लोकल यहाँ पे केवल 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है
1: वार्षिक
2: वो करके कोई भी जना कर सकता है 18 साल से कम वर्ष का। और अगर 18 साल से ऊपर है वो लोग जो शौकिया खेलने आते हैं या अगर आप भी घूमने आना चाहेंगे या खेलना चाहेंगे तो उसमें 200 रुपए महीना उसको देकर यहाँ पर उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: जो स्पोर्ट्स की किट है वो वगैरह फ्री है सब?
2: नहीं, वो सिर्फ उनको हॉस्टल की जो बच्चे होते हैं उनको होती है, या वो खिलाड़ी जो हमारे यहाँ मंडल में की ओर से राज्य स्तर खेलने जाता है तो उनको जाते वक्त में अयोध्या मंडल की एक किट उनको उपलब्ध कराई जाती है जिससे वो आगे जाके वहाँ पे खेलते हैं।
1: तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर अयोध्या मंडल के किन किन खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में प्रतिभाग किया, उसका क्या परिणाम रहा? अभी हाल ही में कौन सी टीम स्टेट लेवल या नेशनल गेम खेलने गई?
2: नेशनल में अभी जूडो में भी गए हैं,
1: कुछ
2: हॉकी भी जीतती रहती है, हॉकी तो अधिकतर कहीं ना कहीं से हमारा मेडल लेकर आती ही है यहाँ की। वॉलीबॉल से भी 2-3 लड़कियां इस बार सेलेक्ट होंगी।
1: बच्चों के पेरेंट्स की ओर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है?
2: उसी की जरूरत है, हम उस फिराक में लगे रहते हैं कि किस बच्चे के माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि माँ बापों के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ता था। जैसे कोच कोचिंग दे रहा है, हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, खिलाड़ी भी खेलने जा रहा है लेकिन घर वाले खाना डाइट या उसका ध्यान नहीं दे रहे, या कोचिंग के समय पे उनके रिश्तेदारी में भेज दिया, घर पे आटा लेने भेज दिया, तो वो सब जो

0: सपोर्ट होता है वो घर से बहुत जरूरी है।
1: कभी कभी जूडो में कहते हैं कि बहुत खतरनाक गेम है, उसको मत खेलो, ऐसा डरा भी देते हैं बच्चों को।
0: जूडो में तो सबसे पहले गिरना ही सिखाते हैं, जब गिरना आ जाता है उसके बाद फिर उनको चोट ही नहीं लगती।
1: जी जी,
0: तो ऐसा कोई नहीं किसी भी खेल में चोट करते हैं।
1: तो खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्सेना जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत भी की गई भारत में। अगर हम अयोध्या और इसके आस पास के ग्रामीण अंचलों की बात करें तो इस मुहिम का कितना असर आप देख रहे हैं?
0: शुरुआत हो गई है असल में खेलो इंडिया की तरफ से। एक तो पहले एक जिला एक खेल करके एक स्कीम है जिसमें हम लोगों को एथलेटिक्स दिया गया। एथलेटिक्स में एक कोच है, उसमें 25 बच्चे उसमें सेलेक्ट कराए गए, उनको किट और वो सब दी जाती है।
1: अच्छा।
0: किट है, जूते, ब्रोजे, सब चीज उनको देके और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो वो लोग खेलो इंडिया के तहत आगे जा सकते हैं।
1: अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कितने घंटे अभ्यास उसको जरूरी है और डाइट किस तरह की होनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो भगवान द्वारा जो आपका शरीर बना के भेजा है
1: जी,
0: अगर वो सही स्वस्थ और उस तरह करके भेजा तो वो पहली बात तो वो स्पोर्ट्स के अंदर आ सकता है। और कई बार कोई दिव्यांग भी होते हैं तो वो भी उस चीज के अलग से उसके अंदर भगवान से कुछ गलती हो गई लेकिन फिर भी वो लोग उसके अंदर निकल आते हैं। तो इस पहले तो हमारा शरीर उस हिसाब से होना चाहिए। हर गेम के लिए अलग तरीके का शरीर चाहिए होता है
1: जी।
0: एथलेटिक्स के लिए पतला तो गोला फेंकने के लिए तगड़ा
1: जी हाँ।
0: किसी में एजिलिटी ज्यादा है, किसी में स्पीड ज्यादा,
1: हाइट वगैरह भी देखी जाती
0: है, तो बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलेगा। तो इस तरह करके हर खेल के लिए अलग अलग अलग वो चलता है। आपका शरीर होना चाहिए पर फिर उसके अंदर जुनून होना चाहिए। बहुत सारे
1: सबसे बड़ी ये चीज है कि जुनून होना चाहिए। अगर जोश नहीं है तो फिर गेम खेल नहीं पाएगा।
0: फिर उसकी स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ ये सब चीजें होंगी, धीरे धीरे डेवलप कर लिया।
1: अनिमेश जी, हमारे जो पारंपरिक ग्रामीण खेल हैं, खो खो, कबड्डी है, कुश्ती है, तीरंदाजी है और ये सभी खेल मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो इन प्रतिभाओं को आगे लाने और उनके खेल को निखारने का कितना प्रयास इस स्टेडियम में किया जा रहा है?
0: देखिए कबड्डी में भी है, यहाँ पर कोचिंग चलती है, एक महिला है वो कोच है। ऐसी हमारे कुश्ती भी चलती है
1: जी।
0: कुश्ती हमारे गद्दे पे होती है पूरे अच्छे से, कबड्डी भी गद्दे पे होती है नए तरीके से। तो ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। अभी खो खो का नहीं है लेकिन खो खो के पोल लगाए गए हैं, लेकिन यदि कोच नहीं है तो इसलिए बिना कोच के बच्चे प्रैक्टिस अपने आप बहुत कम कर पा रहे हैं, तो ये कारण इसके है। बाकी हमने दो गेम तो पकड़ रखे हैं।
1: चलिए, पूरी बातचीत में अगर मुझसे कोई भी बात छूट रही है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्टेडियम के बारे में कुछ और आप विस्तार से बताना चाहें तो बता सकते हैं।
0: जिले में जागरूकता की बहुत जरूरत है, खासतौर के अयोध्या में, क्योंकि वही बात है, एक तो थोड़ा दूर है स्टेडियम हमारे शहर के उससे, तो हमारे आसपास के खिलाड़ी ज्यादा आते हैं
1: जी।
0: बस यही है कि माँ बाप जो भेजेंगे, जागरूकता रहेगी तभी वो आगे निकल सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आएंगे ही नहीं स्टेडियम तो कोई बच्चा निकलेगा कैसे? तो साथ साथ आए यहाँ पर आगे खेले।
1: तो बातचीत खत्म करने से पहले एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे गेम है जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है।
0: कबड्डी है, क्रिकेट है। जैसे कबड्डी है तो कबड्डी हमारे मैट के ऊपर कराई जाती है, मिट्टी पे भी कराई जाती है
1: जी।
0: ये खासियत है। क्रिकेट है हमारा, इससे बड़ा स्टेडियम शायद ही कहीं, जैसे ग्रीन पार्क है
1: जी जी,
0: इतना बड़ा है जिसके अंदर हम अभी जल्द में रणजी भी कराएंगे। हॉकी जो है, हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे खेला जाता है, बाकी सब जो मैदान में खेलते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने एस्ट्रोटर्फ दे रखा है। हैंडबॉल ओपन कर दिया जाता है लेकिन हमारे यहाँ हैंडबॉल जो है इंडोर है, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी हॉल के अंदर कर सकते हैं। स्विमिंग पूल सब जगह एक होते हैं हमारे, तीन स्विमिंग पूल।
1: अच्छा।
0: लर्निंग भी है और मेन भी, ओलंपिक भी है और डाइविंग पूल भी है। वेट लिफ्टिंग में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जूडो है।
1: अभी जहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा था हॉकी प्लेयर्स से
0: जी,
1: तो वहाँ देखा था मैंने सारी सुविधाएं
0: जी, वो पूरा सुविधा है उसके अंदर। तो वही चीज से अब जो मॉडर्न जमाने में जिस तरह चलना, जैसे एथलेटिक्स है सिंथेटिक ट्रैक पे होता है, तो हमारे सिंथेटिक ट्रैक है। अब मैदान वाला बच्चा जो मैदान में प्रैक्टिस कर रहा है उस ट्रैक पे दौड़ नहीं पाता है
1: जी जी,
0: लेकिन हमारे अयोध्या के लिए सौभाग्य है कि यहाँ के खिलाड़ी उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और आगे निकलते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम धाबासिमर अयोध्या से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी अयोध्या की ओर से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम डाबासिमर अयोध्या मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री अनिमेश सक्सेना जी। आकाशवाणी अयोध्या पर तैयार किया गया खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीट AJ अमरजीत सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धाबासिमर अयोध्या में हमने कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की जो वहां पर अलग अलग खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है?
2: प्रियांश यादव।
1: प्रियांश, आप यहां पर कौन सा गेम खेल रहे हैं?
2: कबड्डी सर।
1: और कब से आ रहे हैं यहां पर?
2: मैं एक साल हो गया सर।
1: तो नेशनल लेवल पे भी आपने गेम खेला है?
2: यस सर।
1: कहां गए थे खेलने के लिए?
2: छत्तीसगढ़ सर।
1: और पूरी टीम के साथ गए होंगे आप?
2: यस सर।
1: तो क्या परिणाम रहा, कब गए थे आप?
2: जनवरी में।
1: तो ये बताइए, गेम्स तो बहुत से थे, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना, ऐसा क्या था इसमें?
2: सर मुझे अच्छा लगा सर, अच्छा खेल
1: लेता क्योंकि अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
3: राकेश यादव।
1: राकेश यादव जी, आप इस

0: स्टेडियम में कहाँ से आ रहे हैं?
1: मैं अयोध्या से आता हूँ।
0: किसने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह से सिखाया जाता है, आपको पता कैसे लगा?
1: पहले मैं स्कूल गेम खेला था, स्कूल में तो भैया आते थे प्रैक्टिस करने, उन्हीं के साथ आए।
0: स्कूल में कौन से गेम्स खेलते थे?
1: कबड्डी ही खेलते थे।
0: कबड्डी खेलने में कौन सी टेक्निक जो है सबसे बेहतरीन होती है, जिसमें जीत बिल्कुल लगता है कि अब जीत जाएंगे?
1: सर एंकल मारना और उसके बाद चैन मारना।
0: अच्छा,
1: ये बढ़िया टेक्निक है।
0: कहते हैं सांस का बहुत बड़ा, ब्रीथ का बहुत बड़ा गेम होता है।
1: हाँ ये सर बहुत होता है, उसके बाद ना इसमें डर वर का कोई वही रहता है, बिना डरे खेलो।
0: अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ खेलने गए अभी तक?
1: सर हम आंध्र प्रदेश गए हैं, तेलंगाना गए हैं और इधर बंगाल उंगाल साइड।
0: ये बताइए कि इस गेम में कितनी आपको प्रैक्टिस टाइम देना पड़ता है, कितना अभ्यास?
1: सर न्यूनतम सर सुबह 3 घंटे शाम तक।
0: तो डाइट भी कुछ विशेष बताते हैं कि कुछ भी खाइए?
1: नहीं सर, और बताते हैं डाइट कुछ भी थोड़ी ना, सर इस घोटाले खा सकते हैं जब खेलना है तो, इतना तो
0: जी,
1: सुबह डाइट रहता है।
0: और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी गेम को खेल रहे हैं अगर, तो हमारी फिजिक बहुत अच्छी रहती है।
1: हाँ ये सब तो अच्छा रहता है
0: ना,
1: मेंटली भी बढ़िया रहते हैं, फिजिकल भी सब कुछ बढ़िया रहता है बॉडी के लिए।
0: जी जी, आपका क्या नाम है?
2: सौरभ कुमार।
0: आप कब से आ रहे हैं?
2: 2 साल हो गए।
0: 2 साल आपको हो गया?
2: यस सर।
0: और कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अयोध्या जिला।
0: अच्छा, जब आप बाहर खेलने जाते हैं, नेशनल लेवल आप खेलने गए थे,
2: यस,
0: तो वहाँ से भी और भी बाहर से भी बहुत से खिलाड़ी आए होंगे,
2: यस,
0: तो वहाँ पे उनसे मिलकर आपने क्या सीखा वहाँ पर जब बाहर गए?
2: ये सीखा सर और मेहनत करे और अच्छा खेले। हम लोग हार गए थे वहाँ जाके 1 पॉइंट से फाइनल।
0: क्योंकि जब कभी हार मिलती है तो उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार के आगे जीत होती है।
2: यस,
0: क्योंकि हम किस वजह से हारे तो हम उस पे काम करते हैं, है ना? आपका क्या शुभ नाम है?
3: सत्यम पाल।
0: आप भी ये स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबा सेमर में सीख रहे हैं कबड्डी?
3: जी।
0: कबड्डी खेल आपको क्यों अच्छा लग रहा है?
3: सर ये मिट्टी से जुड़ा है, प्लस इसमें इंटरेस्ट था मेरा।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
3: हम लखनऊ के हैं।
0: तो क्या आप भी नेशनल लेवल कहीं खेलने गए हैं?
3: स्कूली गेम मैंने खेला है छत्तीसगढ़ में।
0: अच्छा, तो वहाँ पर जो टीमें और आई होंगी उनसे मिलकर आपको कैसा लगा?
3: उनसे मिलकर अच्छा लगा और ये देखा कि मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं और वो लोग कैसे स्ट्रेटजी से खेलते हैं।
0: वैसे ब्रीथिंग के लिए क्या आप योगा वगैरह भी करते हैं घर पे?
3: हाँ,
0: क्योंकि इसमें सारा खेल तो सांस रोकने वाला है।
3: हाँ वो तो है, मगर जैसे कि प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस में स्टेमिना बढ़ता है, स्टेमिना से ब्रीथिंग भी बढ़ती है।
0: आपका क्या शुभ नाम है?
4: कोमल यादव।
0: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रही हैं सीखने के लिए?
4: हॉस्टल से।
0: लोकल अयोध्या की रहने वाली हैं?
4: नहीं, बनारस।
0: छात्रावास से यहाँ पे रह रही हैं? अच्छा, तो ये बताइए आपने कौन सा गेम चुना है जो आप सीख रही हैं?
4: 400 मीटर एथलेटिक्स, हमें आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।
0: अभी देखिए इंडिया में जो है 100 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड टूट गया, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई जो 100 मीटर भी 10 सेकंड के अंदर पूरा कर लेगा। आप एथलेटिक्स में और कौन कौन सी रेस जो है वो सीख रही हैं?
4: 200, 400।
0: आप कितने साल से सीख रही हैं यहाँ पर?
4: अभी तो हम लोग लखनऊ में थे, यहाँ ट्रांसफर हुआ है, 1 साल हुआ है।
0: और इसी स्टेडियम में श्रोताओं अब हम मिलने जा रहे हैं कुछ हॉकी प्लेयर्स से। आपका क्या शुभ नाम है?
5: तेजस्वी निषाद।
0: तेजस्वी निषाद जी, आप इस हॉकी को कब से खेल रही हैं?
5: 3 साल हुए हैं।
0: लोकल यहीं की रहने वाली है कहीं बाहर से?
5: नहीं, प्रयागराज।
0: प्रयागराज से यहाँ हॉस्टल में रह के?
5: साल हुए।
0: तो आप कहाँ कहाँ अब तक खेलने गई हैं?
5: अभी तक दादर से नेशनल खेले हैं, राजगीर में हुआ था और रांची में, राजगीर में कैंप लगा था और रांची में ही हुआ था।
0: तो नेशनल लेवल में तो वहाँ से बहुत सी टीमें आई होंगी।
5: हाँ।
0: तो आपने वहाँ जाकर क्या कुछ सीखा?
5: यही उन लोग पासन से खेल रहे थे
0: जी,
5: अच्छा मिला।
0: क्योंकि जब तक हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, बड़ी टीमों के साथ जाएंगे नहीं, तब तक हमारे खेल में उतना निखार नहीं आएगा,
5: नहीं
0: है ना? तो हॉकी को ही आपने क्यों चुना, ऐसा क्या था हॉकी में?
5: हॉकी गेम मतलब कि इंटरेस्ट था।
0: जी जी, जिससे फुटबॉल भी बहुत ही स्पीड का गेम है और हॉकी भी बहुत स्पीड का गेम है।
5: नहीं, हॉकी में इंटरेस्ट था इसलिए।
0: जी जी, तो हॉकी में आपका जो आइडियल प्लेयर कौन सा है, किसको आप पसंद करती
5: हैं? सविता पुनिया।
0: आपका क्या नाम?
6: शिवम।
0: शिवम, आप कहाँ से हॉकी खेलने यहाँ पे आ रहे हैं?
6: सर यहीं बगल से 2-3 किलोमीटर।
0: आप भी कहीं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेलने गए हैं?
6: सर।
0: कहाँ गए हैं?
6: सर अंडर 19 खेले थे जालंधर में। अच्छा। 2023 में और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेले थे दिल्ली में, वो भी 2024 में, और सब जूनियर खेले थे वो भी दिल्ली में खेले थे 2022 में।
0: जब पूरी टीम के साथ यहाँ से आप गए होंगे?
6: जी सर।
0: तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर पहुँच कर आपको दूसरे खिलाड़ी भी वहाँ मिलते हैं?
6: जी सर।
0: तो क्या कुछ वहाँ पे आपको सीखने को नई चीजें मिलती हैं?
6: सर सबसे पहले तो ये रहता है कि हमें टीम कॉम्बिनेशन बना के मैच जीतना रहता है, बाकी अदर टीमों को मैच देख के सीखना रहता है कि अगली टीम कैसे खेल रही है, हमारे अंदर क्या कमी है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
0: आपका शुभ नाम?
7: चंचल मौर्य।
0: चंचल मौर्य, आप कहाँ से इस स्टेडियम में आ रही खेलने के लिए?
7: जी मैं मलिकपुर गाँव से आती हूँ और मैं बहुत ही छोटे घर से बिलोंग करती हूँ,
0: तो आप जब वहाँ से आती हैं तो जो लोग गांव में आपको पूछते होंगे तो वहाँ भी आप प्रमोट करती हैं, लोगों को बताती हैं कि चलिए मेरे साथ आप भी खेलिए वहाँ?
7: जी बोलती हूँ, पर मेरे साथ मेरी फ्रेंड आती है गांव से ही है, तो मैंने तो हॉकी स्टार्ट तभी किया उसकी वजह से, वो आती थी तो उसको

0: आप कब से खेल रही हैं?
1: मुझे 4 साल हो गए हैं।
0: 4 साल हो गए आपको, तो आप तो फिर कहीं बाहर भी खेलने गई होंगी।
1: जी, नेशनल खेला है।
0: कहाँ पे गई थी नेशनल गेम खेलने?
1: आंध्र प्रदेश काकीनाडा में हुआ था चैंपियनशिप 2025 में।
0: क्या रिजल्ट रहा वहाँ पे?
1: मेरा गेम थोड़ा लूज था कि जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ नहीं खेल पाई, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। पहली बार मैं गई थी खेलने तो वहाँ
0: मेन चीज ये होती है ना, जैसे मान लीजिए आप नेशनल लेवल खेलने गई हैं तो अगर नहीं भी जीती हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहाँ।
1: बहुत कुछ मिला, हमें क्या कमियां हैं, हम क्या अपनी गेम को और कितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी गेम में, वो सारी चीज सीखने को मिली मुझे।
0: ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि हॉकी में जो है थकावट बहुत जल्दी हो जाती है?
1: जी लगता है, जैसे 70 मिनट का मैच होता है उसमें भी क्वार्टर होते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है, हम प्लेयर चेंज करके खेल लेते हैं।
0: आइडियल प्लेयर आपका कौन सा है, किसका गेम आपको सबसे अच्छा लगता है?
1: मेरा वंदना कटारिया है और बॉयज में है अभिषेक।
0: आपका शुभ नाम?
2: सबनीलाक्षी।
0: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आई खेलने?
2: सर हम ये बगल के 1 किलोमीटर पड़ता है चांदपुर हरबंस, सर यहाँ से आते हैं।
0: तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया होगा, घर के पास ही आपको स्टेडियम मिल गया। तो आपने जब हॉकी को पहली बार चुना तो आपको कैसा लगा?
2: सर हमें बहुत अच्छा लगा सर, पहले तो हॉकी पसंद आई है स्टेडियम में।
0: जी, इसके अलावा जब कभी आप खाली होती है तो जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं टीवी पे आते हैं उनको अभी आप देखती होंगी?
2: सर फोन पे।
0: तो आपका भी कोई अच्छा प्लेयर है?
2: सविता पूनिया।
0: चलिए, आकाशवाणी अयोध्या की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने खेल में इसी तरह से अपना खेल निखारते रहें और अयोध्या जनपद का नाम रोशन करें। धन्यवाद आप सभी। और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 28 जून को खेले गए ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की रेस से भारतीय टीम को बाहर कर दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में 7 महीने पहले 50 ओवर्स के एक दिवसीय मैच का वर्ल्ड कप जीतकर अपने नाम किया था। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने 171 रनों के लक्ष्य को एक ओवर बाकी रहते ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों में 56 रन की तेज तर्रार पारी खेली जिसमें 6 चौकों के साथ अंतिम ओवर में हरमनप्रीत ने 3 छक्के भी लगाए। आखिरी ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 23 रन बटोरकर टीम का स्कोर 170 तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप स्टेज में भारत ने 5 मैचों में से 3 मैच जीते लेकिन अंतिम मुकाबले में हार के कारण टीम शीर्ष 2 में जगह बनाने से चूक गई और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। वनडे विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम का भले ही T20 विश्व कप का सफर जल्दी खत्म हो गया लेकिन टीम ने क्वालिफाई कर एशिया का कोटा हासिल कर लिया। साथियों, क्रिकेट में जब हम चैंपियन बनते हैं तो हमें पूरी टीम वर्क के साथ लगातार मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं और फिर से चैंपियन बनते हैं। आज मेंस क्रिकेट टीम में इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि 3 क्रिकेट की टीमें तैयार की जा सकती हैं, लेकिन महिला क्रिकेट टीम में वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने T20 के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 125 के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में ही पूरा कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल में बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला किया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये 4थी भिड़ंत थी। इसके पहले 3 ही बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी और 4थी जीत भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही, उसने 7वीं बार खिताब जीता है। उसके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड एक एक बार चैंपियन बनी है। फाइनल में इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 150 रन ही बनाए, ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 18वें ओवर्स में 3 विकेट खोकर बना लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से 7वीं बार 7वें महीने में ये जीत हासिल की। यही नहीं, विमेन्स ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप भी 7 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया टीम की विकेट कीपर बेथ मुनी को चुना गया। इस मैच में मुनी ने 64 रन बनाए। लिचफील्ड ने 16 गेंदों में 48 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर टीम के लिए 100 रन की पार्टनरशिप भी की। सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 5 जुलाई को मैनचेस्टर इंग्लैंड में 15 साल 99 दिन में इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 में अपना पहला मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सिर्फ 3री गेंद पर छक्का जड़ दिया। भारतीय पारी के 3रे ओवर में जोफ्रा आर्चर पहली बार वैभव के सामने आए। वैभव ने घुटना टेकते हुए पहली ही गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। ये उनके इंटरनेशनल करियर का पहला छक्का था। वैभव ने इस मैच में 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से

0: को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो उनके क्रिकेट करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राउंड ऑफ 32 की कड़ी चुनौतियों और उलट फेरों के बाद अब टूर्नामेंट में केवल शीर्ष 16 टीमें ही बची हैं, जिनके बीच खिताबी जंग और तेज हो गई है। राउंड ऑफ 32 का सबसे चर्चित मुकाबला अर्जेंटीना और केप वर्डे के बीच रहा। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने गोल किया, लेकिन केप वर्डे ने शानदार संघर्ष करते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। अंत में अर्जेंटीना 3-2 से जीत कर अगले दौर में पहुंच गया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों में कनाडा, ब्राजील, पैराग्वे, मोरक्को, नॉर्वे, फ्रांस, मेक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, मिस्र, अर्जेंटीना और कोलंबिया शामिल हैं। सभी टीमों ने अपने अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले जीतकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और फ्रेंड्स, अब टूर्नामेंट पूरी तरह से नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है, जहां हर मैच करो या मरो का होगा। अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, जबकि मोरक्को, नॉर्वे, कनाडा और कोलंबिया जैसी टीमें उलटफेर करने की ताकत रखती हैं। राउंड ऑफ 16 के विजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए संघर्ष करेंगे। अब हर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच और बढ़ता जाएगा। निशानेबाजी। होनहार निशानेबाज जतिन ने जर्मनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया है। जतिन ने कड़ी मेहनत की, उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अर्जित किए। खंडवा जिले के 18 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी नीरज पटेल ने थाईलैंड में एशियन कुश्ती में जापान के नारुसेम्बा को 4-3 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया। नीरज ने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन करते हुए ये पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने 28 जून को लंदन में खेले गए अपने अंतिम FIH प्रो लीग मुकाबले में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हराकर अभियान का शानदार समापन किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला गोल रहित रहा, इसके बाद भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज कर बोनस अंक हासिल कर लिया। शूटआउट में भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद, लाकरा और हार्दिक सिंह ने अपने प्रयास से गोल किए। वहीं शानदार डिफेंसिव प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने पूरे अभियान में 4 मैच जीते, 5 ड्रॉ खेले, 2 शूटआउट बोनस अंक अर्जित किए और 7 मुकाबलों में हार का सामना किया, जबकि पाकिस्तान अपने सभी 16 मुकाबले हार कर सबसे निचले स्थान पर रहा। बेल्जियम ने टूर्नामेंट चैंपियन के रूप में 39 अंकों के साथ लॉस एंजिस 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है। आकाशवाणी अयोध्या केंद्र पर तैयार किए गए खेल दर्पण कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अपने बरसों पुराने रेडियो मित्र AJ अमरजीत को आज्ञा दीजिए। खेल दर्पण में वाचन, संकलन और संपादन अमरजीत सिंह का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आज के कार्यक्रम से अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कल रात 9:30 बजे। कानून की बात, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल शाम 7:32 पर। भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की ये वार्ता प्रसारित की जाएगी विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर। खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन, इस विषय पर डॉक्टर श्याम लाल गुप्ता से की गई बातचीत

भाई सुनेंगे संध्या 6:05 पर। साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा पशुओं में टीकाकरण का महत्व। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों को जानकारी का विषय होगा आधुनिक और परंपरागत खेती का विलय। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं और पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। वक्त के साथ सब बदल जाता है पर दिल के रिश्ते हमेशा खास रहते हैं और इसी रिश्ते की अहमियत को बरकरार रखते हुए स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे श्रोताओं की पसंद के इस गीत के साथ जिसकी फरमाइश हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने की है। लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि हमारे किन किन श्रोताओं ने हमें अनुरोध किया था इस गीत को सुनने के लिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म काला पत्थर से। आवाजें दी थी लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये सभी साथी। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। ये फरमाइश की है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से ये फरमाइश की है सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदिब ने।

ये फरमाइश है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ये फरमाइश है गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम रऊफ खान, सावरीन बेगम शाहवाज खान और सैफ खान की। इसी गीत को सुनना चाहते थे जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से अनुरोध किया है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिया नेवाता जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। श्रोताओं, हमें उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत सुन लिया होगा। और अब कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम जुझेला थाना शिवाला क्लब इजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महवेश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ये फरमाइश है सालपुरा जिला बारा राजस्थान से शक्ति श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव की। ये फरमाइश है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल नावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुर्रेकर, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। ये अनुरोध किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। साथ ही फरमाइश की है ये फरमाइश हमें मिली है सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी। ये फरमाइश की है ग्वालियर से। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है दिले नादान। गीत के बोल हैं नक्श लैलपुरी के और संगीत दिया है खयाम ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रही हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं, कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए 9457078288। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9457078288। आप हमें जल्दी से मैसेज कीजिए और हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत और आपके नाम हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को सुनना चाहते हैं किरतपुर से विकास दीप शर्मा, लवली ओमवती देवी, आराध्या यशु अनन्या। इसी गीत को सुनना चाहते हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। लक्सर रोड गांव सुहाइड़ी कस्बा पुरकाजी से मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोएब, कैकशा और उनके परिवार के सभी सदस्य। बीजना मुरादाबाद से ये फरमाइश हमें की है राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान ने। ये एक और फरमाइश हमें मिली है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से अनुरोध किया है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। फरमाइश करता है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इन सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म ब्रह्मचारी का गीत।

श्रोताओं, आपने गीत सुना फिल्म ब्रह्मचारी का मोहम्मद रफी की आवाज में, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी हमारे कुछ और श्रोताओं ने। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, सजदा रानी और हिना कौसर ने। मोहल्ला दरबारा शाह नजीबाबाद से गौरी मौली और उनके ताऊजी आलोक अग्रवाल ने। और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म लव मैरिज का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: चार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।